लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों से सजी ये रचना परिवार फिल्म से आपने सुनी। 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, गुलशन पावरा की लिखी रचना। और अब करते हैं, कहते हैं जय जय हिंदुस्तान।

लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजी ये सुंदर रचना एक ही रास्ता फिल्म से अभी आपने सुनी। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हेमंत कुमार का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। और अब अपने माँ पिता को प्रणाम करते हुए आइए सुनते हैं ये रचना।

आशा भोसले की आवाज से सजी ये रचना आपकी परछाइयां फिल्म से अभी आपने सुनी। 1964 रिलीज ये फिल्म मदन मोहन का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी ये सुंदर रचना।

आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों से सजी ये रचना गीत गाता चल इस फिल्म से आपने सुनी। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। गीत संगीत रविंद्र जैन का था। इसी रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 6 अक्टूबर वर्ष 2026 प्रातः के 5:53 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होती हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से थोड़ी देर में 6 बजे आप सुनेंगे अंग्रेज हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। प्रातः 6:10 पर सुनेगा कार्यक्रम अर्पण। प्रातः 6:44 30 सेकेंड पर श्रोता साथी सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। आज अयोध्या कांड प्रसारित किया जाएगा भाग 75। छह बजकर 55 मिनट पर संस्कृत में समाचार होंगे, हिंदी में समाचार होंगे 7 बजे, और 7:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम सुनिएगा 7:10 पर। सात बजकर 30 मिनट पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आज सवेरे। समाचार प्रभात के तहत हिंदी न्यूज सुन सकते हैं आप प्रातः 8 बजे। मॉर्निंग न्यूज के तहत न्यूज इन इंग्लिश 8:15 पर। उर्दू खबरें प्रसारित की जाएंगी प्रातः 8:30 पर। 8:45 पर सुनने का कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लकी। हिंदी में समाचार प्रातः 9 बजे, 9:05 पर अंग्रेजी में। ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों बाद समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. By-elections for 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and one Lok Sabha seat in Assam will be held today.

चरण शरण में आए के धरो तिहारो ध्यान, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर मंगल की इस प्रभात, मंगल की मुक्ता के साथ आइए करते हैं अर्पण, भक्ति भाव से होते हैं सराबोर। सुप्रभात।

प्रार्थना रूह का आनंद है, जीवन की मस्ती है। यदि इस परम पिता का एहसास बना हुआ है तो हम प्रार्थना में ही हैं। जुबान भले ही खामोश हो लेकिन मन में भाव हो, तब भी हम सिमरन कर ही रहे होते हैं।

इस परम पिता का एहसास हर क्षण बना रहे, फिर कुछ भी बने मुबारक है, बस पहले इंसान बन जाएं। संसार में आए हैं तो अपने सारे काम हम करते ही रहेंगे, पर एक मूल सत्य है कि हम मानवीय गुणों से ही इंसान बन सकते हैं, संत स्वभाव वाले बन सकते हैं। अगर किसी की मति में कोई ऐसी बात आ भी रही है जो मनुष्य होने का प्रमाण नहीं दे रही

भक्ति में है शक्ति और इसी शक्ति का एहसास होता है अर्पण के माध्यम से। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रोजाना सुबह 6:10 से हम आपके लिए लाते हैं अर्पण के कुछ ऐसे ही क्षण। जुड़े रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। महादेव का नाम संसार के सभी बंधनों से मुक्ति देता है। शिव की भक्ति मन को शांति देती है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रभु का नाम जपते रहेंगे, हर घटना को, हर वस्तु को, हर स्थिति को इसी का मान, इसी के हवाले करते रहेंगे, तो जीवन में आनंद बना रहेगा। ये जान पाएंगे कि परिवर्तन ही जीवन में एकमात्र स्थायी चीज है। सब कुछ अनुभव करें लेकिन सबसे अलग रहें। इसी प्रार्थना, इसी कामना के साथ फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, और अब आप और हम मिलकर श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए मिलकर सुनते हैं श्री रामचरितमानस का कान।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विवल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: राष्ट्रपतिना गाय पार्मिलेन इत्यमुना सह मन्त्रणानन्तरं पञ्च सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितानि। अत्रावधेयं यत् संधयः तावत् जनप्रवासाय, युव व्यावसायिक विनिमयाय, परिवहन प्रौद्योगिकी विकासाय च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षा सहयोगे नूतन क्षेत्राणां अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे च परस्पर संबंधं अत्यंतं सुदृढं करिष्यतः।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: नवदेहल्याम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे 13,500+ छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति। कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकं अर्पयिष्यते। अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे 44,200 छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु पंच विधानसभासनेषु तथा असमस्य नागांव लोकसभासने च अद्य शांतिपूर्णं मतदानं प्रचलति। निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामी शुक्रवासरे सम्पादयिष्यते, यस्य फलं तावत् तस्मिन्नेव दिने उद्घोषितं भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य प्रभृति हिमाचल प्रदेशस्य त्रिदिवसीय प्रवासे भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपति एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षित चिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल क्षेत्रेषु अतिवृष्टि परा संचेतना प्रकटिता। विभागेन अनेन संसूचितं यत् आगामी दिनद्वये त्रये वा जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड लक्षद्वीप प्रांतेषु विद्युत्पात पुरस्सरं मेघगर्जनं च संभाव्यते। यमन देशस्य मान्यता प्राप्तेन शासनेन हूती विद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्य अभियानं प्रारब्धम्। शासकीय बलैः रक्ताब्धि तटस्य मुख्य स्थानेषु अग्रगतिः प्राप्ता। अभियानस्यास्य मुख्यम् उद्देश्यं हूती नियन्त्रितानां भूभागानां पुनरधिग्रहणम् अस्ति। पंच स्पर्धानामस्याः T20 श्रृंखलायाः प्रथमं सम्मुखीकरणं अद्य लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे सायं 7 प्रारप्स्यते। अग्रिमः स्पर्धा तावत् रांची इंदौर हैदराबाद बेंगलुरु नगरेषु समायोजयिष्यन्ते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है।

0: प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को हवा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000 एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place at Madhuran Thakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattan Chowri in Puducherry and Rejinagar and Nondigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Naugaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by-election to a lone seat in

7:21 आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात। जनाब, परिवर्तन के साथ खुद को बदल लेना, यही सुखी जीवन का आधार होता है। मौसम बदलता है ना, और बदलते मौसम की तैयारियां अगर आप नहीं करते हैं, खुद को नहीं बदलते हैं, तो फिर क्या होता है? बाहर की बीमारी आती है। ठीक इसी तरह अंदर की बीमारी भी आती है अगर हालात के साथ हम खुद में बदलाव नहीं करते।

जनाब, जीवन के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर अगर हंसी और जवान रहना है तो करना क्या है, सुबह सवेरे उठते ही जल गुनगुना पिया करें, मधुमेह से मुक्ति के लिए तन का शोधन किया करें, चीनी वाली चाय छोड़कर ग्रीन टी को अपनाओ, स्वास्थ्य हितैषी इस धन को प्रतिदिन और बढ़ाओ।

जनाब इसी तरह हर प्रभात को गोल्ड सुप्रभात करते रहिए और फिलहाल मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात और अब समय है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
1: आगे आगे बोट चले, पीछे सारी दुनिया, दिन न देखे रात न देखे, पीछे पड़ी है दुनिया और नहीं।
0: धन केवल भौतिक जरूरतें पूरी करता है, लेकिन इंसान की असली पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं।
1: बोल चांद सा रुपया, कैसा है ये खाब सा रुपया।
0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
2: नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन

0: showcased through a photo exhibition. More details from our correspondent.
1: The Silver Jubilee celebrations will be inaugurated at 4 p.m. today at the Assembly premises. Lok Sabha Speaker Om Birla and Goa Governor Pushpati Ashok Gajpati Raju will be the chief guests at the inaugural ceremony. Chief Minister Dr. Pramod Sawant, Legislative Affairs Minister Mauvin Gudino, Leader of Opposition Yuri Alemaw will also attend the event. A special postage stamp and special cover commemorating the Assembly building will be released on the occasion. A souvenir and coffee table book will also be released. The celebration will remain open to the public on all 4 days. For Aaj Savere, Mahesh Chopde, Panji.
2: पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के अगले 4 मुकाबले 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली नगर निगम द्वारा गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत शहर के सभी 12 जोनों में 31 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 5 संपत्तियों को सील किया गया और लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 7 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। कल के प्रवर्तन अभियान के दौरान जनकपुरी, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, सरस्वती विहार, शालीमार बाग, शक्तिनगर, शकरपुर, घरौली एक्सटेंशन, सीलमपुर और संत नगर सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल युवा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज की छात्राओं से संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए और विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण कर लोकतांत्रिक संस्था के कामकाज को प्रत्यक्ष रूप से समझने तथा संविधान, विधायी प्रक्रियाओं और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जाना।
0: And from Delhi, let's take our listeners to Chennai. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has urged the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, to urge the Sri Lankan government to release 20 fishermen arrested by the Sri Lankan Navy. In a letter to the External Affairs Minister, he has asserted that 270 fishing boats which were seized by the Sri Lankan authorities should also be released. Noting that the fishermen from Ramaswaram were arrested on the 3rd of this month, he said that their boats have also been seized. The Chief Minister suggested that the India-Sri Lanka Joint Working Group on Fisheries should be convened to end the fishermen issue. The Chennai Metro Rail plans to introduce driverless operations next year. The door control and routine train movements will be handled automatically under supervision from the Operation Control Centre. The testing is underway with 120 test cases or scenarios to be validated before CMRL applies for CMRS certification. Testing will continue overnight after services begin. 15 trains will initially operate 10 minutes intervals. The maximum fare between Vadapalani and Punamalai bypass will be 40 rupees, while longer journeys will cost 50 rupees. Each 3-car train can carry up to 900 passengers.
2: अब मुंबई, महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC के पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों और सदस्यों की जांच के लिए एक समिति गठित करने की सिफारिश की है। सिफारिश के अनुसार समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए और उसे 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है। मुंबई की एक और खबर। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने रियाद से 1,26,00,000 रुपए का सोना तस्करी करने की कोशिश के आरोप में 51 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार वायु खुफिया इकाई

0: के कर्मियों ने रियाद से आने के बाद मौके पर ही पहचान के आधार पर यात्री को रोका। कर्नाटक निवासी अफजुल निसा ए के रूप में पहचानी गई यात्री ने किसी भी प्रकार का शुल्क योग्य सामान या सोना ले जाने से इनकार किया। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने उसके कपड़ों की जेबों में छिपाई गई 2 नकली सोने की चेन, 8 नकली सोने की चूड़ियां और 10 नकली सोने की छड़ें बरामद की। जब्त किए गए सोने का वजन 956 ग्राम था और इसकी कीमत लगभग 1,26,00,000 रुपए थी। आगे की जांच जारी है।
1: Let's take our listeners to Bengaluru now. Karnataka Deputy Chief Minister Dr. G. Parameshwara has announced enhanced cash rewards for the sports persons who hail from Karnataka. Speaking to media persons in Bengaluru yesterday, he said that Chief Minister D. K. Shivakumar will announce the revised cash awards today. He said that other states too have announced greater cash awards for the sports persons who made our country proud in the Asian Games that concluded in Japan. Going by the trend across the country, Karnataka government too has decided to increase the cash awards given to the sports persons. The revised amount will be announced today.
0: पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य की नई औद्योगिक नीति दुर्गा पूजा के तुरंत बाद प्रकाशित की जाएगी। सोमवार को नबन्ना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि नीति के संबंध में मंत्रियों और अधिकारियों के समूह की सिफारिशें लगभग अंतिम रूप दे दी गई है। हालांकि पितृपक्ष के कारण इसे तुरंत जारी नहीं किया जा रहा है और त्योहार के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की 6,000 करोड़ रुपए की विस्तार परियोजना का उद्घाटन 14 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा हरिंगघाटा में रिलायंस की कैंपा कोला परियोजना का भूमि पूजन 28 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति निवेश आकर्षित करने के साथ साथ रोजगार बढ़ाने पर जोर देगी।
1: Telangana Chief Secretary Sanjay Jaju has directed officials to complete all arrangements on schedule for the Invest Telangana Global Summit to be held from December 7 to 9. He reviewed the preparations at a meeting with senior officials at the Secretariat. The Chief Secretary said leading companies operating in Telangana should take part in the summit in large numbers. He also asked officials to focus on inviting the global heads of top multinational companies. He said these would help explain Telangana's investment opportunities and business-friendly climate to international investors and corporate leaders.
0: और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानने के लिए चलते हैं सरबजीत के पास।
1: जी, चेन्नई इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 27 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ अराउंड 34 डिग्रीज सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। मिनिमम टेम्परेचर अराउंड 21 डिग्रीज, मैक्सिमम मे गो अप टू 31 डिग्री सेल्सियस। एंड हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ partly cloudy sky with haze. Temperatures expected to range from 23 degrees to a maximum of 36 degrees Celsius.
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 6 अक्टूबर है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
1: 1762, on this day, during the Seven Years' War, British forces captured Manila from Spain.
0: 1860 में आज ही के दिन भारतीय दंड संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को कानून के रूप में पारित किया गया। ये बाद में 1 जनवरी 1862 से लागू हुई।
1: 1926

0: 6th October, the jazz singer starring Al Jolson premiered in New York. It became the first feature-length film which synchronized recorded dialogue and singing, marking a major milestone in the transition to talking films.
1: 1987 में आज ही के दिन फिजी को गणराज्य घोषित किया गया और 1989 में आज ही के दिन न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी।
0: 2010 on this day, the Nobel Prize in Physics was awarded to Andrei Gym and Konstant Novoselov for groundbreaking experiments with graphene.
1: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन जयंती या पुण्य तिथि है।
0: Yes, first in my list is Meghanan Saha. So when we talk about the great Indian scientists who put India on the global scientific map, one name that deserves special mention is that of Meghanan Saha. Born in 1893, Saha was a brilliant astrophysicist whose work helped scientists understand the physical conditions of stars. His most famous contribution, the Saha ionization equation, explained how the temperature and pressure of a star determine the degree to which atoms become electrically charged or ionized. But Meghanan Saha was much more than a scientist working in a laboratory. He believed that science should serve society. Saha took a keen interest in education, industrial development, river management and national planning.
1: आज पुण्यतिथि है नाना साहब की। उनका जन्म 19 मई 1824 को वेणुग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। वे सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। उनका मूल नाम ढोंदू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट द्वितीय ने नाना साहब को गोद ले लिया था। इतिहास में नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया गया है। पहली जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा पेशवा की उपाधि भी धारण की। नाना साहब का अदम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया।
0: Still on the same page, Manoj, we are paying tributes today to Hussein Ahmad Madani. Today is his birth anniversary. A distinguished Islamic scholar, teacher and prominent figure in India's freedom movement. Born in the year 1879, Maulana Madani became one of the most respected scholars of his time. He served for many years as a teacher at Darul Ulum Devband, where he contributed significantly to Islamic scholarship and education. He was among the first recipients of the civilian honor of Padma Bhushan in 1954. But his contribution extended beyond the classroom when he strongly opposed British colonial rule and became associated with the struggle for India's independence.
1: अब एक कविता, कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन गण की मुखरित अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सब की परिभाषा, आजादी के दीप्त भाल की, बहुभाषी वसुधा विशाल की, सहृदयता के एक सूत्र में ये परिभाषा देश काल की। ये काव्य रचना है लक्ष्मी मल सिंघवी की। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 नवंबर 1931 को जोधपुर में हुआ था। वे जाने माने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद थे। उन्होंने हिंदी के वैश्वीकरण और हिंदी के उन्नयन की दिशा में सजग, सक्रिय और ईमानदार प्रयास किए। वे भारतीय संस्कृति के राजदूत, ब्रिटेन में हिंदी के प्रणेता और हिंदी भाषियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। जैन धर्म के इतिहास और संस्कृति के जानकार के रूप में मशहूर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें से अनेक हिंदी में है। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
0: So Manoj, you know, you have now knocked the doors of literature. So let's take our listeners also to some more art, music and instruments. So time now to pay respects to the great Monojit Datta. Today is his death anniversary, a legendary percussionist, multi-instrumentalist and composer. He is widely recognized as the pioneer of authentic Latin American music in India. We have this piece for you.

0: आज पुण्यतिथि है अरविंद त्रिवेदी की। उनका जन्म 8 नवंबर 1938 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। वे छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार थे। दूरदर्शन पर आने वाले प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में उन्होंने लंकापति रावण का किरदार निभाया था। 90 के दशक में रामानंद सागर के बहुचर्चित धारावाहिक रामायण में लंकेश का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी की आवाज जब गूंजती थी तो देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस धारावाहिक से अगर राम के रूप में अरुण गोविल को अमर पहचान मिली तो अभिनेता अरविंद त्रिवेदी की रावण की भूमिका भी यादगार बन गई। आइए सुनते हैं इसी धारावाहिक का उनका संवाद।
1: राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोक और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा।
0: आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा और टेलीविजन अभिनेता संजय मिश्रा का। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1963 को नारायणपुर दरभंगा बिहार में हुआ है। उन्होंने फिल्म आंखों देखी और वध में अपने अभिनय के लिए 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। साथ ही कई अन्य पुरस्कार और नामांकन भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने 2024 में आई फिल्म भक्षक में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र संजय मिश्रा ने 1995 में फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। आइए सुनते हैं उनकी एक फिल्म का संवाद।
2: रघु, कितनी चम्मच?
3: चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार।
2: रघु, तूने कभी गीता पढ़ी है?
3: ना, नेवर नेवर नेवर।
2: ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम साथ क्या लाए हो?
3: टेम्पो है ना, जिसमें मेरा सामान है।
4: मेरा
3: या
2: आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे?
3: अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है? मुझे सुन, कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना?
5: So indeed, many, many good wishes to the great Sanjay Mishra from the entire team of Art Savere. Moving on further, listeners, in this segment, we are paying tributes to the great Millie Small, a Jamaican singer and songwriter, best known for her global 1964 hit single My Boy Lollipop. And thanks to the production team, we managed to get this number for you.

आज जयंती है ब्रिज मोहन सदाना की। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1933 को गुजरांवाला ब्रिटिश भारत में हुआ था, जिन्हें ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वे

भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 1960 से 1980 के दशक के कुछ सबसे यादगार बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों जैसे दो भाई, ये रात फिर ना आएगी, उस्तादों के उस्ताद, नाइट इन लंदन, विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक, यकीन और प्रोफेसर प्यारे लाल के लिए जाना जाता है। उन्होंने लगातार अपनी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को चुना। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत।

0: And listeners, time now to pay tributes to the celebrated Vinod Khanna. Today is his birth anniversary. The great actor, film producer, born in Peshawar in 1946. On this day, Vinod Khanna went on to become one of the most admired actors of Indian cinema.
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से विनोद खन्ना ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था. विनोद खन्ना का नाम ऐसे अभिनेताओं में शुमार था जिन्होंने शुरुआत तो विलेन के किरदार से की थी लेकिन बाद में हीरो बन गए. अमिताभ बच्चन के साथ की गई फिल्म परवरिश ने उन्हें बड़ा ब्रेक दिलाया. पहली बार इसी फिल्म से उन्होंने स्टारडम का स्वाद चखा. विनोद खन्ना को 1971 में पहली सोलो लीड फिल्म हम तुम और वो मिली. बाद में गुलजार के मेरे अपने में शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट निभाए गए उनके किरदार को आज भी लोग याद करते हैं. 140 से अधिक फिल्मों में विविध किरदार निभाने वाले विनोद खन्ना को 2017 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत और संवाद.
2: याद है तेरे लिए मैंने एक बार जेल काटी थी, याद है ना? तेरे लिए मेरी सारी जिंदगी बदल गई, तबाह हो गई. लेकिन इस बार मैं जेल नहीं, तुझे मार कर सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा.
3: रघु, छोड़ दे उसे, चल गमार कहीं का. आइंदा ऐसी हरकत की तो खुद ही बांध के डाल दूंगा तुझे.
2: चैनो, अब ये लड़ाई झगड़ा और अच्छा नहीं लगता, छोड़ दे, खत्म कर दे ये दुश्मन.

0: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: लिसनर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार।

0: उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी।

0: गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माय ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर Trivandrum or Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
2: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुअनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू कर

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री आमिर खान

0: मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Polling begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of 8 candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nogaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuran Thakam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Thattan Chowri assembly seat and Rejinagar and Nondigram assembly seats in West Bengal. More from a Kolkata correspondent.
4: The by-election in Nondigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Adhikari, who won both Nondigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nondigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Rejinagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kobir retained Nauda and resigned from Rejinagar. In Nondigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Hashirani Roth and Congress candidate Milon Pradhan. The Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milon প্রধান ইন রেজিনগর 14 ক্যান্ডিডেট

0: जिसके बाद दोनों के दरमियान 5 समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक साझेदारी, निशान जद किए गए इलाकों में मोबिलिटी सिस्टम और बुनियादी ढांचे और इख्तरा, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सनअतकारी के सिलसिले में ताउन के लिए अमल दरामद के इंतजाम व दीगर माहदे शामिल हैं। एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन और न्यूक्लियाई तवानाई से मुतालिक इश्तराक को मजीद गहरा करने के इम्कानात की निशानदेही की है।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्विट्जरलैंड के सदर के एजाज में ईशाइये का एहतमाम किया। सदर पार्मेलिन का इस्तकबाल करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि तारीखी भारत यूरोपीय आजाद तिजारती एसोसिएशन तिजारत और शराकतदारी से मुतालिक माहदे पर अमल दरामद के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायकारी में मजीद उसत पैदा करने के इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत जैसे उभरते हुए शोबों में मौके का जायजा भी ले सकती हैं। इस एशाइये में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि केरलम में विजिनजम समुद्री बंदरगाह में तरक्याती कामों के जरिए किस तरह इस नजरिए को अमली शक्ल दी गई है।
2: विजिनजम बैन अल-अक़वामी समुद्री बंदरगाह एक अहम बहरी मरकज के तौर पर उभर रही है, जो 2047 तक विकसित भारत के मुल्क के नजरिए को तकवीत दे रही है। ये बंदरगाह बैन अल-अक़वामी ईस्ट वेस्ट बहरी तिजारती रास्ते के करीब एक इंतहाई अहम मकाम पर वाक़े है। यहाँ कुदरती तौर पर तकरीबन 20 मीटर गहरा पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों को भी संभालने की सलाहियत रखती है। बंदरगाह में तिजारती सरगर्मियां दिसंबर 2024 में शुरू हुई, जबकि मई 2025 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया। विजिनजम ने अपने पहले ही साल में 10 लाख TEUs का हिस्सा उबूर कर लिया, जबकि सिर्फ 18 माह में 20 लाख TEUs तक पहुंच गई। ये कामयाबी आलमी सतह पर एक अहम ट्रांसशिपमेंट मरकज के तौर पर इसकी तेजी से उभरती हुई हैसियत को जाहिर करती है। अगस्त 2026 में मुकम्मल तौर पर फ़ाल एग्जिम ऑपरेशंस शुरू होने के बाद ये बंदरगाह अब भारतीय बरामदकारों और दरामदकारों को बराह रास्त समंदरी रास्ता फराहम कर रही है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिनजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विजिनजम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा।
2: विजिनजम बंदरगाह तिजारत, रोजगार और इक्तिसादी तरक्की के एक अहम मुहर्रिक के तौर पर उभर रही है और 2047 तक विकसित भारत के सफर में मुल्क के लिए अपना रोल अदा कर रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलुरुदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
0: भारत ने अफगानिस्तान की इकतदार आला इतिहाद और इलाकाई सालमियत के तई अपनी हिमायत का इजहार किया है। भारत ने रूस के जेर एहतमाम मॉस्को में मुनक़िदा अफगानिस्तान से मुतालिक 8वें मॉस्को फॉर्मेट मुशावरतों के मौके पर अफगानिस्तान के आवाम की फलाह बहबूद के तई अपने अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर भारतीय वफद की क्यादत रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी PAI डॉ एम सुरेश कुमार ने की। इस मीटिंग में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। روس کی وزارت خارجہ کے مطابق شرکا نے مساوی اور باہمی طور پر مفادات کی بنیاد پر کابل کے ساتھ تعاون اور عالمی معیشت میں

0: अफगानिस्तान की शमूलियत की हिमायत की जरूरत पर जोर दिया। यमन की बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमतों ने हौसियों के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज किया है। हुकूमती फोर्सेज ने बहरे अहमर के साहिल से मुत्तसिल अहम स्ट्रेटजिक चौकियों के नज़दीक पेशकदमी का दावा किया है। यमन के सदारती लीडरशिप कौंसिल के सदर ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन का नाम दिया, जिसका मकसद हौसियों के कब्जे वाले इलाकों को दोबारा हासिल करना, सरकारी इदारों को बहाल करना और राजधानी सना का कंट्रोल दोबारा हासिल करना है, जो साल 2014 से हौसियों के जेर कंट्रोल है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने स्विट्जरलैंड के सदर गई पामिला के भारत दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विस सदर के दरमियान बातचीत से मुतालिक खबर को शाये करते हुए वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि आलमी अमन इदारों में इसलाह जरूरी है। स्विट्जरलैंड के सदर के इस तबसरे को भी अखबारात ने खसूसियत के साथ शाये किया है कि स्विट्जरलैंड भारत को अपना काबिल एतमाद और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुआविन मानता है। रोजनामा इंकलाब ने GST इस्लाहात से मुतालिक खबर को शाये करते हुए वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि GST इस्लाहात टैक्स निजाम को मजीद आसान बनाएगी।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम की 1 लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश से अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। भारत ने अफगानिस्तान की इकतदार आला, खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इजहार किया है और अफगानिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने अज़्म का यादा किया है। बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

हर पल एक विकल्प है खुद को खुश करने के लिए, हर पल एक मौका है खुद से बिना शर्त प्यार करने के लिए। बस ये पल बीत ना जाए, मौका संभालिए, विकल्प चुनिए और कीजिए म्यूजिकल दिल लगी। ये आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है, मंगल की मुक्ता के।

0: आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
1: दिल की तकलीफ अब कम नहीं करते, दिल की तकलीफ अब कम नहीं करते, कोई शिकवा अब हम नहीं करते।

कैसे कहूँ कि इस दिल के लिए कितने खास हो तुम। फासले तो कदमों के हैं पर हर वक्त दिल के पास हो तुम। जी हाँ, जो दिल के पास होते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती है। जज्बात अपने आप अपनी बात पहुंचाते हैं, और अगर नहीं पहुंचा पाए तो हम है ना आपके दिल की बात म्यूजिकल दिल लगी से कहने के लिए।

जनाब, ये आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल है, जहाँ जानकारी है, मनोरंजन है और खूब सारे गीत संगीत हैं, और ये सिलसिला आपके लिए 24/7 रहेगा जारी। फिलहाल म्यूजिकल दिल्ली की को यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। हिंदी और अंग्रेजी में होंगे समाचार और उसके बाद फिर से होंगे कार्यक्रम शुरू। मुक्ता को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उड़ीसा के कोरापुट में हिंदुस्तान

0: गोवा में पोरवोरम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 4 दिन तक इन कार्यक्रम के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बिजली चमकने तथा तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। सिक्किम, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhur Takkam and Dharapuram assembly seats, in Puducherry for Tat Chavri assembly seat and Rajnagar and Nandigram assembly seats in West Bengal. More details from our Kolkata correspondent.
2: The by-election in Nandigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Adhikari, who won both Nandigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nandigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Rajnagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kobir retained Nauda and resigned from Rajnagar. In Nandigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Hashirani Roth and Congress candidate Milon Pradhan. The Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milon Pradhan. In Rajnagar, 14 candidates are contesting the elections. Among the prominent candidates are Shakarov Sarkar of the BJP, Gulab Nobi Azad of Am Janata Unnayan Party, Rabiul Alam Chaudhary of the Mamata All India Trinamool Congress, and Mohammad Abdullah Kafi of the Congress. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Oja, Prakash Pal, Vidya Sagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by election to a lone seat in West Bengal will be held on 16th of this month. The elections will cover 10 seats from Uttar Pradesh and one from Uttarakhand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as the chief guest and confer degrees to trainee doctors. After the convocation ceremony, the President will travel to Manali where arrangements for her overnight stay have been made. The President is scheduled to return to Delhi on 8th of October. India has voiced support for Afghanistan's

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जनसेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है। जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था। और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए। इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है, और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है। तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है, वो कैसे एक सफल यात्रा रही है, और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है, और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण अंग साबित होने वाला है। तो इस विषय पर विस्तार से आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ शामिल हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा तकनीकी और आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
1: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, और

0: विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
1: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक, कतारों से क्लिक तक, तो ये जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत करके ऐप उन्होंने गुजरात में चलाई थी, जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते थे, वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति में जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
0: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं, उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास, उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है, तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
2: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो जेसीबी है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
0: जी।
2: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना जेसीबी को ट्रेन पर ले जाया जाए। तो इट वॉज उनको कितने सारे जेसीबी को अहमदाबाद और उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बाई ट्रेन, बाई रोड के बजाय बाई ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, वो सैटेलाइट सेंटर जो है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी
0: जी।
2: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक एक झुंड में जाते हैं, तो उनको वो लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च ना हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर ना रहे और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले। ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री, और जैसे वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें दो बातें हैं, एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी
0: जी।
2: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है इसको मैंने अपनी किताब में लिखा है, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12-digit रेवोल्यूशन है,
0: बिल्कुल,
2: तब लोग कह रहे थे कि अरे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ये सचमुच में 12-digit रेवोल्यूशन है।
0: बिल्कुल। और प्रसून जी, अभी जिस बात की हम जिस विषय पर हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला एक रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस माध्यम से सरकार ने अब तक ये आंकड़ा है कि लाखों करोड़ रुपए तक बचाए हैं, सीधे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है, सीधे बैंक खातों में अब किसी भी योजना का लाभ पहुंच जाता है, बिचौलियों के बीच कोई पैसा हस्तांतरित नहीं होता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ है और जो हेरा फेरी है उसको रोका गया है बड़ी संख्या में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो DBT मॉडल है उसने भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया और कैसे तकनीक ने इसमें खासतौर पर बड़ा रोल निभाया है?
1: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन DBT के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या KYC होता है उससे जो राशन कार्ड या खाद सब्सिडी है वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है। पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है, और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी है जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
0: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताजा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो UPI ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचे, गांव में, रेड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह UPI के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का, जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शंस हो सकें, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए?
2: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में, सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की। जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना की, जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाएंगे, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। फिर उसके बाद में जब NPCI ने UPI स्टार्ट किया, और जब नोटबंदी हुई उसके बाद में कैसे इसको प्रोत्साहन मिला। लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है, वो कोविड के वक्त में। आप देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते विदाउट कोविड के? और कम से कम 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग, जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए कि जो UPI की ट्रांजैक्शन की बात आप कर रहे थे, जो एकदम करोड़ों में हो रहा है, दिन में, एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसमें एक, मैं हमेशा जो मैं MBA की बिटसॉम में MBA की क्लास को पढ़ाता हूँ, और हर साल उस क्लास को या कहीं पर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपने बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है। मैंने मतलब पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। मैंने फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप ATM कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं 1 महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितने UPI ट्रांजैक्शन किए, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं
0: जी,
2: जितने क्लास में होते हैं या
0: कहीं पर।
2: तो हम लोग अभी मतलब इस

0: जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई, गए आप सब्जी लेने गए तो यूपीआई कर दिया, ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है, आप पैसे देने निकले हैं, उसके पास खुले नहीं होते हैं, तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी एडॉप्शन में पीछे होते हैं, लेकिन इतना फास्ट एडॉप्शन जो हुआ है, ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित किया है। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उन्होंने उसको उस मैसेजिंग को कॉन्स्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे, ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेलीमेडिसिन, जो मतलब डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गांव में डॉक्टर ना हो, तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है, हम लोग इसको भांप नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना लोग YouTube वगैरह से कोर्स, ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं, उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
1: बिल्कुल, यानी
0: एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक।
1: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूंगा। जैसा कि अभी शंकर जी बता रहे थे कि इन बीते कुछ वर्षों में ऐसा डिजिटल परिवर्तन हमने देखा है। कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन की हम यूपीआई की तो बात कर ही रहे हैं। तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज को हासिल कर लिया। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है
2: जी। एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है। और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ, जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के थ्रू होता है। और उसमें से जो अपने छोटे एमएसएमईज या उद्यमी हैं उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो एमएसएमई भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और एमएसएमईज को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे एमएसएमईज अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के टॉप 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए। क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड, फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स इंक्लूडिंग एमएसएमईज, हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है। और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और जो बाकी इकोसिस्टम है जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है, उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो, सेंसर लग रहे हो, या चाहे हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हो। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
1: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा, इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा। और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है भारत को, जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर। जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर। हम पहले दफ्तरों में, कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थी, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे, एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है।
2: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन

0: है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है। चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो, और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए, जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं तो वहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स हैं उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं। ना सिर्फ भारत सरकार उस पर सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड है या इनोवेशन वर्ल्ड हैं वो भी इस पे अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है तो उससे काफी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
1: बिल्कुल। अभी शंकर जी, प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं उससे कैसे इससे मदद मिली है?
2: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ है, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितने अफसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पौंडीचेरी से ले आया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो, तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, अब आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इसे अचरज नहीं होता है हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है, उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
1: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का, 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, जिस इस तंत्र से

0: जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है, तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
1: बहुत ज़्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गाँव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहाँ पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गाँव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शंस है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है, और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज्यादा बढ़ा है, और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
0: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने माईगोव का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचे, और खासतौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है, और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत सराहनीय है, जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं। पहले यह होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं, इसको तो क्राउड सोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है, और हम लोग उसको और आगे कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इसको और प्रधानमंत्री की जो दिशा है उसको अगर बाकी सांसद और MLA लें तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधाएं जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं, लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हो, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग इस विचारधारा से जुड़ने में इतना उत्सुक है और इतनी उनकी पार्टिसिपेशन है।
0: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गांवों में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए, और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है। संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है, और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में, वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना पर आपके क्या विचार है, प्रधानमंत्री का जो विजन

0: है कि डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
1: बहुत बढ़िया पहल है ये, और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें, जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को लेके, उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया है जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस जियो लोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अब मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा, उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
0: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है सेमीकंडक्टर या चिप उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है वो कैसे आने वाले समय में भविष्य में भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनीज चला रही है। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है। तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन अगर आप देखिए 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिजाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो या हमारी कार हो या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को जॉइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे एमएसएमईज या हमारे फार्मर्स हैं उनको भी तैयार कर रही है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे एफटीएस भी साइन किए हैं जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
0: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने ये साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की ये परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का, कि आप कार्यक्रम में जुड़े और जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आप शामिल हुए, अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289 09404

नमस्कार, सुप्रभात और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है श्रोताओं 9:45 और 40 सेकंड और आज की तारीख 6 अक्टूबर है। इसमें इतिहास, विज्ञान, शिक्षा, प्रकृति और सिनेमा हर दिशा में खुलती हुई एक नई कहानी है। आज की सुबह भी ऐसी ही कई छोटी बड़ी स्मृतियों अपने साथ लाई है और इन्हीं को गीतों की मिठास में पिरोते हुए मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ हूँ कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्लगी में।

आकाश को समझने की कोशिश तो मनुष्य ने बहुत पहले शुरू कर दी थी, लेकिन हर नई खोज उस आकाश को हमारे थोड़ा और समीप ले आई। आज जन्म जयंती है महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट मेघनाथ साह की। तारों के प्रकाश में छिपी भौतिक दशाओं को समझने में उनकी दी हुई साह इक्वेशन ने विज्ञान को एक महत्वपूर्ण आधार दिया। थर्मल आयोनाइजेशन को समझने का ये सिद्धांत एस्ट्रोफिजिक्स में आज भी उनके नाम के साथ ही जुड़ा है। और संयोग देखिए, इस सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक भी मनाया जा रहा है और इस वर्ष थीम है इसका रॉकेट रेवोल्यूशन। जिन वैज्ञानिक ने तारों के प्रकाश को पढ़ने का रास्ता दिया, उसी आकाश की ओर आज हम रॉकेट्स के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए सितारों की ओर एक गीत के साथ हम भी चलें

अंतरिक्ष से अब शिक्षा की ओर चलें, क्योंकि एक राष्ट्र की वैज्ञानिक उपलब्धियां उसकी शिक्षा से ही तो आकार लेती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, समग्र और भविष्य के अनुरूप बनाने की एक दूरदर्शी पहल है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, कौशल और भारतीय मूल्यों का विकास करना है। मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल देते हुए ये नीति शिक्षा को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के सर्वांगीण विकास का आधार मानती है। इस नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर, 4 वर्ष के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस तथा वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को प्रमुखता, ऐसे कई महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं। शिक्षा को अधिक फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी और स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन निरंतर आगे बढ़ रहा है। और श्रोताओं, आपको बताएं, इस सप्ताह 2 और महत्वपूर्ण अवसर भी हमारे साथ हैं। वाइल्ड लाइफ वीक, जिसका थीम इस वर्ष है कनेक्टिंग हैबिटेट्स थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ, और एंटी अनटचेबिलिटी वीक, जो समानता और सामाजिक गरिमा की याद दिलाता है। और सिनेमा की दुनिया से भी मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी ऐतिहासिक बात है। 6 अक्टूबर 1927 को मुंबई में धनजी भाई के देसाई, जिन्हें नारायण राव के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने आत्मानंद लेबोरेटरी की स्थापना की। ये भारत की पहली इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोसेसिंग लेबोरेटरी के रूप में याद की जाती है। पर्दे पर चमकने वाली फिल्मों के पीछे तकनीक की ये अपनी एक छोटी सी कहानी है। इन्हीं छोटी बड़ी कहानियों और गीतों की मिठास के साथ अब म्यूजिकल दिलगी से मुझे दीजिए अनुमति। कामना है आपका दिन सुगम हो, प्रसन्न हो और उसमें अपने हिस्से की छोटी सी खुशी जरूर आए। सुबह 10:30 पर फिर मिलूंगी आपसे मैं दिल का मेलबॉक्स में, और 11:10 पर तस्वीर में मेरे साथ चलिएगा एक ऐसे दुर्ग की यात्रा पर जो आज अपने इतिहास को संजोए हुए एक हेरिटेज होटल के रूप में जीवित है। तब तक अनुमान लगाइए कि आज की तस्वीर हमें कहां ले जा रही है। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 MHz पर। प्रियांशी भटनागर का आप सभी को सस्नेह नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 476 अंक बढ़कर 72,859, जबकि निफ्टी 132 अंक की वृद्धि के साथ 22,688 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का आज सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

हीरोज में से एक और उच्च कोटि के अभिनेता विनोद खन्ना है हमारे आज के कलाकार बेमिसाल। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके साथ है रजनी। विनोद खन्ना की अभिनय यात्रा के कुछ रोचक पड़ाव और उनके लोकप्रिय गीत लेकर, पहला जो गीत है वो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुर्बानी से।

आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में विनोद खन्ना का जन्म हुआ। उनके जन्म के अगले ही साल उनका परिवार मुंबई में आके बस गया। स्कूली दिनों में ही विनोद खन्ना 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखकर फिल्मों के दीवाने हो गए, लेकिन उनका पहला प्यार फिल्में नहीं क्रिकेट था। वो स्कूल और कॉलेज की ओर से क्रिकेट खेला करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें जब इस बात का एहसास हो गया कि वो क्रिकेट में विश्वनाथ नहीं बन सकते, तो उन्होंने फिल्मों को करियर के रूप में चुन लिया। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जुर्म से, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

0: आकाशवाणी समाचार यशवी मेहता वांचे छे। सौ प्रथम मुख्य समाचार। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड खाते फ्लीट सपोर्ट शिप एक लॉन्च कर्यु। पश्चिम एशिया की कटोकटी ने कारण ईंधणना भाव में वधारा की स्थिति वच्चे तमाम हिस्सेदारों साथे सरकार बैठक करशे। एसआईआर मामले निर्वाचन सदन सुधी विरोध कूच करता अटकवाया बाद विपक्षी पार्टी नेता संसद स्ट्रीट पर धरना। तमिलनाडु पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में 5 विधानसभा बैठक और आसाम में 1 लोकसभा बैठक में पेटा चूंटणी मतदान चाली रह्यु छे। नाइजीरियन लश्करी विमान दुर्घटनाग्रस्त थता 32 ना मौत। अने लखनऊ खाते आजनी मैच साथे भारत अने वेस्टइंडीज वच्चेनी T20 क्रिकेट श्रेणीनो आरंभ थशे। समाचार विगतवार। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड खाते फ्लीट सपोर्ट शिप एक लॉन्च कर्यु। फ्लीट सपोर्ट शिप 5 माटे खातमुहूर्त कर्यु अने अपग्रेडेड स्लीप वे 4 अने 300 टननी गोलियाथ क्रेननु उद्घाटन कर्यु। नवी क्रेन साथे अपग्रेडेड स्लीप वे 4 शिपयार्ड ने 45,000 DWT सुधीना जहाज बनावा अने लॉन्च करवामां सक्षम बनावशे। आनाथी मोटा जहाजनु निर्माण करवानी तेनी क्षमतामां वधारो थशे।
1: बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडुए आज जणाव्यु कि पश्चिम एशिया कटोकटी एक मोटी चिंता छे। आ स्थिति ने कारण उड्डयन टर्बाइन ईंधण ETF ना भाव में नोंधपात्र वधारो थयो छे। नवी दिल्ली में मीडिया साथे वात करता श्री नायडुए जणाव्यु हतु कि सरकार परिस्थितिनु मूल्यांकन करवा माटे ETF ना भाव अंगे एरलाइन्स अने ऑइल मार्केटिंग कंपनी साथे चर्चा करी रही छे। तेमणे कह्यु कि मंत्रालय तमाम हिस्सेदार साथे बैठक कर्या बाद निर्णय लेशे। स्पेशियल इंटेन्सिव रिविजन SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितता और मुख्य चूंटणी कमिश्नर CEC ज्ञानेश कुमार ने बरतरफ करवानी मांग ने लई आज विपक्षी पक्षों संसद भवन थी भारतना चूंटणी पंचना मुख्य मथक निर्वाचन सदन सुधी विरोध कूच योजी हती। जो कि चूंटणी पंच तरफ आगळ वधता विपक्षी पार्टी नेताओं ने सुरक्षा कर्मचारीओए तेमने आकाशवाणी भवन पास अटकाव्या हता। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विरोध पक्षना नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विरोध पक्षना नेता राहुल गांधी और अन्य पक्षना विरोध पक्षना सांसदोए संसद स्ट्रीट पर धरना कर्या हता। भाजपे आज कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करता आरोप लगाव्यो छे कि देश में अराजकतानुं वातावरण बनाववा माटे विपक्षी पार्टीओ खास करीने कांग्रेस द्वारा प्रायोजित प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। नवी दिल्ली में पत्रकारों साथे वात करता भाजपना राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्राए जणाव्युं हतुं कि विपक्षी पार्टीओ प्रायोजित रीते देशनी बंधारणीय संस्था विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणीओ करी रही छे। तेमणे कह्युं कि समयांतरे विपक्षी पार्टीओ भारतीय सेना, सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अने EVMને निशान बनावी रही छे। श्री पात्राए उमेर्युं कि छेल्ला केटलाक अठवाडિયા અને મહિનાઓથી અરાજકતાનું વાતાવરણ બનાવવા માટે વિપક્ષ દ્વારા ચૂંટણી પંચને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે। तमिलनाडु पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में 5 विधानसभा बैठक और आसाम में 1 लोकसभा बैठक में पेटा चूंटणी मतदान थई रह्यु छे। तमिलनाडु में मधुरंतकम धारापुरम विधानसभा बैठक, पुडुचेरी में थट्टनजावाड़ी और पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा बैठक में मतदान थई रह्यु छे। आसाम में नागाव एकमात्र लोकसभा बैठक पर मतदान थई रह्यु छे। शुक्रवारे मतगणतरी करवामां आवशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जाहिर सेवामां 25 वर्ष पूर्ण करी रह्या छे ते अंगेनी अमारी आ विशेष श्रेणीमां आजे वात करीशुं। केरळमना विंझीजाम दरियामना बंदरना विकासथी 2047 सुधीमां विकसित भारतना विजनने केवी रीते अमलमां मूकवामां आव्युं छे।
2: વિંઝીજામ આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારતના વિકસિત ભારતના વિઝનને ટેકો આપતા મુખ્ય દરિયાઈ પ્રવેશ દ્વાર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે। આ બંદરની કુદરતી ઊંડાઈ લગભગ 20 મીટર છે, જે વિશ્વના કેટલાક સૌથી મોટા કન્ટેનર જહાજો માટે અનુરૂપ છે। અહીંથી ડિસેમ્બર 2024માં વાણિજ્યિક કામગીરી શરૂ થઈ હતી અને મે 2025માં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા બંદરનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विंझीजाम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंगम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा।
2: તેની વિસ્તરતી ક્ષમતા, વિશ્વકક્ષાની માળખાગત સુવિધા સાથે વિન્ઝિઝામ વૈશ્વિક દરિયાઈ વેપારમાં ભારતનું સ્થાન મજબૂત કરવા માટે તૈયાર છે, જે વર્ષ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત તરફ રાષ્ટ્રની સફરમાં ફાળો આપશે. મિતલ પટેલ, આકાશવાણી સમાચાર, અમદાવાદ.
0: આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળી રહ્યા છો. આ સમાચારનું જીવંત પ્રસારણ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ AIR ન્યૂઝ ગુજરાત પર પણ સાંભળી શકશો. વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ newsonair.gov.in/gu અને અમારા એક્સ હેન્ડલ AIR ન્યૂઝ _ABAD ને ફોલો કરશો.

2017 की शुरुआत में विनोद खन्ना कई बीमारियों का शिकार हो गए। 27 अप्रैल 2017 को कैंसर के कारण उनका देहांत हो गया। मरणोपरांत उन्हें फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड और जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए उन्हें चुना गया। आज भी विनोद खन्ना को हम उनकी अभिनय शैली, उनके स्टाइल और उनकी दिलकश मुस्कान के लिए याद करते हैं। आज का आखिरी गीत फिल्म लहू के दो रंग से, आवाज है किशोर कुमार की।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो भारत की डिजिटल हिफ्जाने सेहत पहल में एक अहम हुसूलियाबी है। और आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा।

0: तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को एक मजबूत और मरबूत समंदरी इको निज़ाम की जरूरत है ताकि वो अपने समंदर की ताकत में इजाफा कर सके और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बना सके। वजीर दिफा ने आज बेड़े के पहले इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी और स्लिप वे 4 नीज 300 टन की एक कोलायत ट्रेन की भी जदीदकारी के काम का इफ्तिताह किया। ये तकरीब विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड में मुनक्किद की गई। जनाब सिंह ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया जाना, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखा जाना और HSL में बुनियादी ढांचे की तशदीद के काम का इफ्तिताह भारत की समंदर से मुतालिक सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने की जानिब अहम इकदाम हैं। उन्होंने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 जिसका नाम सूर्या है, इससे भारतीय बहरिया की रसाई, पायदारी और मुअस्सर कामकाज को तकवियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नए स्लिप हुए और गुलायत ट्रेन से शिपयार्ड्स की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा कि यहां बड़े जहाजों की तामीर के प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा सीट पर आज जिमनी इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में मधुरांतकम और तारापुरम, पुदुचेरी में तट्टान सावडी और मगरबी बंगाल में रेजी नगर और नंदीग्राम असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा असम की नागांव लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। भारत की कौमी टेलीमेडिसिन खिदमत ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो मुल्क भर में क्वालिटी हिफ्जान सेहत को मजीद काबिल रसाई, कम खर्च और सभी शहरियों के लिए मुसावियाना तौर पर फराहम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संगे मील है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी 36 रियासतों और मरकज के जर इंतजाम इलाकों में मजमुई तौर पर 50 करोड़ से ज्यादा टेली सलाह मशवरे रिकॉर्ड किए गए। सेहत और खानदानी बहबूद की भारत ने बताया कि इस हुसूलयाबी से मुल्क के मौजूदा हिफ्जान सेहत निज़ाम की तकमील में टेली मेडिसिन के बढ़ते हुए रोल और खासतौर पर देही, दूरदराज और कम सहूलियात वाले इलाकों में रहने वाले शहरियों को दरपेश फासले, जोग्राफियाई और रसाई में दरपेश रुकावटों पर काबू पाने में कामयाबी की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो इस शोबे में खिदमत और हमदर्दी के जज्बे से काम करें। आज हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर के पहले जलसा तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जिससे इदारे के वक़ार में इजाफा हो और आइंदा नस्लें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तहरीक हासिल करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को अक्सर खुदा का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है और इसलिए खिदमत खल्क उनका अव्वलीन मकसद होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि डॉक्टरों का हमदर्दी से पुर रवैया मरीजों की काफी मदद कर सकता है।
2: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत एक सुनहरी डोर है जो सभी भारतीय जबानों को बाहम मरबूत करती है। आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री कौमी संस्कृत यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के दूसरे सालाना जलसे से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि हर भारतीय जबान एक अजीम जबान है और इन जबानों से मुल्क की सकाफत में गिना कदर तावुन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीगर जबानों के अलावा संस्कृत को फरोग देने के लिए भी बहुत से इकदामात किए हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से भारत के इल्मी निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इस विजन को मजीद तकवियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि वो भारत के इस इल्मी निज़ाम को अपने प्रोग्रामों में शामिल करें। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत का मकाम साइंस, अदब और फलसफे की दुनिया में शानदार हैसियत का हामिल है।

0: आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है कि अपोजिशन पार्टियां बिलखसूस कांग्रेस मुल्क में लाकानूनियत का माहौल पैदा करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से इकदाम कर रही हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ मनसूबाबंद तरीके से इहानत आमेज बयान दे रही हैं।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने आज कहा है कि भारत ने पानी के तहफ्फुज़ के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी कोशिशों में से एक हैं। इनसे जनभागीदारी और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने की अक्कासी होती है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक इख्तरा की एक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत वाली रियासतों में मुख्तलिफ देही तरक्याती इकदाम किए गए हैं। अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक एक एहतजाजी मार्च किया, जो भारत के इंतखाबी कमीशन का सदर दफ्तर है। ये मार्च खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के अमल में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बरतरफ करने के मुतालबे के तहत किया गया। अलबत्ता जब ये मुजाहिरीन आकाशवाणी के करीब इंतखाबी कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे तो हिफाजती अमले ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकाने पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर धरना दिया। यमन में आज लड़ाई में उस वक्त शिद्दत आ गई जब सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फोर्सेस ने हूसियों के खिलाफ नई कार्रवाइयां अंजाम दीं। सऊदी इत्तेहाद फोर्सेस के मुताबिक उसकी बहरी अफवाज ने जद्दा में एक कार्रवाई करते हुए असलहा के जखायर, धमाका खेज मवाद से लैस कश्तियों और बहरी बारूदी सुरंगों को जखीरा करने वाली तनसीबात को तबाह कर दिया। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 बैनुल अख्वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैनुल अख्वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो भारत की डिजिटल हिफ्जाने सेहत पहल में एक अहम हसूलियाबी है। आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस: Defence Minister Rajnath Singh launches Fleet Support Ship 1 and lays keel for Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard in Visakhapatnam. Polling underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. E-Sanjeevani crosses 50 crore teleconsultations, marking a milestone in India's digital healthcare initiative. World Bank raises India's GDP growth projection by 0.5% to 7.1%

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन

0: स्टेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
1: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
0: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिपवन भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु पेड़ पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है। हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें
1: और पीबी

0: अब पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
3: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
1: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
4: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और EVM को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
4: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल

0: उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली चार पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मित्रों घणा बधा मित्रों ना फोन आवी रह्या छे, कारण के हिंदी फिल्मों नी वात होय एटले श्रोता मित्रों ना फोन तो आवाना ज। नीता राणा, अरविंद भाई कालीना थी, भरत खोना, विभाबेन, भावनाबेन प्रजापति अने फिल्मोनू तो लांबू लिस्ट मने आपी दीधुं छे, परंतु आपणे धीमे धीमे धीमे धीमे ए फिल्मो तरफ वळीए। तो पहली फिल्म छे लव यात्री, जे आवी हती 2018 आमां हता बे गरबा, एक तो छोगाड़ा तारा अने बीजो हतो ढोलीडा। मित्रों आ फिल्मनी जे वार्ता हती ए गुजरात अने नवरात्रिना तहेवारनी आसपास ज वणायेली हती।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना अने न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लिकेशन पर खरा सोना जो कार्यक्रम गीत गुर्जरी कार्यक्रम में आज मैं आपने प्रश्न कर्यो छे कि हिंदी फिल्मों में कया कया गुजराती गरबाओ छे। तो मित्रों 2018 में फिल्म आई थी मित्रों, अने आ फिल्म में हतो पेथलपुर में पावो वाग्यो। पारंपरिक गुजराती लोक संगीत गरबाना जे बीट्स होय एने एकदम मॉडर्न बीट साथे एकदम जबरदस्त एनो रिमिक्स करी गरबा ट्रेक बनावामां आव्यो। अने मित्रों सरस्वती चंद्र माटे घणा बधा फोन आव्या के लता मंगेशकरे जे गीत गायुं हतुं मैं तो भूल चली बाबुल का देश, आ गीत पण आ गरबो पण खूब फेमस थयो हतो अने अनेक वर्षो सुधी ए लोकोना हृदय में राज करतो हतो अने आजे पण ए एटलो ज राज करे छे।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना अने न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लिकेशन पर खरा सोना जो कार्यक्रम गीत गुर्जरी मित्रों जतिन भाई दर्जी नो फोन हतो अने एमनु केवू छे खूबसूरत फिल्म में संजय दत्त अने उर्मिला घूंघट में चांद होगा आ गीत पर गरबा रमता देखाता हो तो हंसा ठाकर कहवु कि जय संतोषी में फिल्म आई थी एम तो आरती उतारू रे आ गीत पर गरबोज ले पीयूष भाई मेहता फोन हतो उषाबेन खोना भरत भाई खोना नीता राणा रमेश भाई मलाड़ थी आ मित्रों फोन करीने अनेक फिल्मों नामों जणाव्या छे गंगूबाई काठियावाड़ी आ फिल्म आई थी 2002 में ढोलीडा आजे गीत छे आजे गरबो छे एमा आलिया भट्ट काठियावाड़ी अंदाज में एकदम पारंपरिक आकर्षक गरबा नृत्य करती देखाय छे अने आज फिल्म में बीजो पण एक गरबो छे झूमरे गोरी झूम जुम।

मित्रों 2019 में फिल्म आई थी मेड इन चाइना अने आ फिल्म में ओढ़णी ओढ़ू ओढ़ू ने उड़ी जाए अने सनेड़ो मित्रों राजकुमार रावनी आ फिल्म में ओढ़णी ओढ़ू ओढ़ू गुजराती गीत अने सनेड़ानो रिमिक्स करी एने एक नवोज अंदाज नवोज रंग नवाज रूप में ढाळवामां आव्यो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये राशि ऐसे छोटे और मझौले उद्यमों को लंबे समय के लिए इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगी, जिनका कारोबार मजबूत है और जिनमें आगे विस्तार की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत

0: यह फाउंडेशन है ऐसा मैं मानता हूं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरंतकम में मतदान का प्रतिशत 70.31% और धारापुरम में 68.08% है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां जनता ने बार बार किसी एक नेता को अपना समर्थन दिया हो। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री के आधार पर 31.8% बढ़कर 25 लाख इकाई से अधिक हो गई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority. Briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the authority will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
3: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
2: The cabinet has also given a nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises. Union Cabinet today passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi for completing 25 years as the head of the government. Mr. Modi became the Chief Minister of Gujarat on 7th of October 2001 and then became Prime Minister in 2014. And tomorrow he will complete 25 years as the head of government. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, Prime Minister Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. The Ministry of Defence has signed a contract worth over 660 crore rupees with BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. The contract under the Buy Indian, Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was inked in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. Defense Minister Rajnath Singh launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5, and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Vishakhapatnam today. Addressing the gathering, Mr. Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। आइए सुनते हैं डिस्को डांसर फिल्म से ये गाना बप्पी लहरी की आवाज में।

0: Research Institute invites applications from Indian nationals for 13 scientific positions comprising one technical assistant and 12 technical officers in various disciplines including science communication, civil engineering, chemical engineering, MBA, biochemistry, microbiology, chemistry, geology and geoinformatics. The posts are in pay level 6 and level 7 as per the 7th CPC with approximate monthly emoluments of 69,480 to 86,580. The maximum age is 18 years with upper age limit of 28 years for technical assistant and 30 years for technical officer subject to applicable relaxations. Online applications closes on 15th October 2026. Detailed advertisement and online applications available under the HRD Recruitment Permanent Staff at www.neri.res.in. The Ministry of Consumer Affairs, Department of Food and Public Distribution invites applications for 10 posts of Deputy Director S&R in pay level 11 as per the 7th CPC to be filled on deputation including short-term contract basis. Eligible government officials meeting the prescribed conditions may apply through proper channel. Applications should include the prescribed biodata, certification by the employer, cadre controlling authority and duly attested copies of ACRs, APRs for the preceding 5 years. Applications of suitable officers who can be spared immediately should reach the Under Secretary SRA, Department of Food and Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi, within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Details on the prescribed performer available on www.dfpd.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रेस परिषद को आवश्यकता है सहायक अनुभाग अधिकारी की। एक पद ओबीसी श्रेणी के लिए तथा दो पद अनारक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.presscouncil.nic.in। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में प्रशासनिक अधिकारी का पद भरा जाना है। वेतन, भत्ते, अन्य शर्तें समय समय पर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ही रहेंगे। इच्छुक और पात्र अधिकारी काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट जे में इस पद के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट dor.gov.in/vacancies। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वरिष्ठ सुपरिंटेंडेंट, काउंसलर, कनिष्ठ इंजीनियर, नर्सिंग सहायक, कनिष्ठ ऑफिस सहायक, कनिष्ठ सहायक एमएस और परिचारक। कनिष्ठ ऑफिस सहायक के 2 पद तथा कनिष्ठ सहायक के 10 पद उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी पदों पर एक एक रिक्ति ही उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में फोरमैन इलेक्ट्रिकल का 1 पद रिक्त है। इसे भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियम और शर्तों, आवश्यक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देखिए 19 से 25 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में

0: प्रशासनिक अधिकारी सह लेखाधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। पात्रता की शर्तों, सेवा की शर्तों, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि आदि का विवरण राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है www.nin.ayush.gov.in। क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय आमंत्रित कर रहा है अपर श्रेणी लिपिक के पद के लिए आवेदन। शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान, तैनाती के स्थान और अन्य आवश्यक शर्तों और निर्देशों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट rdsdetelangana.dgt.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akash

0: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
1: हेलो जया। नमस्कार आदाब एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikrama. And yes, as always, hum laaye hain aapke liye taza tareen khabrein, uske saath hi, since the name of the show is Parikrama, so of course we'll do the Parikrama of the country and see what interesting stories our correspondents have. So without much ado, Jaya, I think let's start with the headlines.
0: Bilkul.
1: Defence Minister Rajnath Singh launches Fleet Support Ship 1 and lays keel for Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard in Vishakhapatnam.
0: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी।
1: ई संजीवनी क्रॉसेस 50 करोड़ टेली कंसल्टेशंस, मार्किंग अ माइलस्टोन इन इंडियाज डिजिटल हेल्थ केयर इनिशिएटिव।
0: विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया।
1: And India to take on West Indies in the first T20 match at Lucknow this evening. And Jaya, as always, we start our show with a special segment, Dateline India, in which today we are going to talk about International Geodiversity Day and World Cerebral Palsy Day. Well, Jaya, there are stories that we read in books and there are stories that we literally walk on. Every hill, every stone, every grain of soil carries a chapter of Earth's extraordinary journey. Today on International Geodiversity Day, we are invited to notice something that we see every day, yet rarely stop or truly understand. That is the world beneath our feet. And the theme for this year is Geodiversity at our doorstep.
0: और ये जो थीम है वो हमें याद दिलाती है कि भूविविधता यानी जैव जमीनी विविधता किसी दूरस्थ पर्वत, गहरी गुफा या संग्रहालय तक सीमित नहीं है। हमारे चारों ओर की मिट्टी, चट्टाने, खनिज, जीवाश्म, पर्वत, घाटियां और भूदृश्य सभी इसकी कहानी कहते हैं।
1: That's very right. And but what exactly is geodiversity? Well, if to tell our listeners in simple terms, it is the variety of the non-living natural world, that is rocks, minerals, fossils, soils, landforms and landscapes. In fact, इनके लिए नॉन लिविंग भी कहना कह सकते हैं मुनासिब नहीं है, बिकॉज चट्टाने और पहाड़ भी हर साल थोड़ा

0: थोड़ा थोड़ा करके उनकी हाइट बढ़ रही, सो वी नेवर नो, दे हैव अ लाइफ ऑफ अ डिफरेंट काइंड, इजंट इट? एंड दिस अपेरेंटली साइलेंट वर्ल्ड एक्चुअली प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑन विच लाइफ फ्लरिशेस. विदाउट द राइट सॉइल्स, रॉक्स एंड वाटर सिस्टम्स, इवन बायोडाइवर्सिटी वुड लुक वेरी डिफरेंट. इनफैक्ट स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है कि यू नो, पानी से जमीन को जिंदा किया गया, बिकॉज उसी जमीन जब वो जिंदा हो जाती है पानी पड़ के, तो वो कितने सारे पेड़ पौधे फल हम लोग को देती है. सो ऑब्वियसली दे आर, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ ऑफ देयर ओन.
1: बिल्कुल. तो श्रोताओं, क्या अभी कभी भी आपने ये सोचा है कि मिट्टी का रंग अलग अलग क्यों होता है? कहीं धरती उपजाऊ मैदान बन जाती है तो कहीं पथरीली पहाड़ियाँ, कहीं रेत के टीले दिखाई देते हैं तो कहीं काली मिट्टी के विशाल खेत. इन सब के पीछे केवल संयोग नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं.
0: Absolutely. And our beloved country, India, offers a spectacular demonstration of this diversity, Jaya. Whether we talk about the young, towering Himalayas or the ancient Aravali ranges, aap aaj dekhiye Aravali ki to bas choti choti pahadiyan dikhti hain. But if we read about them, then we get to know ki wo Himalaya se bhi uchi hoti thi. Aur jo zahir si baat hai, jo aaj chote hain wo kal uche the, jo aaj uche ho sakte kal baad mein wo chote ho jaye. So it's continuously bahut sari halchal machi rehti hai jo hum log notice nahi kar pate, but it's happening. Or if you look at the fertile Gangetic plains, or maybe the Thar desert that we have, the volcanic landscapes of the Deccan plateau, and even our long and varied coastline, it is almost like an open air geological textbook.
1: और भारत की इस धरती को यदि एक विशाल पुस्तक माने तो प्रत्येक प्रदेश उसका एक अलग अध्याय है. हिमालय हमें पर्वत निर्माण की कहानी सुनाता है. थार मरुस्थल, जिसका अभी आपने जिक्र किया, वो हवाओं द्वारा गढ़े गए भूत ऋषियों की कहानी कहता है. वहीं दक्कन का पठार प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों की. तो एक ही देश में धरती के इतने अलग अलग रूप, यही तो हमारी वास्तविक प्राकृतिक संपदा है.
0: That's so very right. And this diversity is not merely beautiful, it even shapes everyday life. Consider something as familiar as farming. Well, the nature of soil, the availability of water, and shape of the land influence what can be cultivated and how people live. Geography quietly enters our kitchens, our homes, and even our livelihoods.
1: एक परिचित उदाहरण देखते हैं. दिल्ली की अरावली पर्वतमाला से जुड़े क्षेत्र, महानगर के बीच दिखाई देने वाली यह पर्वतमाला केवल हरियाली और चट्टानों का दृश्य नहीं है, ये पृथ्वी के अत्यंत प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास का हिस्सा है. जिस धरती पर आज सड़कें, इमारतें और बस्तियां हैं, उसके नीचे समय की कितनी लंबी कहानी छिपी है. अभी भी अगर हम बात करें पुराने लोगों से जो काफी एजेड है, तो वो बताते हैं कि दिल्ली एक समय पे किस तरह का गांव हुआ करता था.
0: That's right. And of course, urbanization to badh raha hai, but what we, if you look at it from the prism of geodiversity, then obviously jo ridge area hai, aap dekhiye aaj bhi aapko wahan pe wo chote chote hills and milenge, so that you can see that, you know, oh, this place was something very different what it looks like today. And when we travel west towards Rajasthan, the landscape changes dramatically. The Thar presents vast sand dunes that are shaped by wind, while the Aravallis, they offer a strikingly different terrain. Same country, different geological setting, different soils and resources, and naturally that leads to different ways in which communities have adapted to their surroundings.
1: लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा प्रश्न जन्म लेता है कि क्या हमारी प्राकृतिक विविधता केवल देखने की वस्तु है? तो बिल्कुल नहीं. हमारी मिट्टी कृषि को आधार देती है. चट्टाने और खनिज अनेक संसाधनों का स्रोत हैं. भू आकृतियां जल के संरक्षण, संचरण और संचयन को प्रभावित करती है, और ये सभी मिलकर मानव जीवन और जैव विविधता के लिए एक आधार तैयार करते हैं.
0: Well, John Muir, the legendary naturalist, once said that the mountains are calling and I must go. On Geodiversity Day, perhaps we can take that thought one step further. We do not always need to travel to distant mountains. Sometimes the most fascinating geological story is waiting right outside our door, beneath a familiar road, beside a field or on a nearby hill.
1: और जब हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो साधारण वस्तुएं भी असाधारण लगने लगती है. मिट्टी केवल मिट्टी नहीं रह जाती, वह जल, खनिज और जीवन का आधार बन जाती है. कोई चट्टान केवल पत्थर नहीं रह जाता, वह पृथ्वी के प्राचीन इतिहास का प्रमाण बन जाता है। कोई पहाड़ी केवल दृश्य नहीं रहती, वह समय की एक जीवित स्मृति बन जाती है।
0: That's right. And

0: Well, the Deccan Plateau, it gives us another remarkable example, Jaya. It's a famous Deccan Traps. They were formed by enormous volcanic eruptions in the distant geological past, leaving behind extensive layers of basalt. Today, these landscapes are simply part of India's scenery, but if you look closer, then they reveal a dramatic chapter in the geological history of our planet.
1: तो अगली बार जब हम किसी पहाड़ी, नदी, खेत या रेतीले प्रदेश से गुजरे तो एक क्षण रुककर जरूर पूछिए कि ये भूदृश्य ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है, इसकी मिट्टी ऐसी क्यों है, इसकी चट्टानी कहाँ से आई। प्रश्न छोटे हैं, लेकिन उनके उत्तर हमें करोड़ों वर्षों पीछे ले जा सकते हैं। यही भू विविधता को जानने का आनंद है।
0: एंड देन देयर इज एन इवन बिगर रीजन टू केयर। वेल, अंडरस्टैंडिंग जियोडायवर्सिटी हेल्प्स अस मेक वाइजर डिसीजंस अबाउट आवर नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। इट रिमाइंड्स अस दैट डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द फिजिकल फाउंडेशन ऑन व्हिच इट स्टैंड्स। To protect the future, we must first understand the ground beneath it.
1: भारत की विविधता को हम प्रायः उसकी भाषाओं, वेशभूषाओं, परंपराओं और त्योहारों में खोजते हैं, पर हमारी विविधता की जड़ें इससे भी गहरी हैं। हिमालय से थार तक, अरावली से दक्कन तक और तटों से उपजाऊ मैदानों तक, हमारी धरती स्वयं अनेक रूपों में हमें एक ही संदेश देती है, विविधता ही हमारी शक्ति है।
0: And yes, another quote by John, that when one tugs at a single thing in nature, he finds it attached to the rest of the world. Geodiversity makes that connection visible. The rock connects to the soil to the water, water to life, and of course, life to us.
1: तो श्रोताओं, आज अपने आसपास एक नई दृष्टि से देखिए। किसी चट्टान को केवल चट्टान मत समझिए, किसी मिट्टी को केवल धूल मत समझिए, किसी पहाड़ी को केवल दृश्य मत समझिए। इनके भीतर समय की अनगिनत परतें हैं और भारत जैसे विविध देश में ये कहानी हमारे चारों ओर बिखरी हुई है।
0: Yes, so the next time your feet touch the ground, remember you're standing on billions of years of history, and that perhaps is the most fascinating story of all, the story beneath our feet. Well, Jaya, that makes us come to our next topic in Dateline India. Yes, today we are observing the World Cerebral Palsy Day, and every person carries a story that deserves to be heard. Every movement, every milestone, every achievement can look different. On World Cerebral Palsy Day, we are reminded that disability does not define a person's dreams. Opportunity, understanding and inclusion can help those dreams find their way into the world.
1: बिल्कुल, सेरेब्रल पॉल्जी किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि उसके जीवन का एक पक्ष है। ये एक ऐसी स्थिति है जो मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न हो सकती है और मुख्यतः शरीर की गति, संतुलन, मुद्रा और मांसपेशियों के नियंत्रण को प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुभव अलग ढंग से करता है।
0: And the scale of the story is larger than many of us realize. An estimated 50 million people worldwide live with cerebral palsy. 50 million lives, 50 million personalities, 50 million different journeys. So perhaps the question is not what people with cerebral palsy cannot do, but whether we have created enough opportunities for what they can.
1: और भारत ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 सेरेब्रल पॉल्सी सहित अनेक दिव्यांगताओं से जुड़े व्यक्तियों के कल्याण के लिए विधिक आधार प्रदान करता है। वहीं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समानता, गरिमा और अधिकारों की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
0: And India's commitment is not merely written in law. National institutions and composite regional centers across the country conduct awareness and inclusion programs for people with cerebral palsy and their families. That matters because inclusion begins when accessibility becomes ordinary in classrooms, workplaces, public spaces, technology and everyday conversations.
1: बिल्कुल, और हेलेन केलर ने भी कहा था कि अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। यही भावना इस वर्ष के अभियान में दिखाई देती है। वर्ष 2026 की वैश्विक पहल का संदेश है यूनिक एंड यूनाइटेड, अर्थात हर व्यक्ति अपनी विशिष्टता के साथ अलग है, फिर भी हर समान अधिकारों और अवसरों के लिए एकजुट है।
0: That's right. And that reminds me of another Helen Keller quote. That's one of my favorite, Jaya. She said that, you know, those who are blind are not truly blind, but those are truly blind who have eyes yet cannot see. तो हम लोग जो so-called हर तरह से सही, अगर हम लोग जो है दूसरों की, खासतौर से अगर जो सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित हैं, उनकी अगर हम लोग मुश्किलात नहीं देख सकते, you know,

0: if we do not give them the right opportunity, then we are the ones who are blind and not them. So it is everybody's responsibility to be sensitive to each other. And that's, of course, that is not a day for sympathy. It is a day to listen and to understand, to ask which barrier should disappear, which classroom should become more accessible, which building should be more, friendly to physically challenged people. Because there are so many people, places around. जो हम कहीं भी जाते हैं, मेरे साथ एक यू कैन से एक ऑटोमेटिक स्विच होता है दैट यू नो अगर मेरी जगह यहाँ पे कोई ऐसा इंसान होता है जो व्हील चेयर बाउंड है, तो वेदर दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट पर्टिकुलर इवेंट और कॉन्सर्ट दैट आई एम अटेंडिंग, क्या वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर पाता?
1: जी,
0: यू वॉन्ट बिलीव जया, आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ द प्लेसेज अभी भी दे नीड अ लॉट ऑफ वर्क इन अ सोसाइटी. ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ वर्क इज बींग डन, बट आई थिंक ईच वन ऑफ अस नीड्स टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस. एंड वेल, वी ऑल हैव टू पॉन्डर ऑन दैट विच workplace should open its doors wider, which voice deserves to be heard. The global campaign invites people to name that change, share it, and connect with someone who can help it make it real, you know.
1: बिल्कुल, और शायद यही इस दिन की सबसे सुंदर सीख है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी कठिनाई से नहीं, उसकी संभावनाओं से होनी चाहिए. भारत की शक्ति भी तो इसी विविधता में है, जहां अलग अलग क्षमताएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि समाज को अधिक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और मानवीय बनाती हैं.
0: So on this World Cerebral Palsy Day, let us not ask people to fit into a world that was never designed for everyone. Let us redesign that world to accommodate everyone. Because when every person gets the chance to learn, work, create, communicate and dream, India does not merely become more inclusive, it becomes stronger.
1: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है.
0: So we are going to start with the parikrama of the country, and we are beginning our journey from down south, from God's own country, Kerala. In a major initiative aimed at enhancing the comfort, health and dignity of women travelers across the state, the government of Kerala is launching a comprehensive scheme to install sanitary napkin vending machines and eco-friendly incinerators in key public locations. Let's hear more from our correspondent.
2: The state-level inauguration of the project will take place at the State Road Transport Corporation Bus Terminal at Thiruvananthapuram this evening, titled WOMN, Women on the Move and Menstrual Needs. The project is being executed under the leadership of the Department of Women and Child Development. In the pilot phase, automatic vending machines alongside disposal incinerators are being set up across 14 major bus terminals and depots, one in each district across Kerala. Under this scheme, women and girls can instantly purchase a packet containing 3 quality sanitary napkins at a highly subsidized rate of ₹10. To ensure seamless execution and maintenance, Public Sector Enterprises, HLL Life Care Limited is partnering to stock the vending machines and to train terminal staff, while the RTC will oversee the daily operations and upkeep of both the vending units and incinerators. Following the initial phase, the women and Health Development Department plans to expand the project to prominent tourist destinations, major railway hubs and high footfall public spaces throughout Kerala. The dual provision of affordable menstrual hygiene products alongside safe, eco-friendly incinerators aim to ease travel anxieties for women while fostering hygienic and sustainable waste management in public infrastructure. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: और अब चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ. पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी नशा मुक्त बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. इसी क्रम में प्रशासन की ओर से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा पदयात्रा का आयोजन किया गया. सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट.
3: नशा मुक्त युवा, स्वस्थ युवा, सशक्त समाज. युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं. जब युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल, रोजगार और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ते हैं, तो समाज की प्रगति की राह और मजबूत होती है. इसी संदेश के साथ श्री विजयपुरम में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत एक जागरूकता रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया. रैली में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने नशा मुक्ति के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली को हरी झंडी खाकर रवाना किया. इस रैली में लगभग 1600 युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. रैली के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया. युवाओं ने हाथों में जागरूकता संदेश लिए लोगों से

0: Subbarayan was imprisoned for participating in the Quit India movement. He was elected to the Constituent Assembly from Madras and made important contributions to the debates on adult franchise, civil services, rule of law and the official language.
1: From 1949 to 1951, Subbarayan served as Independent India's first ambassador to Indonesia. Subbarayan also served as a member of the Rajya Sabha from 1954 to 1957. He was elected to the Lok Sabha from Tiruchengod in 1957 and served as a member till 1962. He was again elected to the Lok Sabha in 1962, but was instead appointed as the governor of Maharashtra. He passed away on 6th October 1962. In 1989, during his birth centenary, India Post issued a stamp to honor him.
0: On this day in 2007, a veteran freedom fighter from Maharashtra, Babasaheb Bhosle, passed away at the age of 86. Bhosle participated in the Satyagraha in 1939 while he was a student. He was imprisoned for 1.5 years in 1941-42. Bhosle was born on January 15, 1921 at Satara in western Maharashtra. He was a law graduate and completed Bar at Law in 1951 and practiced for 10 years in Satara. In 1980, he was elected to the Maharashtra Assembly and later handled various important portfolios. Former President Pratibha Patil was a member of Bhosle's cabinet during his tenure as the Chief Minister of Maharashtra in 1982-83.
1: Bhosle started the scheme of providing free education to girl students till 10th class. He started the Aurangabad bench of the Bombay High Court and also created Gadchiroli district. Bhosle was instrumental in initiating welfare measures for freedom fighters and started a pension scheme for them.
0: On this day in 1942, freedom fighter Bhojaram Kolita made supreme sacrifice for the motherland. He was an active participant in the Quit India movement.
2: आज भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उस महान वीर सेनानी की पावन स्मृति का भी गवाह है जिसने फिरंगियों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। आज नाना साहब पेशवाजी की पुण्यतिथि है जिनका अवसान 6 अक्टूबर 1858 को हुआ था। कानपुर के बिठूर को अपनी क्रांति का केंद्र बनाकर उन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर आजादी की जो मशाल जलाई वो अमर हो गई।
3: Today we are also remembering Meghnad Saha, an astrophysicist who helped devise the theory of thermal ionization. His Saha ionization equation allowed astronomers to accurately relate the spectral classes of stars to their actual temperatures. We remember him on his birth anniversary.
2: श्रोताओं बात करते हैं रुपहली पर्दे के एक ऐसे जादुई शहंशाह की जिनका नाम लिए बिना 70 और 80 के दशक का सिनेमा अधूरा है। मैं उनका नाम उजागर करूं उससे पहले जरा उनका ये बेहद मशहूर और दमदार डायलॉग सुनिए।
4: गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ। तुम अगर मेरे हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी रख दो तब भी मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा।
2: जी हाँ, अपनी बुलंद आवाज और रौबदार शख्सियत से सिनेमा हॉल में तालियों की गूंज पैदा करने वाले हमारे एवर ग्रीन स्टार विनोद खन्ना जी की आज जयंती है।
3: Yes, so we are remembering him on his birth anniversary and of course recognized as a style and fashion icon. Vinod Khanna is widely regarded as one of the greatest stars in Indian cinema's history. And though initially when he appeared in films, Jaya, he mainly appeared in negative roles, you know, main hero wale unka wo nahi dete the. But he portrayed as this very angry young man in Mere Apne, the main antagonist in the action drama Mera Gaon Mera Desh, and a military officer turned fugitive in the crime drama Achanak. He emerged as a pivotal figure in the 70s Indian cinema, establishing himself as a leading action hero and box office magnet who rivaled Amitabh Bachchan's dominance.
2: जी, और सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनकी इसी अद्भुत और अमिट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2018 में मरणोपरांत भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के से नवाजा था। और श्रोताओं, विनोद खन्ना जी पर्दे पर जितने दमदार एक्शन हीरो थे, रोमांटिक गानों में उनका अंदाज भी उतना ही मखमली और कशिश भरा होता था। साल 1980 में आई फिल्म कुर्बानी में जब वे सफेद सूट पहनकर पर्दे पर आए तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। तो आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा ये बेहद खूबसूरत गीत।

और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए जया और सायरा को आज का ये अंक यहीं समाप्त करने का। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में इलाज किया जा रहा है। भारत ने क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले तुरंत रोकने की अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में।
2: कांग्रेस पार्टी को 55 वर्ष इस देश में शासन करने का मौका मिला है और उसमें से 2 साल इमरजेंसी लगा के शासन किया और उस इमरजेंसी के समय में संविधान का प्रीएम्बल को बदल दिया। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और आज ये लोकतंत्र की बात करता है।
0: पार्टी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री के आधार पर 31.8% बढ़कर 25 लाख इकाई से अधिक हो गई है। सितंबर में सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच शाम 7 बजे लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the authority will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में,
4: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग विद न्यू रेलवे लाइन्स, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड, एन इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी एंड प्लान ऑल दीज एस्पेक्ट्स।
1: एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
3: The cabinet has also given a nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises. The Union Cabinet today passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi for completing 25 years as the head of government. Mr. Modi became the Chief Minister of Gujarat on 7th October 2001 and then became Prime Minister in 2014, and tomorrow he will complete 25 years as the head of government. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said Prime Minister Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. The Ministry of Defence has signed a contract worth over 660 crore rupees with BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. The contract, under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category, was inked in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. Defence Minister Rajnath Singh launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Vishakhapatnam today. Addressing the gathering, Mr. Singh said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defence capabilities. Defence Research and Development Organisation DRDO today conducted a successful flight trial of the indigenously developed high-altitude platform. On its successful flight trial, Defence Minister Rajnath Singh congratulated the team, saying it is an important milestone in India's Atmanirbhar Bharat journey towards realising a long-endurance stratospheric airship. Opposition parties today held a protest march from Parliament House to the Nirvachan Sadan, headquarters of the Election Commission of India in the national capital, over alleged irregularities in the Special Intensive Revision, SIR.

तेरे आने से यूं खुश है दिल, तेरे आने से यूं खुश है दिल, ज्यों की बुलबुल बहार की खातिर। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जहां ये समय है गाते गुनगुनाते का। और गाते गुनगुनाते में मैं आपके लिए हर बार लेकर आती हूं कुछ सवाल, जिनके जवाब आप हमको लिखकर भेजते हैं और फिर हम आपके नाम यहां शामिल करते हैं। तो इससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सबके लिए इंतजार कर रहा है।

2001 में एक फिल्म आई जिसमें तीन दोस्तों की कहानी दिखाई गई। तीनों का ही जिंदगी को देखने का अलग नजरिया है। वो साथ घूमते फिरते हैं, कोई बहुत संजीदा है तो कोई चुलबुला। प्यार की भरी भाषा भी, या यूं कहें कि प्यार की जो डेफिनेशन है, प्यार को जैसे वो समझते हैं, वो भी इन तीनों दोस्तों की अलग अलग है। शंकर एहसान लॉय के म्यूजिक के साथ जावेद अख्तर और समीर साहब के लिरिक्स इस फिल्म के गानों में जो है वो हमें सुनने को मिले। और इनके लिरिक्स ने, हम ये भी कहेंगे कि इस फिल्म के गानों को एक अलग मकाम तक पहुंचाया। तो अगर आप इन हिंट्स के सहारे एक कहानी बुन पा रहे हैं, किसी कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हैं, यानी कि फिल्म का नाम आप पहचान चुके हैं, तो आप फिल्म का नाम टाइप करें और जल्दी से इसे सेंड कर दें fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, ये कुछ आप कह सकते हैं कि हिंट्स मैंने आपको दी हैं, और अगर इन क्लूज के सहारे आपने फिल्म का नाम पहुंचा लिया और मैं इधर पहचान लिया है, तो मैं इधर देख सकती हूँ लेफ्ट हैंड पर कि स्क्रीन पर आपने फिल्म को पहचान लिया है बहुत अच्छे से और नाम लिखकर भेज भी दिए हैं। तो जब तक और कुछ नाम जो हैं, यानी कि और कुछ श्रोता जो हैं हमें आंसर्स लिखकर भेजते हैं, मैं आपको गाना सुनवा रही हूं दिल तो पागल है फिल्म से। और ये मुझे पता चल गया कि आपको पता चल गया कि मैंने कौन सी फिल्म पूछी है आपसे। तो बस इंतजार थोड़ा सा, एक बहुत ही प्यारा गाना दिल तो पागल है का टाइटल ट्रैक आप सबके लिए।

0: आप लोगों ने बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। सिर्फ दो चार लिसनर्स को छोड़कर सबके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं, लेकिन यहां मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते ही बताऊंगी कि किसने सबसे पहले सही जवाब लिखकर भेजा है। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल अपराजिता के साथ।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।

तो भाई हमने पूछा एक सवाल, आपको दिए कुछ क्लूज और आपने लिख भेजे जवाब। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी, जिन लोगों ने ये बताया है कि फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो पहला क्लू आपने नहीं सुना इसका मतलब, क्योंकि मैंने कहा कि 2001 में ये फिल्म आई और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आई 2011 में, मतलब 10 साल का अंतर। तो आपका जवाब सही नहीं है। सही जवाब सबसे पहले हमें लिखकर भेजा है किसने, ये मैं बता देती हूं। पहले नंबर पर नवीन भाटिया साहब ने लिखा जवाब और भेजा भी, नागेंद्र ठक्कर ने दूसरे नंबर पर, और रोहित ठाकुर गुरुग्राम से आते हैं तीसरे स्थान पर। आप सभी को ढेरों बधाइयां। इसके बाद धीरज अरोड़ा, संजीव कुमार, भारती, राहुल सक्सेना, मिलिंद खड़के, निरंजन भालेराव, राजेश शर्मा, इदरिस सैफी, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, नवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, जगदीश बजाज, सौरभ ठक्कर और शशि भूषण, गिरीश वैशाली, ज्योत्सना बम, और आपके साथ हैं अशोक शाणे भी वडोदरा से, सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी सोनीपत से देते हैं सही जवाब, सतप्रकाश सोनौठिया रोहिणी से, मधु किरण दिल्ली से, और सही जवाब लिख भेजा है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फाहिरा, ताहिरा ने कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से। और आप सभी ने बिल्कुल सही सही पहचाना है कि फिल्म का नाम है दिल चाहता है, बिल्कुल। और इस फिल्म में एक्टिंग की आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, डिंपल कपाड़िया, प्रीति जिंटा और सोनाली कुलकर्णी ने। फिल्म को डायरेक्ट किया फरहान अख्तर ने, और गाना आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन आप जानते हैं पहले सवाल जरूर पूछूंगी मैं आपसे। तो आप सबके लिए अगली पहेली क्या है, 2000 के दशक की ही ये फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया श्याम बेनेगल ने, और फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में, और हीरोइन को फिल्म में परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से

0: नवाजा गया। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स कैटेगरी में अवार्ड मिला फिल्म फेयर का। इस फिल्म के साथ ही क्रिटिक्स ने श्याम बेनेगल की इस फिल्म को कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा के फर्क को कम करते हुए देखा। उन्हें लगा कि इस फिल्म के जरिए इन दोनों ये जो दो श्रेणी है, पैरेलल फिल्म और कमर्शियल फिल्म, इन दोनों की दूरी को इस फिल्म ने कम किया है, श्याम बेनेगल की फिल्म ने। और अगर हम अदाकारों की बात करें तो मेन लीड्स की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो आपको गेस करना है या फिर फिल्म का नाम गेस करेंगे तो आप बता ही देंगे। फिलम में अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, लिलिट दुबे, शक्ति कपूर जैसे कलाकारों ने काम किया। एआर रहमान का संगीत रहा और लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे। अगर आप पहचान चुके हैं ये कौन सी फिल्म है जिसका जिक्र मैं
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सही पहचाना है आप लोगों ने इस बार भी फिल्म को, और कुछ ही नाम है फिल्म के जो सही नहीं है, एक दो लिसनर्स ने ऐसे भेजे हैं, तो मैं बताती हूं आपको। पहला सही जवाब हमें लिख भेजा है नवीन भाटिया साहब ने मोतीनगर दिल्ली से। दूसरे नंबर पर आते हैं नागेंद्र ठक्कर, और तीसरे नंबर पर हैं पुष्प और दिव्या झा। और धीरज अरोड़ा के वैसे ईमेल आईडी से आपने ईमेल किया है, तो मैं इनका नाम भी शामिल कर देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद राहुल सक्सेना ने लिखकर भेजा सही जवाब, निरंजन भाले राव हैं हमारे साथ, देवेंद्र यादव हैं, और इसके बाद इदरिस सैफी, भगवती सिंह, सतप्रकाश सनौठिया रोहिणी से, मिलिंद खड़के, दीपक गुप्ता, दरवेश मोड़, अतुल अग्रवाल गाजियाबाद से सही जवाब लिखकर भेजते हैं, रोहित ठाकुर हैं हमारे साथ गुरुग्राम से, मधु किरण हैं और प्रकाश गोगिया हैं दिल्ली से, प्रणव शिंदे, शशि भूषण और सही जवाब लिखकर भेजते हैं शांतिनगर सोनीपत से, सुदर्शन, अनीता और सिमरन मुखी भी, पूजा कुमारी और आयुष हरिनगर से सही जवाब लिखकर भेजते हैं, और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान आपने सही सही बताया, ललित कुमार, डीबी राणा साहब नेहरू विहार से, गिरीश बम, अंजलि अथर्व और निमकर आपके साथ हैं, और इसी के साथ फारूक अली खान, फैजी फरहास, फरहीन, फाहिरा, ताहिरा आपने भी बिल्कुल सही बताया है कि फिल्म का नाम है जुबैदा, जिसमें एक्टिंग की करिश्मा कपूर, रेखा और मनोज बाजपेयी ने। जुबैदा श्याम बेनेगल की उस ट्रायोलॉजी का हिस्सा है जिसमें 1994 में आई मम्मू और 1996 में आई सरदारी बेगम। अब बारी आती है अगले सवाल की। 1999 की एक फैमिली ड्रामा फिल्म है ये, जिसका अब मैं आपसे जिक्र कर रही हूं। इस फिल्म को सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया, और इस मल्टी स्टारर फिल्म में हिमानी शिवपुरी, सतीश शाह, रीमा लागू और शक्ति कपूर ने भी एक्टिंग की। और मैं वैसे आपको बता दूं कि मल्टी स्टारर फिल्म में अक्सर ये कैरेक्टर्स, ये जो लोग हैं, जरूर मिलते हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ये ऐसी फिल्म है कि जितनी बार आप इसे देखेंगे ना, उतनी बार आपको और देखने का मन करेगा। यानी कि मैं खुद इतनी बार इस फिल्म को देख चुकी हूं टीवी पर, कि जितनी बार ये आ रही होती है तो मन करता है कि देख लिया जाए, खासकर कि वीकेंड्स पर जब ये फिल्म आती है तो ऐसा ही कुछ माहौल होता है। इसकी स्टोरी, किरदार और गाने दर्शकों को एंड तक अपने से जोड़कर रखते हैं। आपको बिल्कुल लगेगा जैसे आप ही के घर की कहानी, और बिल्कुल आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। जो भी गाना आएगा, वो लोग कहीं घूमने जाएंगे तो आपको लगेगा आप उनके साथ घूम रहे हैं, बिल्कुल ऐसा एहसास इस फिल्म को देखते समय होता है। अगर आपने फिल्म पहचान ली है तो आप लिख भेजिए अपना जवाब, यानी कि फिल्म का नाम, fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। तब तक मैं आपको जुबैदा से ये बहुत ही सुरीला गाना सुनवा रही हूं।

0: इस बार तो आप सभी ने बिल्कुल सही सही पहचान लिया है और फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। सबसे पहले जवाब लिखकर भेजा नवीन भाटिया साहब ने। दूसरे नंबर पर आती हैं भारती और तीसरे नंबर पर हैं धीरज अरोड़ा, दया शंकर झा, तनु झा और दिव्या झा। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। रोहित ठाकुर ने
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ताहिरा, आप सबने बिल्कुल सही सही पहचाना है और हम साथ साथ हैं। एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे, मोनीश बहल, नीलम कोठारी, इन सब ने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया है। तो इस फिल्म से मैं आपको गाना सुनवाती हूँ और फिल्म का टाइटल ट्रैक है। वैसे अगर मैं बात करूँ ना गानों की, तो इस फिल्म के सभी गाने सुनवाने लायक हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको आज इससे टाइटल ट्रैक जो है इस फिल्म का सुनवाया जाए। और ऐसा मुझे हमेशा लगता है कि फिल्म के अलग अलग गानों को ज़रूर सुनाते रहना चाहिए लिसनर्स को, क्योंकि कई बार हमें लगता है अरे ये गाना भी था इस फिल्म में, हमें तो पता ही नहीं था।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

गुनगुनाते ये आज का सफर जो है वो चल रहा है और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमने आपसे 3 सवाल पूछे, आपने अधिकतर जवाब जो है लिसनर्स की तरफ से वो सही आए और पहली फिल्म हमारी जो है दिल चाहता रही। उसके बाद हमने आपसे जुबैदा से जुड़ा सवाल पूछा, उसके बाद बारी आती है हम साथ साथ हैं की, और अब मैं आपके साथ 2001 में एक फिल्म आई उसके बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूंगी जिसका नाम है यादें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया सुभाष गई साहब ने और जो स्टोरी रही वो भी इनकी रही और निर्माता भी सुभाष घई रहे। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अमरीश पुरी, इन सब कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया। म्यूजिक अनु मलिक साहब का रहा और गाने सभी एक से बढ़कर एक रहे। तो अगर वही मैं बात बोलूंगी कि जब हम सोचते हैं ना कि कौन सा गाना सुनवाया जाए तो एक थोड़ी दिमाग के अंदर, मन के अंदर एक कश्मकश सी चलती है, लेकिन मैं आपको यादें फिल्म से इसका टाइटल ट्रैक सुनवा रही हूँ। और वैसे ये भी बता दें आपको कि ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में रौनित मल्होत्रा का किरदार निभाया, करीना कपूर ईशा पुरी के किरदार में नजर आई और रति अग्निहोत्री जो हैं वो स्पेशल अपीयरेंस में रहीं, शालिनी का किरदार इन्होंने इस फिल्म में प्ले किया।

आप सभी ने आज के गाते गुनगुनाते में भी जो सवाल जवाब मैं आपके लिए लेकर आती हूँ उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यादें, ये गाना जो अभी हमने सुना, यादें ऐसी ही तो होती है, किसी की यादों में खो जाएं तो घंटों कब निकल जाते हैं।

पता नहीं चलता। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, एक शेर है। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। इसी शेर के साथ मुझे यानी अपराजिता को दीजिए यही विदा। अपना और अपनों का खूब खास ख्याल रखिए, क्योंकि अपने ही तो हैं जिनके साथ हम यादें बनाते हैं। अब से कुछ देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
2: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776

दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम में बात उस बदलाव की जिसे हम रोजमर्रा की यात्रा में महसूस करते हैं। सड़क हो, रेल हो, पुल हो या सुरंग, बेहतर कनेक्टिविटी का असर सिर्फ इस बात से नहीं मापा जाता कि कितने किलोमीटर सड़क या रेल लाइन बनी। इसका असर इस बात से भी समझा जा सकता है कि किसी जगह तक पहुंचने में अब कितना समय लगता है। देश में नए पुल, सुरंग, एक्सप्रेसवे और आधुनिक रेल सेवाएं कई शहरों, राज्यों तथा क्षेत्रों के बीच यात्रा का समय कम कर रही हैं। जहां पहले लंबा रास्ता, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां या धीमे मार्ग यात्रा को मुश्किल बनाते थे, वहीं अब कई जगह सीधे और तेज संपर्क मार्ग विकसित हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला सादिया पुल ने रोपाई से मेका और रोइंगे के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटाकर 1 घंटा कर दिया है। यानी कि कनेक्टिविटी की तस्वीर अब सिर्फ दूरी में नहीं बल्कि समय में बचत में भी दिखाई दे रही है। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि पुलों और सुरंगों को लेकर एक्सप्रेसवे तथा आधुनिक रेल सेवाओं तक किस तरह परिवहन का ये नेटवर्क अलग अलग क्षेत्रों को करीब ला रहा है। आइए सुनते हैं विशेष रिपोर्ट।
2: भारत जैसे विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में कई इलाकों के बीच संपर्क आसान बनाना हमेशा से एक चुनौती रहा है। कहीं बड़ी नदियां मार्ग अवरुद्ध करती हैं तो कहीं पहाड़ी और कठिन भूभाग यात्रा को लंबा बना देते हैं। ऐसे में पुल और सुरंगें सिर्फ निर्माण परियोजनाएं नहीं रहती बल्कि ये सीधे तौर पर यात्रा के समय को कम करने का माध्यम बनती हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला सादिया पुल इसका एक उदाहरण है। मई 2017 में शुरू हुए इस पुल के बाद असम के रूपाई और अरुणाचल प्रदेश के मेका और रोइंग के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर 1 घंटा रह गया है, यानी यात्रियों के 5 घंटों की बचत हो रही है। असम में ही बोगीबील ब्रिज ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर रेल और सड़क संपर्क को बदला। दिसंबर 2018 में शुरू हुए इस रेल सह सड़क पुल के जरिए धीमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच यात्रा जिसमें पहले लगभग पूरा दिन लग जाता था, अब करीब 1 से 2 घंटे में पूरी हो सकती है। बिहार में कोसी रेल महासेतु ने निर्मली और सरायगढ़ के बीच रेल यात्रा में बड़ा बदलाव किया। यहां यात्रा का समय करीब 8 घंटे से घटकर 30 मिनट रह गया। साथ ही दूरी भी लगभग 300 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर रह गई। अरुणाचल प्रदेश में सिसेरी नदी पुल ने पासीघाट और रोइंग के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे कम किया। 200 मीटर लंबा ये पुल दिबांग घाटी और सियांग के बीच संपर्क मजबूत करने में सहायता करता है। पुलों के बाद अब बात सुरंगों की। पर्वतीय इलाकों में सुरंगें लंबी घुमावदार सड़कों और कठिन भूभाग को पार करने का सीधा रास्ता देती हैं। हिमाचल प्रदेश की अटल टनल इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अक्टूबर 2020 में शुरू हुई 9 किलोमीटर से अधिक लंबी ये सुरंग रोहतांग दर्रे को बाईपास करती है और मनाली से सरचू के बीच दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है। इससे यात्रा में करीब 4 से 5 घंटे की बचत होती है और लाहौल स्पीति के लिए हर मौसम में संपर्क भी उपलब्ध होता है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ने जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा में लगभग 2 घंटे की बचत की है। वहीं बनिहाल काजीगुंड रोड टनल ने सड़क दूरी को 16 किलोमीटर कम किया है और यात्रा का समय लगभग 1.5 घंटे घटाया है। अरुणाचल प्रदेश की सेला टनल करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इससे तेजपुर तवांग मार्ग पर यात्रा का समय 1 घंटे से अधिक कम हुआ है और हर मौसम में संपर्क को भी मजबूती मिली है।
1: पुल और सुरंगें जहां भौगोलिक बाधाओं को पार कर रही हैं, वहीं एक्सप्रेसवे लंबी दूरी की सड़क यात्राओं को तेज बना रहे हैं। अब बात उन सड़कों की जहां दूरी के साथ साथ यात्रा का समय भी तेजी से कम हो रहा है। आइए सुनते हैं इस पर ये विशेष रिपोर्ट।
3: देश में एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारे शहरों और क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क की रफ्तार बदल रहे हैं। इस बदलाव का एक उदाहरण है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। 2021 में शुरू हुए इस 82 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय करीब 2.5 घंटे से घटाकर लगभग 50 मिनट कर दिया है। इसी तरह बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे मार्च 2023 में शुरू हुआ 118 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे ने दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 3 घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट कर दिया है। उत्तर भारत में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी यात्रा के समय को कम करने का उदाहरण है। अप्रैल 2026 में शुरू हुए इस 230

0: 13 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर ने दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटाकर करीब 2.5 घंटे कर दिया। महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग ने मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा का समय लगभग 16 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया है। गुजरात में अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे ने अहमदाबाद और धोलेरा के बीच सड़क दूरी को 100 किलोमीटर से घटाकर 83 किलोमीटर और यात्रा का समय 2 घंटे 15 मिनट से घटाकर 45 मिनट कर दिया है और यात्रा का समय 3 घंटे 15 मिनट से घटकर 1 घंटा 45 मिनट हो गया है। वहीं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का पहला चरण जुलाई 2026 में सामने आया। इससे दिल्ली से अमृतसर की यात्रा 8 घंटे से घटकर 4 घंटे और दिल्ली से कटरा की यात्रा 14 घंटे से घटकर 6 घंटे रह गई है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य तीर्थ और पर्यटन यातायात को बढ़ावा देना और इसके साथ औद्योगिक तथा लॉजिस्टिक्स विकास को गति देना भी है। एक और बड़ी परियोजना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसके पूरा होने पर दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 33 घंटे से घटकर करीब 12 घंटे करने का लक्ष्य है। इन उदाहरणों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। एक्सप्रेसवे केवल 2 शहरों के बीच यात्रा का समय कम नहीं कर रहे बल्कि इनके साथ जुड़े क्षेत्रों के बीच संपर्क भी तेज हो रहा है।
1: सड़क के बाद अब रुख करते हैं रेल की ओर। 2026 के रेलवे टाइम टेबल में 549 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है। इनमें से 20 ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी यात्रा में 60 मिनट या उससे ज्यादा की बचत हुई है। तो अब जानते हैं कि आधुनिक रेल सेवाएं किस तरह अलग अलग क्षेत्रों को करीब ला रही हैं। आइए सुनते हैं इस पर ये विशेष रिपोर्ट।
2: भारत की रेल कनेक्टिविटी में नई पीढ़ी की ट्रेनें और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यात्रा के समय को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई थी। नई दिल्ली वाराणसी यात्रा का निर्धारित समय करीब 8 घंटे है और ये इस मार्ग की पहले की सेवाओं की तुलना में लगभग 40-50% तेज है। जून 2025 में शुरू हुई कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने कटरा से श्रीनगर की यात्रा को करीब 3 घंटे कर दिया है। वहीं विस्तारित जम्मू श्रीनगर सेवा अब ये यात्रा 4 घंटे 50 मिनट में पूरी करती है। नवंबर 2025 में शुरू हुई बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ने पहले चल रही विशेष रेलगाड़ियों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट की बचत की है। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करती है और इसमें लगभग 1 घंटे की बचत होती है। जनवरी 2026 में शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर सरायघाट एक्सप्रेस की तुलना में करीब 3 घंटे की बचत करती है। लेकिन रेल कनेक्टिविटी का अगला चरण हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में सामने आ रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर है और इसकी परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे। मुंबई और अहमदाबाद के बीच सड़क से 8-9 घंटे की यात्रा को लगभग 1 घंटे 58 मिनट तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2026-27 के केंद्रीय बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। इनकी कुल लंबाई करीब 4000 किलोमीटर होगी और अनुमानित लागत लगभग 16 लाख करोड़ रुपए होगी। इन प्रस्तावित कॉरिडोरों में दिल्ली वाराणसी की यात्रा करीब 3 घंटे 50 मिनट, वाराणसी पटना सिलीगुड़ी करीब 2 घंटे 55 मिनट, चेन्नई बेंगलुरु करीब 1 घंटा 13 मिनट, बेंगलुरु हैदराबाद करीब 2 घंटे, चेन्नई हैदराबाद करीब 2 घंटे 55 मिनट, मुंबई पुणे करीब 48 मिनट और पुणे हैदराबाद करीब 1 घंटा 55 मिनट में पूरी करने का संकेत दिया गया है। इन परियोजनाओं का व्यापक असर सिर्फ तेज यात्रा तक सीमित नहीं है।
1: तो आज के विश्लेषण में हमने देखा कि भारत में कनेक्टिविटी का मतलब अब सिर्फ नई सड़क, नया पुल या नई रेल सेवा जोड़ना नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण पैमाना है समय की बचत। असम में 6 घंटे की यात्रा का 1 घंटे में बदलना हो, बिहार में 8 घंटे की रेल यात्रा का 30 मिनट में सिमटना हो, दिल्ली मेरठ के बीच 2.5 घंटे की यात्रा का करीब 50 मिनट होना हो या दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को लगभग 33 घंटे से 12 घंटे तक की लाने की कोशिश, हर उदाहरण में एक बात सामने लाती है। बेहतर कनेक्टिविटी दूरी को खत्म नहीं करती, लेकिन दूरी को तय करने में लगने वाला समय जरूर कम कर सकती है। एक्सप्रेसवे लंबी सड़क यात्राओं को तेज करते हैं और आधुनिक रेल सेवाएं शहरों तथा क्षेत्रों के बीच यात्रा के समय को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आज के विश्लेषण कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने और तकनीक की सहयोग दिया है दानिश जैदी ने।
3: EM आकाश

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। रक्षा मन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अद्य विशाखापत्तनम् नगरे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यत्र फ्लीट सपोर्ट शिप 1 इति नौ व्यूह सहायक पोतः समुद्घाटितः। अथ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 इति पोतस्य च आधारशिला स्थापिता। तमिलनाडु पुडुचेरी पश्चिम बंगालानां पंच विधानसभासनेभ्यः अथ असमस्य एकस्य लोकसभासनस्य च कृते जाते उपनिर्वाचने मतदानं प्रवर्तते। भारतस्य राष्ट्रिय दूर चिकित्सा सेवया ई संजीवनी इत्यनया 50 कोटितः अधिक दूर परामर्शाणां महत्वपूर्णं सीमा चिह्नम् अवाप्तम्। विश्व वित्त कोषेण वर्तमान वित्त वर्षाय भारतस्य जीडीपी इत्यस्य वृद्ध्यनुपातस्य पूर्वानुमानं पूर्व निर्धारितात् 6.6% संवर्ध्य 7.1% कृतम्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धायाः प्रथमं द्वन्द्वम् अद्य लखनऊ नगरे सम्पत्स्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य स्थापनायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् अनेन परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन क्षेत्रे अनुसन्धानं योजना निर्माणं मूल्यांकनं निरीक्षणं तथा प्रभाव मूल्यांकनं च सुदृढं भविष्यति। सः उक्तवान् यत् इदं देशे एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन योजनायै शीर्ष संस्था रूपेण कार्यं करिष्यति।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7-8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन लघु मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000 कोटि रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् अयं निधिः उच्च विकास क्षमता युक्तेभ्यः व्यावसायिक सामर्थ्यं विस्तार क्षमतां च प्रदर्शितवद्भ्यः लघु मध्यमोद्यमेभ्यः दीर्घकालिकं स्वामित्व निवेश धनं प्रदास्यति। मन्त्रिणा उक्तं यत् निधेः अधिकांश भागः विनिर्माण क्षेत्रे केन्द्रितेभ्यः लघु मध्यमोद्यमेभ्यः प्रदास्यते। सेवाक्षेत्रे प्राविधिक क्षेत्रे नवोन्मेषाधारितेषु क्षेत्रेषु तथा रणनीतिक मूल्य श्रृंखलायां च कार्यं कुर्वद्भ्यः उद्यमेभ्यः अपि अयं निधिः साहाय्यं प्रदास्यति।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीज का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: रक्षा मन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अद्य विशाखापत्तनम् नगरे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यत्र फ्लीट सपोर्ट शिप 1 इति नौ व्यूह सहायक पोतः समुद्घाटितः। अथ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 इति पोतस्य च आधारशिला स्थापिता। तत्र उपस्थितां जनसभां सम्बोधयन् श्री सिंहेन प्रतिपादितं यत् देशस्य सामुद्रिक शक्तेः संवर्धनाय अथ रक्षा सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणाय च भारतस्य कृते सुदृढस्य एकीकृतस्य च सामुद्रिक पारिस्थितिकी तन्त्रस्य महती आवश्यकता वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIR News Alerts।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बाजार की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ संपादक एके भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: The benchmark domestic indices gain nearly 1%. Sensex surges over 650 points. Nifty settles above 22,750. Cabinet approves establishment of 10,000 crore rupees fund for long-term equity investments in small and medium enterprises. And World Bank raises India's GDP growth projection to 7.1% for the current fiscal.
1: घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स 650 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 22,750 के ऊपर बंद हुआ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है. और वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है.
0: And before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में किस तरह से शेयर बाजार का व्यवहार रहा. घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की बढ़त हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 1% से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की बढ़त हुई.
0: The benchmark domestic equity indices rose nearly 1% today. The Sensex surged 685 points to close at 73,068. The Nifty climbed 220 points to settle at 22,776. In the broader market, at the National Stock Exchange, the Mid Cap 100 index jumped 1.1% and the Small Cap 100 index advanced over 1.5%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में ट्रेंट लगभग 13%, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% से अधिक और हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 3% बढ़े. नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में टेक महिंद्रा 2.3%, टाइटन 1.3% और बजाज फाइनेंस में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 21 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.3%, capital goods rose 1.8%, and industrials added 1.6%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt, as well as hospitals, shed around 0.8%. Mid-small private bank fell 0.7% and focused IT dropped 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,816 companies advanced, 1,562 declined and 245 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 12 पैसे कमजोर होकर ₹96.42 पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आज जो हमने बाजार में बढ़त देखी है लगभग 1% की, क्या उसमें कोई ऐसा प्रमुख कारण रहा या मिले जुले कारण थे जिससे कि बाजार में ये बढ़त हमें देखने को मिली?
2: देखिए, दो कारण साफ नजर आ रहे हैं. पहली बात तो ये है कि पिछले हफ्ते में हमने जो स्टॉक मार्केट का जो रुख देखा उसमें

0: काफी गिरावट हमने देखी, करीबन 2% या 2.5-3% की गिरावट हमने पिछले हफ्ते में देखी
1: जी।
0: और कल उसका रिकवरी हुआ है और आज भी उसका रिकवरी हो रहा है। तो जिसे स्टॉक मार्केट में जिस जो उतराव और चढ़ाव का ये सिलसिला जारी है, और दूसरा कारण ये है कि कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्विमासिक जो मौद्रिक समीक्षा की जो कदम वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसका ऐलान करेगी कल। उसका एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट शायद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाए। तो उसके कारण जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं उनकी जो वेटेज सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी अच्छी होती है, उसके लिए स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर को के मार्जिन में बढ़ोतरी होती है, उससे उनका जो इनकम लेवल है वो भी अच्छा होता है। और क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उनकी आमदनी में भी काफ़ी इनकम में काफ़ी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि दोनों कारणों के लिए स्टॉक मार्केट में आज एक रिकवरी और एक मौद्रिक नीति की जो एक एक्सपेक्टेशन जो है
1: जी।
0: उसके लिए
2: AKB, we'll come to the MPC later on, but first of all, I'd like to draw your attention to the broader market today. In the mid-cap, we saw 1.1% of an uptick, and in the small-cap, 1.5%, as we all know, over the past 6 months or so, these two sectors, you know, the mid-cap and the small-cap, have bled like anything, and investors are really in a soup. So now, can we say that the green shoots are really coming up, and in the coming times, it will be, you know, growing more and more from now on?
0: You are right that we have seen this duality of the Indian stock market in this way, that while the large cap stocks are not doing that well, but the mid cap and the small cap, which had seen major losses in the last few months, and now they seem to be coming back to life, so to say, and that is also because they are far less expensive than the large cap stocks. So if you are looking at value buying, or if you are an investor, if you want to get into a position in the hope of some quick gains, then large cap is slightly expensive. So therefore, whether it is the domestic institutional investor or whether it is a domestic retail investor, they are zeroing in on the mid-cap companies and small-cap companies with a turnover of maybe 500 crore or so. So that is the sector which is seeing a lot of demand, which is why these mid-cap as well as small-cap indices are doing better. And it is also to be recognized, the point that you made is that we are seeing far more energy and far more innovative capacity being on display in the small cap as well as the mid cap stocks. The gains are far more evident, and they are probably also riding high on wages being almost stagnant. So therefore, their income levels are staying intact. So I think it's a duality of the Indian economy that is reflecting in the gains for the mid cap and the small cap, plus of course the innovative capacity of the mid cap and the small cap companies, and they are being not very very expensive at this point in time. They are all factors that have contributed to the small cap and the mid cap doing better than the large cap.
1: भट्टाचार्य जी, ओवरऑल अगर बढ़त को देखते हुए हम बात करें, ये आज की बात करें, तो आप इस बढ़त को कितना स्थायी देखते हैं आगे आने वाले वक्त के लिए?
0: मैं इस वक्त की जो मार्केट है, मैं इसको स्थायी नहीं देखता, क्योंकि इस वक्त जो वैश्विक वातावरण जो है, जो विश्व में जो जो जो

0: वैश्विक स्तर पर जो भी चल रहा है जी,
1: हाँ चल रहा है, उसको देखते हुए और भारत में जो उसका एक इम्पैक्ट होगा, हालांकि इंडियन इकोनॉमी ने काफी रेजिलियंस दिखाया अभी तक और जो रिफॉर्म का जो पहिया जो है अभी भी चल रहा है यहाँ पे
0: जी,
1: और जो तेल की जो शॉक आई थी उसको हमने अभी तक ठीक तरह से संभाल लिया है
0: जी,
1: पर आगामी कालों में दिनों में मैं यह नहीं समझता कि कोई सर्टेनिटी से निश्चयता से आप कह सकते हैं कि वो जो इम्पैक्ट जो है उसको आप पूरी तरह से जिस तरह से हमने संभाला है वो संभाल सकेंगे। तो इसीलिए अनिश्चयता का जो वातावरण वो चलता रहेगा और इसीलिए मैं कहूंगा कि आज और कल जो स्टॉक मार्केट में हुआ है उसको आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड से कैसे नहीं बता सकते आप।
2: Right, it could be talking of the rupee here, it has slid to 96 rupees 42 paise per dollar. Now, with the MPC already happening tomorrow, you know, the outcomes are expected. So, do you see RBI kind of intervening at this stage to kind of arrest the slide?
1: RBI has been in a very modulated manner has been intervening in the foreign exchange market, which is also one of the reasons the government had the RBI had bolstered its foreign exchange reserve situation by going in for those forex swaps, the FCNRB deposits. So it is in a position to intervene. But my reading is that it is intervening just to maintain the rupee's rise and fall in a manner that it doesn't seem to be very volatile. Rupee has depreciated, and it is a good thing for India's macroeconomy, because our exports have done very well. The August growth of merchandise goods exports have been 19%. In July, it was, I think, 14 or 15%. So I think the rupee being depreciated has been a plus for India's trade sector. Similarly, it has imposed a natural check on needless imports, making imports costlier. So I think the rupee being depreciating just by 12 paisa is something that is not a cause for concern, nor should it be a cause for concern for the RBI's Monetary Policy Committee. On the contrary, it should give them confidence in overall the macroeconomic and external sector stability, that we have the reserves to manage a gradual and moderated movement of the rupee versus the US dollar.
2: Right.
0: आइए रुख करते हैं वैश्विक बाजारों की तरफ। आज एशियाई शेयर बाजार में जापान का निकेई लगभग 1% से अधिक बढ़ा, वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक लगभग 1% नीचे आया। यूरोपीय बाजारों में जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.7%, जबकि लंदन का फुटसी लगभग 0.5% ऊपर कारोबार करते नजर आए। भट्टाचार्य जी, हम जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख रहे हैं, जो कि अभी भी उसी तरीके से कमोबेश बरकरार हैं, इसमें आप जो एशियाई शेयर बाजार हैं उस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी कि किस तरह से आप इनका प्रदर्शन का अवलोकन कर पा रहे हैं।
1: देखिए, जो एशियन मार्केट्स जिसकी आपने जिक्र की, जापान को कहिए या हैंगसेंग हांगकांग कहिए या सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स को कहिए, सब मार्केट में जो उनकी जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा है। सारे जो मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स, ये मार्केट जापान कहें या सिंगापुर कहें या हांगकांग कहें या साउथ कोरिया कहें
0: जी,
1: उनको वो सारे एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उनका काफ़ी, जैसे भारत भी एनर्जी सेक्टर डिपेंडेंस है, और इस तरफ इस समय जो एनर्जी मार्केट में जो खलबली मची हुई है उससे जो उनका स्टॉक मार्केट में वो उसी को वो कैप्चर दिखा रहा है कि जो अनसर्टेनिटी और नर्वसनेस दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का जो हंगामा चल रहा है जो
0: जी,
1: और एक स्टेबल एक रेजोल्यूशन ये क्राइसिस का जब तक ना एक रेजोल्यूशन एक निर्णय इस तरफ उस तरफ ना होगा, तब तक मैं समझता हूँ एशियाई मार्केट में ये अनस्टेबिलिटी अनिश्चयता का दौर चलता रहेगा।
2: Moving on to the US markets, the Wall Street ended higher yesterday, supported by heavyweight technology and AI-related stocks. Despite the rise in treasury yield, the Nasdaq Composite surged more than 1% to close at a record high of 24,477. The S&P 500 rose almost 0.7% and the Dow Jones Industrial Average added 0.2%. AKB, this is such a dichotomy. Despite the a treasury bond yield kind of rising almost at a decadal high kind of, yet the technology and the AI stocks kind of rising like anything. So just to draw a parallel, can we see the Indian IT stocks, the tech stocks which have been bruised badly of late, can we see a resurgence in the coming times?
1: Well, I think the Indian IT sector's resurgence will largely depend on how soon the AI boom takes a hit, because this AI boom, by all available indications, is little exaggerated and overstated boom, and it shows all the signs of some sort of a moderation or even a bust. Now, in my view, if the AI boom turns into a bust or some sort of a deceleration takes place, it is the Indian IT sector which will be the biggest beneficiary. So, I think Indian IT sector is at a point where it is going to be the one sector that will be the biggest beneficiary of any setback that the AI sector, particularly in the US, that you see. And it is only a matter of time when the over-enthusiasm and exuberance over AI, which is almost irrational, results in some sort of a meltdown, and that will benefit the Indian IT sector.
2: Right.
0: आगे बढ़ते हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दी है. आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये फंड उन छोटे और मध्यम उद्योगों को लंबी अवधि की इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा जिनमें विकास की अच्छी संभावना है और जो अपने कारोबार को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं.
3: ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा. लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्ट. प्रोफेशनली मैनेज होगा. जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा. एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा.
0: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है. श्री वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी. उन्होंने बताया कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा.
3: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है. देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं. इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था. अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा.
0: भट्टाचार्य जी, छोटे बड़े एंटरप्राइजेस को सरकार वैसे भी फंड देती है, लेकिन ये किस तरीके से अलग है?
1: देखिए, जो ये जो है कि ये उनकी जो इक्विटी को ग्रोथ, मतलब इक्विटी का ये मतलब ये हुआ कि अगर जो छोटे और मझले उद्योग जो हैं, उनको इक्विटी की बहुत सख्ती से उनको मिलती है और उनको उनको जिस तरह से उनको इक्विटी के लिए पैसा बटोरना पड़ता है वो काफी कॉस्टली होता है. और ये इससे दो तरह का उनको लाभ होगा. एक तो होगा कि छोटे और मझले उद्योगों को जो इक्विटी के लिए जो पैसा होगा वो कम दामों में, कम इंटरेस्ट कॉस्ट में सरकार से मिलेगी. और दूसरी बात यह है, क्योंकि इक्विटी होगा, इसका मतलब यह है कि और मछले छोटे मछले उद्योग जो इक्विटी इस्तेमाल करके नया उद्योग लगाते हैं उसे उनकी जो नौकरी को बढ़ावा देने की एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में उनको ग्रोथ लाने की उसकी क्षमता जो है वो काफी अच्छी होती है क्योंकि वो उतना ऑटोमेटेड नहीं होते हैं सो उससे जो नौकरी की संख्या बढ़ती है और उसके साथ साथ क्योंकि जो छोटे और मझले उद्योग की जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स की जो शेयर है वो करीबन 48% है 48% मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे सारे देश की जो एक्सपोर्ट्स होती है गुड्स की उसके आधा जो एक्सपोर्ट जो होता है वो एमएसएमई सेक्टर करता है तो अगर उस एमएसएमई सेक्टर को इक्विटी एक्सपेंशन के लिए एक सुविधा मिले उससे एक तरफ नौकरी होती है दूसरी तरफ उनका एक देश का एक्सपोर्ट्स बढ़ता है और तीसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पिछले 5 सालों में जो कोविड के टाइम में उनको एक धक्का पहुंचा था सबसे बड़ा धक्का एमएसएमई सेक्टर को मिला था तो धक्के के बाद जो वो जो उनको पुनर्जीवित करने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक उपाय मैं समझता हूँ
0: जी.
2: And moving on to some other stories, the World Bank has raised its forecast for India's GDP growth in the current financial year to 7.1%, up from 6.6% projected in April. The World Bank said private consumption is likely to remain the main growth driver, while stronger public investment and supportive financial and policy conditions will provide further support. On the supply side, the World Bank noted that the industrial activity has exceeded expectations with infrastructure and construction goods and electricity generation recording strong growth. AKB, we'd like to understand this growth from 6.6% to 7.1% by the GDP, by the World Bank for India's GDP. How huge is this? And of course, the World Bank has also made other observations as well, like the industrial activity has exceeded expectations, infrastructure, construction goods, electricity generation recording strong growth. How do you see this?
1: Well, when the World Bank looks at the economic growth projections for the current year, it is basing its estimate on the country's first quarter performance of 7.8% growth, it is obviously upgraded its estimate earlier. The earlier estimate was 6.6%. Now they are expecting it to grow by 7.1%. It's clearly a sign that the World Bank also believes that India's ability or India's resilience to face up to the external shocks is fairly strong, and which is why it expects India to grow by 7% in the current financial year. Now remember that the World Bank is also talking about on private consumption and both investment, and it is expecting that the private consumption growth will continue in the current rate, and actually it will get better, and the investment pace of investment will also be maintained. So I think the fact that the global uncertainties, the energy shock, the technology uncertainties have not dimmed the Indian economy's prospects, even by estimates by international agencies like the World Bank, should be good news for those who are tracking the Indian economy. But as I have always maintained, that the Indian economy's growth should not be judged only by the headline number. One has to see how the smaller sectors, the MSME sector, they are performing, which is why you have also noticed that the government is focusing a lot of its energies on reviving MSME growth. For example, that just now today we discussed how the government is giving equity support to the MSME sector. So it is an overall challenging task to maintain this growth rate, but the early signs of India's resilience in the face of these global challenges is praiseworthy.
2: Right. In fact, the World Bank as well mentioned about India's growth despite the geopolitical tensions, the challenges, so on and so forth. But one sticky point, AKB, we would like to understand that how do you feel that the defeat

0: deficient rainfall this time, the deficient monsoon, could act as an Achilles heel in the scheme of things?
1: It can be. You are very right. It can be a problem. But there are two data points that must be kept in mind. The number one data point is that in spite of the rainfall problems, India's kharif acreage has been very marginally lower than the previous year's kharif acreage. So which means if all goes well, the kharif output will not be substantially lower in the, actually indeed, given the productivity trends, it might be even higher. And there are the super El Nino fears that are engaging the minds of India's policy planners and policy makers. But there is an early indication that is available, which is the Indian Ocean climate trends suggest that probably the impact of the super El Nino may be contained somewhat, as a result of which the Rabi output may not be adversely impacted. Only time will tell that what kind of an impact finally plays out on Indian agriculture in the current year. But right now, kharif output is by and large has been kept unharmed, and Rabi output, if indeed the Indian Ocean, the weather movement actually helps douse or contain the impact of the super El Nino, then hopefully we'll be better off.
0: Right.
2: जी. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री 31.8% बढ़कर 25 लाख इकाई से अधिक हो गई है। ये अब तक का सितंबर महीने का सबसे उत्तम रिकॉर्ड है। सितंबर में सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी। इस दौरान दो पहिया वाहनों की बिक्री में 33% और तीन पहिया वाहनों की बिक्री में 22% की वृद्धि हुई है। भट्टाचार्य जी, मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी समय की परिधि को देखते हुए।
1: देखिए, जो ग्रोथ जो है वो बहुत ही काफी स्टेबल ग्रोथ है, हाई ग्रोथ है
2: जी।
1: पर आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये सितंबर का ग्रोथ, पिछले साल जो सितंबर की जो ग्रोथ थी उसमें थोड़ी बहुत हानि पहुंची थी, क्योंकि जीएसटी रेट जो बदले गए थे उसमें काफी थोड़ी बहुत सेल्स जो है वो कम थी, क्योंकि उस सितंबर 3 का अनाउंसमेंट सितंबर 22 से लागू किया गया था, तो काफी जो सेल्स जो है वो पोस्टपोन हो गई थी, तो इसीलिए मुझे लगता है
0: contraction. And the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of this month. National Payments Corporation of India has said street vendors receiving up to 1 lakh rupees per month through UPI QR codes under the person-to-person merchant category will continue to enjoy zero MDR on all transactions. And global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.4% down at $97.93 per barrel. West Texas Intermediate was trading over 2.4% lower at $87.25 per barrel at the time of writing this report. AKB, thank you so much for having joined us. And
2: बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आने के लिए।
1: नमस्कार, थैंक यू।
2: जी, जाते जाते एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर।
0: यस, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज गेन नियरली 1%, सेंसेक्स सर्ज इज ओवर 650 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,750, कैबिनेट अप्रूव्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज फंड फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.1% फॉर द करंट फिस्कल। एंड That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जिसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। भारत ने कल काला सागर में वाणिज्यिक मालवाहक जहाज एमवी रोयार्ड मामा 2 पर हुए हमले की भी निंदा की है। चालक दल के सदस्यों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की।
2: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा। बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस होलजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर मैच में डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचा तो नए भारत की नई सौगात दिखने लगी। गुजरात के स्वर्णिम संकुल के प्रशासनिक कमरों से शुरू हुई ये सोच आज नर्मदा के तट पर 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर बादलों को छू रही है। वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत की ढाक जमाने वाला भारत मंडपम और यशो भूमि के झिलमिलाते कांच में आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं, दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर। और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर KG सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार,
2: धन्यवाद।
0: सुरेश जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशोभूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो, G20 में हमने देखा यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
1: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला, जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का देह दिया था, या ब्रिक्स का नेतृत्व रहा। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल, वहां के राष्ट्राध्यक्ष राज्याध्यक्ष जब वे आएंगे तो उनको आधुनिक भारत की छवि, जिसमें आधुनिक भारत तो है ही लेकिन साथ में एक प्राचीन सभ्यता की झलक भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आज भारत मंडपम हो या यशोभूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं उनमें, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या। मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में है। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है, पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में आज हमारा GDP विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहाँ कर रहे हैं, निवेशक यहाँ आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो जिनका आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है

0: इन दोनों का नाम भी शुमार।
1: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चूंकि हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई। वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति वन बना और फिर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, क्योंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था। कैसे देखते हैं उस फेज को, क्योंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
2: देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी। मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं गया था। स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक है, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी है। विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है। विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूसा में हुई थी, और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था। एक बहुत बड़ा टेंट, जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो फिर ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशोभूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती। जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है, वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब देश। भारत एक विकासशील देश जरूर है, लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 का, वहां तक हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो, चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो जिसका अभी निर्माण हाल ही में हुआ है, और सेंट्रल विस्टा का जिस तरह से तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे, तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोर्ट कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे, तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझें कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
1: जी सुरेश जी, हमने यशोभूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, 3 और ऐसी पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना। कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
0: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक। वहीं से ये यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार की जगह सत्ता में जो विनम्रता आनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है, वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी, या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी, उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक

0: विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है उसका अधिकार है वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए, हम स्वाधीन जरूर बने 1947 में, लेकिन स्वतंत्र हमारा अपना, हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पर होता था, हमारे भवन जो है विदेशियों का बनाया हुआ था, हमारा अपना क्या। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की जो यात्रा है, और खासकर अमृतकाल में जो हमने 1947 से लेकर 2022 तक जो हमने जो 75 वर्ष और अमृत महोत्सव बनाया, और वहां से शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो है न सिर्फ हमारे अधिकारों की बात हो, साथ साथ हमारे दायित्व बोध भी हो। ये बहुत आवश्यक है, एक नागरिक को दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, कि कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ, अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहाँ सत्ता भोगने नहीं आए, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए। तो इसलिए हम सेवा तीर्थ में भी वही संकल्प को हम देखते हैं, परिलक्षित होते हुए देखते हैं, हम उसी संकल्प को हम देखते हैं जब आप कर्तव्य भवन जो देखें। अब आप कर्तव्य भवन को देखिए, उनका निर्माण देखिए, आधुनिक सारी सुविधाएं, लेकिन भारतीय विरासत और विकास दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता है। जगह का कितना सदुपयोग हुआ है और उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इकोनॉमिकली ही नहीं, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से भी उसमें कई, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, उसमें कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो विश्व के आधुनिक भवनों में से उनकी गिनती होती है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आधुनिक इंटरनेट और नेटवर्क और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है, बहुत सोच समझ कर, एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब के मध्य में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है, जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जेड़ा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्ट लक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
2: देखिए, दो तीन चीजें हैं, हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है। इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हो और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उनको बेहतर बनाया जाए और उनको एक नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक आईटी का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो उसका जो ड्राइवर है की ड्राइवर एरिया है वो बेंगलुरु है। तो वहां पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बड़ा है, लगातार बड़ा है, तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उसके पीछे यही रणनीति है कि वहां पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है और बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान देखें तो वहां पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहां पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं, तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है, तो एक भारत की एक अलग पहचान दी गई है। भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है। वहां पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 1,00,000 से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए गए हैं, वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए। नॉर्थ ईस्ट एक हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सिविल एयरपोर्ट भी है और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट है उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन है, चाहे वो डिफेंस के हो चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है, अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में एक है और लंबे समय से बात चल रही थी और मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा। आखिरकार 2018-19 में इस पे काम शुरू हुआ और ये 2026 की शुरुआत में वो एयरपोर्ट चालू हो पाया। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, ये पहले बन जाना चाहिए था। जब 2000 से बात चल रही थी तो पहले इस पे क्यों फैसला लिया गया। तो जहां पर इस एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब राजधानी एनसीआर में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालमपुर लग रहा था कि 1 घंटे हवाई जहाज हवा में चक्कर काटता रहा क्योंकि लैंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार, सामान, तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले। तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालमपुर उतरते तो वहां पर वो 2 दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन 2 दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
1: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है।
0: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है वहां। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहां श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन याद रखें कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था, उन लोगों के नाम जो है वहां जोड़े गए हैं। भारतीय थे, इसमें कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है।

0: भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47, 48 में, 62 में, 65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है, अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है और हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग, मैं अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला बाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा। बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर, और क्या उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल, वो उपयुक्त हो। पहले भी मैं गया हूं वहां तो बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसी जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए? और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो BSF हो या ITBP हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों, तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया, दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो, क्या उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या ये कोई भी देश, ये कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया, क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिस कर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है, ये संदेश बहुत आवश्यक है और ये नए भारत की पहचान है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
1: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
2: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है, भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीजें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया, और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हल्के भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो अर्थक्विक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है, लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता आज तक, साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं, और जो इमारतें पहले से भूकंप रोधी नहीं है उनको

0: भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंप रोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति मनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए, उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे हिस्सों में प्रचारित किए जाने की जरूरत है, और भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं, और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के जोन 4 या जोन 5 में हैं। तो जोन 4 और जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है। तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके जोन 4 में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें तो एक लोगों को जागरूक करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी, और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा जिसे अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। लुटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है, या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है। भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं। कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
2: निश्चित ही, देखिए जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सेंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सेंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस भवनों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे तो उसमें नए भारत की, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप उसी से प्रेरित होकर बनाया था, लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से, और जैसे आपने कहा भविष्य की अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं, जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में, और हम आज बात कर रहे हैं कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे। कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है, और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
1: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है, उनका आकार, उनका स्थापत्य कला, या फिर उनका उपयोग, या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले।
0: देखिए तीनों बातें सही हैं। ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती हैं, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी, सिर्फ और बाकी जो भारतीयता की पहचान है, एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है वो भी है, तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है, कर्तव्य भवन उसका नाम रखा गया, तो एक कर्तव्य पथ का जैसे नाम दिया गया, राजपथ नाम चला

0: था, कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था, कोई नहीं जानता इस बारे में, और अब तक क्यों नहीं बदला गया, कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा कि जो नए भवन है, चाहे नए एयरपोर्ट है या नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो वहां पर जैसे हम 60-70 साल पुराने वो बिल्डिंगें थी, उस समय की जरूरत तब दूसरी रही होगी, उस समय जो सरकारी स्टाफ रहा होगा कम रहा होगा, अब बढ़ गया। तो स्थिति ये थी कि एक ही ऑफिस चार अलग अलग बिल्डिंग में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे। तो वो सिस्टम नए भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरियट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था, फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया, तो ये भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा, आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहाँ पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसकी भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरी जिसे हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
2: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है, और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच, लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं। और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार, 6,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए हुआ। माल की ढुलाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन

0: निगम और एक निजी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी के बीच समझौता। केराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पानी निकासी के निर्माण को मंजूरी। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है और ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन को आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत त्यागराज स्टेडियम में आयोजित आशा सम्मेलन 2026 और आशा सम्मान समारोह में कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल ने बताया कि 6000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3000 रूपए से बढ़ाकर 6000 रूपए किया गया है।
1: इस अवसर पर उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य आधुनिक तकनीक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और मानवीय दृष्टिकोण के समन्वय से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और नवीनीकरण जैसी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान जीबी पंत अस्पताल में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के भवन का उद्घाटन भी किया गया, जिससे अंगदान और प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया में बेहतर समन्वय होगा। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मिशन अनमोल के विस्तार का भी शुभारंभ किया गया। इसके तहत नवजात शिशुओं के जन्म के 24 से 72 घंटे के भीतर 63 जन्मजात बीमारियों की जांच की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआती अवस्था में पहचान कर उनके प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यह जांच दिल्ली सरकार मुफ्त उपलब्ध कराएगी।
2: अनमोल योजना के अंतर्गत हम नवजात शिशु का टेस्ट कराएंगे, जो कि एक महंगा टेस्ट होता है, परंतु सरकार उसको पूरी तरीके से निःशुल्क कराएगी।
1: इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली के लोगों के लिए सुलभ हों। प्रादेशिक समाचार के लिए सीमांग मिश्रा के साथ अनुराग नामदेव।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज एक निजी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की सेवाओं को निजी लॉजिस्टिक्स कंपनी के पिकअप और डिलीवरी नेटवर्क से जोड़कर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक्सप्रेस पार्सल की आवाजाही की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। NCRTC ने बताया कि इस पहल के तहत दोनों संगठन प्रस्तावित सेवा की व्यवहारिकता का आकलन करेंगे। इसके लिए परिचालन संबंधी जरूरतों, संभावित पार्सल की संख्या, स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं और अन्य जरूरी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। इस अवसर पर NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने कहा कि ये पहल पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर करने, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य नींव है और उनके स्वास्थ्य, सम्मान और प्रसन्नता को सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये बात श्री गुप्ता ने आज प्रशांत विहार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कैंसर स्क्रीनिंग शिविर और वरिष्ठ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन करते हुए कही। श्री गुप्ता ने कहा कि विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में की रक्षा में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और समय पर स्वास्थ्य जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव, ज्ञान और परिवार तथा समाज के प्रति योगदान युवा पीढ़ी के लिए एक अमूल्य विरासत है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के MSME ग्रोथ फंड को मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया यह निर्णय देश के छोटे और मध्यम उद्यमों को नई शक्ति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के 2 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 की छात्राओं को विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत साइकिल वितरित की। इस अवसर पर राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के कुल 581 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गई। श्री सूद ने कहा कि ये योजना छात्राओं के स्कूल तक दैनिक आवागमन को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री सूद ने बताया कि अब तक दिल्ली में लगभग 18,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने केराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पानी निकासी के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में लिया गया।
4: मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि किराड़ी क्षेत्र की करीब 70 अनाधिकृत कॉलोनियों को प्रस्तावित ड्रेन से जल निकासी की सुविधा मिलेगी। वहीं मुंडका क्षेत्र में रानीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, वेडू एनक्लेव सहित विभिन्न अनाधिकृत कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना पर 260 से अधिक करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित ड्रेन रेलवे लाइन के साथ बनाई जाएगी और इसका डिस्चार्ज 760 क्यूसेक रखा गया है। श्री सिंह ने बताया कि लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी ये ड्रेन मुंडका हॉल्ट स्टेशन से शुरू होकर पूरक ड्रेन में जाकर मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को बार बार निशाना बनाने के लिए कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कांग्रेस पर जनता का समर्थन हासिल करने में विफल रहने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है।
5: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर AI से बनाए गए वीडियो के जरिए झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी निराधार, असंगत और झूठे बयानों के जरिए देश को गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले आज विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्याग पत्र की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर बढ़ रहे विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। बाद में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में प्रवेश कर गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी X@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है। बोर्ड ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में सफाई, शौचालय, कचरा प्रबंधन और रेल डिब्बों की छोटी मोटी सुविधाओं से जुड़ी कमियों को सफर के दौरान ही तुरंत दूर किया जाए। इसका उद्देश्य रेलगाड़ियों के शुरुआती स्टेशन से लेकर गंतव्य तक लगातार साफ सफाई और सुविधाओं को बनाए रखना है। उत्तर रेलवे ने आज फिरोजपुर और अंबाला मंडलों में सुरक्षा और गुणवत्ता सुधार शिविर आयोजित किए। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य केवी उन्नयन

0: कार्यों के निष्पादन के दौरान सुरक्षित कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देना और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम MCD द्वारा आज चलाए गए गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत सभी 12 जोनों में 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। निगम ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 7 संपत्तियों को सील किया गया और भवन मानदंडों के उल्लंघन पर 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। ये प्रवर्तन अभियान शालीमार बाग, मयूर कुंज, पटपड़गंज, अम्बेडकर नगर और शादरा सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद जलशोधन संयंत्र में एलम फीडिंग लाइन को डुप्लीकेट मेन लाइन से जोड़ने के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई इलाकों में कुछ समय के लिए जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वजीराबाद स्टाफ क्वार्टर्स, सिग्नेचर ब्रिज एरिया, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, ग्रेटर कैलाश और उसके आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों से पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग करने की अपील की। साथ ही नागरिक आपातकाल स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 6,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए हुआ। माल की ढुलाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और एक निजी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी के बीच समझौता। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पानी निकासी के निर्माण को मंजूरी। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। और ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी

0: बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह फैसला छोटे और मझौले उद्यमों को विस्तार करने, उन्नत तकनीक अपनाने, विनिर्माण बढ़ाने, वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने के लिए मंच उपलब्ध कराएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण पर टीम को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है जिसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
2: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
1: भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीयों समेत 12 चालक दल के सदस्य घायल हो गए हैं। लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए नमन धीर डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the authority will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
0: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8%,
4: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7 to 8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें डब्ल्यू

जी हाँ, राग बिलावल का जो थाट है वो बिलावल है। इसकी जाति संपूर्ण है। इसका वादी स्वर ध और संवादी स्वर गा है। गाने का जो समय है प्रातःकाल है, जैसे सुबह 6 से 9 बजे तक। और इसमें सारे ग म प ध नि सा सभी सातों स्वर शुद्ध लगते हैं। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित एक और गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जी हाँ, राग बिलावल की बात कर रहे हैं हम। अगर हम इसके आरोह की बात करते हैं तो सारे ग म प ध नि सा, अवरो स नि ध प म ग रे सा और पकड़ स नि ध प म ग रे सा है। और ये विद्यार्थियों को बहुत ही सरल और सरलता से सिखाए जाने वाला राग है। इसमें गंभीर, शांत स्वभाव और भक्ति रस अधिकतर देखा गया है। ये शांत स्वभाव का राग है लेकिन बहुत ही शांति पहुंचाने वाला। आइए सुनते हैं इस गीत को, और जो है फिल्म नया दौर से, और ये इस प्रोग्राम का अंतिम गीत होगा। इसी के साथ मैं विमलेश आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला लखनऊ में जारी। हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी, खिलाड़ी के रूप में खेलती रहेंगी। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए महिला वर्ग में शेफाली और श्रीचरणी तथा अभिषेक और शुभमन गिल पुरुषों की श्रेणी में नामित। दिग्गज नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज का दबदबा। कार्लोस ने जापान ओपन और नोवाक जोकोविच ने चाइना ओपन टेनिस का खिताब जीता। और नेशंस लीग फुटबॉल में इटली और फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मुकाबला खेला जा रहा है। लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 18वें ओवर में

0: 8 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के लिए नमनदीप डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। क्या है मुकाबले की ताजा तस्वीर
1: प्रशांत? अभी भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था और वेस्टइंडीज की जो बल्लेबाजी है वो काफी हद तक बैलेंस नजर आई है। अभी तक कप्तान शे होप ने 37 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली थी। उसके बाद कमिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रेवमन पॉवेल कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर सका, लेकिन शेरफेन रदरफोर्ड ने वहां पर पारी को संभालते हुए 30 गेंदों पर 46 रन बनाए और अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं।
0: और अगर गेंदबाजों की बात की जाए भारतीय गेंदबाजों की, तो अर्शदीप सिंह वापसी कर रहे हैं। एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका रही थी। भारतीय गेंदबाजों का कैसा रहा है आज का प्रदर्शन?
1: आज भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन प्रशांत काफी शानदार रहा है। अगर अर्शदीप सिंह की बात करें तो वो एक गेंद बची है उनके स्पेल में और अभी तक उन्होंने 30 रन दिए हैं, एक विकेट भी चटकाया है। वहीं नमन धीर ने आज अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। 4 ओवर में उन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए हैं। कुलदीप यादव ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। मयंक यादव जो है वो थोड़े से महंगे साबित हुए आज।
0: आपने नमनधीर की बात की जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है। 4 ओवर में उन्होंने 7.8 की इकोनॉमी रेट से 3 विकेट लिए हैं और आज डेब्यू भी कर रहे हैं। कैसा रहा है उनका सफर? अभी एक दिवसीय क्रिकेट में उन्हें मौका मिला था और बैक टू बैक अब T20 में भी डेब्यू कर रहे हैं।
1: बिल्कुल प्रशांत, आज नमनधीर के लिए काफी बड़ा पल है। वैसा ही प्रदर्शन उनसे अभी देखने को मिला है। काफी शानदार गेंदबाजी, 31 रन देकर 3 विकेट, किफायती गेंदबाजी करी उन्होंने। और ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने हाल ही में अपना डेब्यू किया था। एक मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका मिला था जहां उन्होंने 30 रन बनाए थे 142 के स्ट्राइक रेट से। गेंदबाजी हालांकि साधारण रही थी पर एक विकेट उनको फिर भी मिला था।
0: और विशेष, 18 ओवर का खेल हो चुका है। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं और पहली इनिंग लगभग खत्म होने को है। कौन कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं स्क्वाड में आज भारत के जिन पर निगाहें होंगी, जो ये जो टोटल जो भी होगा, वेस्टइंडीज जो भी टारगेट सेट करेगी भारत के लिए, उसको चेस करने के लिए सशक्त रूप से मैदान पर उतरेंगे?
1: प्रशांत, भारतीय टीम का जिस हिसाब का बल्लेबाजी क्रम है, 200 रन का टारगेट भी भारत को छोटा नजर आता है क्योंकि अभिषेक शर्मा शुरुआत करते हैं, वहीं संजू सैमसन उनका साथ देते हैं, उसके बाद पॉकेट डायनमो ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर भी शानदार फॉर्म में है, तिलक वर्मा नीचे से बल्लेबाजी को संभालते नजर आएंगे और शिवम दुबे और नमन धीर फिनिशिंग के रोल की भूमिका निभाएंगे।
0: जी, फिनिशिंग रोल में नजर आएंगे और श्रेयस अय्यर ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्ले से और अपनी कप्तानी से भी। हाल ही में उन्होंने भारत को एशिया कप में गोल्ड मेडल भी दिलाया और मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अब तक के अपने कप्तानी के अनुभव को भी साझा किया। आइए सुनते हैं।
2: I know it's a learning curve. It's just the starting phase of my captaincy and I'm sure that it is going to blossom in the coming matches as well. So it's important to stay in that state of equilibrium and not overthink about the past nor what future has got to offer. So I like to be in the present and see to it that we embrace the situation as much as possible and then react to it.
0: उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का आज अंत हो गया। अपनी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली हरमनप्रीत कौर ने अपना पद छोड़ दिया है। 37 साल की हरमन ने सोशल मीडिया पर महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। बतौर खिलाड़ी वो सक्रिय रहेंगी।
3: Atop the podium for a second time at this continental multi-sport showpiece, India successfully defend their gold medal from Hangzhou 2023.
4: हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सफलतम कप्तान है। हरमनप्रीत के कप्तान बनने से पहले भारतीय टीम देश और विदेश में बड़ी बड़ी टीमों को चुनौती तो देती थी लेकिन जीत से दूर रह जाती थी। 2016 में पूर्णकालिक कप्तान बनने के बाद हरमन ने टीम की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। अपनी 10 साल की कप्तानी में हरमन ने भारतीय टीम को न सिर्फ अलग अलग वैश्विक मंचों पर चैंपियन बनाया बल्कि टीम को एक मजबूत और सशक्त ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। 37 साल की हरमनप्रीत 2016 में पूर्णकालिक कप्तान बनी थी। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी इवेंट वनडे विश्व कप 2025 जीता था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने चार बार यानी 2012, 2016, 2022 और 2026 में एशिया कप जीता। 2012 में वो अस्थायी कप्तान थी। हरमन की कप्तानी में भारतीय महिला टीम हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 और आईची नागोया एशियन गेम्स में

0: लगातार दो बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने हरमन की कप्तानी में ही सिल्वर मेडल जीता था और हाल ही में लॉर्ड्स में महिलाओं का पहला टेस्ट भी खेला गया था। हरमन की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने घरेलू टीम इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया। पिछले 10 वर्षों में हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टीम का 5 टेस्ट, 51 वनडे और 155 टी20 में नेतृत्व किया। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: एंड दैट्स द थिंग about the weight of billion dreams. When you finally lift it, it feels as light as the confetti falling around you.
2: उधर भारत की शेफाली वर्मा और श्रीचरणी तथा शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया। विशेष चारों ही खिलाड़ियों ने डोमिनेट किया पिछले महीने को, कैसा रहा उनका हालिया प्रदर्शन?
3: प्रशांत, अगर शेफाली के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने सितंबर में 7 टी20 मैचों में 72 की औसत से 184 के स्ट्राइक रेट के साथ 360 रन बनाए हैं। श्रीचरणी, जो कि बाएं हाथ की एक स्पिनर हैं, उन्होंने 7 टी20 मुकाबलों में 18 विकेट चटकाए हैं और अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाकर सबकी सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने वनडे में रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेली और दोहरा शतक, अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक भी लगाया था।
2: और आज के मुकाबले पर भी सभी की निगाहें अभिषेक पर होंगी। और अब चलते हैं टेनिस के कोर्ट की ओर, जहां नोवाक जोकोविच हो या फिर कार्लोस अल्काराज, उन्होंने अपने अपने खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने चाइना ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स फाइनल में उन्हें एडी मिनार से वॉकओवर मिलने के बाद ये खिताब उन्हें उनके नाम किया गया। वॉकओवर मिलने से पहले जोकोविच ने पहला सेट 7-6 से जीत लिया था। विशेष अगर हम देखें इस चैंपियन खिलाड़ी की अगर बात करें तो कोई भी टूर्नामेंट हो, सबकी निगाहें इन पर ही होती है और एक बार फिर आज जोकोविच ने साबित किया है कि क्यों उन्हें इस कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। कैसा रहा उनका ये सफर?
3: बिल्कुल प्रशांत, नोवाक डी जोकोविच ने अपने करियर में आज एक और उपलब्धि जोड़ दी है। अलेक्स डी मिनोर, जो कि रिटायर्ड हो गए आज के मुकाबले में, उससे पहले ही जोकोविच 7-6 से पहला गेम जीत चुके थे। अगर इस टूर्नामेंट में उनके सफर की बात करें तो राउंड ऑफ 16 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में यूएस ओपन के विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल के दूसरे गेम में मेदवेदेव के बाहर हो जाने से उनको वॉकओवर मिल गया था। तो जोकोविच का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में शानदार रहा। साथ ही साथ अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल उनके नाम है और 101 एटीपी सिंगल टाइटल उन्होंने जीते। ये दर्शाता है कि किस दर्जे के जोकोविच खिलाड़ी हैं और किस तरीके का वो प्रदर्शन करते रहते हैं।
2: और श्रोताओं, आपको बता दें कि रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा को 6-2 से हराया। विशेष पुरुष वर्ग का तो विजेता हमें मिल गया, लेकिन महिला वर्ग में अभी भी रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज कैसा रहा एकातेरिना और बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन?
3: प्रशांत, अगर चाइना ओपन महिला सिंगल्स की बात करें तो आज हुए 4 राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में निकोला ने सिंजा क्राउस को 6-0, 4-6, 6-3 से शिकस्त दी। वहीं कैरोलिना मुखोवा ने जापान की नाओमी ओसाका को 7-5, 1-6, 7-6 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अगले क्वार्टर फाइनल में मुखोवा का मुकाबला बार्तुनोवा से होगा। इसके अलावा मीरा एंड्रीवा और एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने डारिया स्निगुर और लिंडा नोस्कोवा को हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में एंड्रीवा और अलेक्जेंड्रोवा आमने सामने होंगी।
2: विशेष ये तो हुई आज के मुकाबलों की बात, लेकिन कल कौन कौन से रोमांचक मुकाबले खेले जाने हैं?
3: कल काफी रोमांचक मुकाबले खेले जाने हैं प्रशांत। इवा जोविक इगा स्वाइटेक से मुकाबला करेंगी, कोको गॉफ एलिस मर्टेंस का और एलिना कराइवा क्वीन झेंग का सामना करेंगी। और अंतिम मुकाबले में एन ली की भिड़ंत एलिना स्वेतलोना से होगी। इन मुकाबलों को जीतने वाले 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। 8 अक्टूबर को क्वार्टर, 10 को सेमी और 11 को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
2: उधर श्रोताओं, आपको बता दें कि कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में उन्होंने जिरी लेहेका को 7-6, 6-4 से हराया। विशेष यूएस ओपन के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कि इस टूर्नामेंट को वो जीतेंगे, लेकिन कार्लोस अल्काराज क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गए। इस प्रतियोगिता को जीतना कितना अहम है उनके लिए?
3: बिल्कुल प्रशांत, काफी अहम है क्योंकि कार्लोस अल्कराज शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने यूएस ओपन की हार को एक सीख की तरह लिया। ऐसा ही प्रदर्शन उन्होंने आज कुछ शानदार प्रदर्शन किया जहां जिरी लेहका उनके सामने बेबस नजर आए और मुकाबले को उन्होंने 7-6, 6-4 से गंवा दिया। अल्कराज ने इस टूर्नामेंट में मैथियो को राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल में डेनिस को और सेमीफाइनल में जोमे मुनार को हराया था। अल्कराज के करियर का यह 27वां सिंगल्स टाइटल है। इससे पहले उन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम, 8 ATP मास्टर्स 1000, 10 ATP

0: 500 और दो ATP 250 टाइटल्स अपने नाम किए थे। तो जितनी लंबी ये लिस्ट है प्रशांत, अगर इसी रफ्तार से वे आगे बढ़े तो कई और मुकाम अपने नाम करेंगे।
1: कई और मुकाम अपने नाम करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। नेशंस लीग फुटबॉल में इटली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्की को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ ही इटली प्रतियोगिता के ग्रुप A1 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। रॉबर्टो मैंसिनी ने इटली के मैनेजर के तौर पर लौटने के बाद घरेलू मैदान पर पहली जीत हासिल की है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: इटली ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। तुर्की के साथ हुए मुकाबले में इटली ने जियान लुका कामाका के पहले गोल ने उन्हें बढ़त दिलाई, लेकिन अराल सिमसिर के रीस्टार्ट के बाद तुर्की को बराबरी पर ला दिया। हालांकि बराबरी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि रिकार्डो कैलाफियोरी ने बेंच में आकर अपनी टीम को फिर से आगे कर दिया। इससे पहले पियो एस्पोटिस्टो ने आखिरी स्टेज में जीत पक्की कर दी। कई बार बाहर रहने के बावजूद तुर्की के खिलाफ 3-1 की जीत से यह पक्का हो गया कि इटली को यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफाइंग ड्रॉ में सीड मिलेगी। इटली के लिए स्कैमाका ने 3 साल बाद गोल किया था। पहले हाफ में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाने के बाद इटली ने सिमसिर के बराबरी गोल के बाद जोरदार जवाब दिया, जिसकी वजह से रिकार्डो और पियो के गोल हुए। तुर्की के स्ट्राइकर ने एक बार फिर खिलाड़ियों को छकाते हुए स्कोर 1-1 कर दिया। कैलाफियोरी ने बरेला की फ्री किक पर एक जबरदस्त छलांग लगाकर इटली को फिर से आगे कर दिया। इसके बाद एस्पोसिटो ने आखिरी समय में कमान संभाली रोमानो के क्रॉस को नेट में डिफ्लेक्ट करते हुए इटली के लिए 13 मैचों में अपना 7वां गोल किया। इटली अपने आखिरी दो ग्रुप मैच 12 नवंबर को फ्रांस और 15 नवंबर को बेल्जियम से खेलेगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
1: पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के एथलीटों ने एशियाई खेलों में 12 पदक जीते। भारतीय दल में ASI के कुल 25 एथलीट शामिल थे। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 1500 और 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य सहित 3 पदक जीते। सावन बरवाल ने मैराथन में रजत पदक जीता, जबकि सर्वेश कुशारे ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया। धनवीर ने 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मुक्केबाजी में अंकुश ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नरेंद्र और कपिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं पहले T20 क्रिकेट मुकाबले की ओर। क्या मौजूदा स्थिति है विशेष?
0: वेस्ट इंडीज 171 रन पर ऑल आउट हो गई है प्रशांत। 172 रन का लक्ष्य मिला है भारतीय टीम को। अक्षर पटेल ने आखिरी विकेट अपने नाम किया है, जिससे अब उनके विकेटों की संख्या आज 2 हो गई है। मयंक यादव को भी 1 विकेट मिल चुका है, जहां उन्होंने 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय गेंदबाजों का आज।
1: 172 का लक्ष्य मिला है, कुछ ही देर में भारतीय बल्लेबाज मैदान पर आएंगे 172 रन के लक्ष्य को चेज करने के लिए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.tir@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया।

0: और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने, तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र नागर विमानन महानिदेशालय

0: निदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई है।
3: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेनदेन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेनदेन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस

0: पार्टी का फिर से उदय होगा।
1: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hulsen wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of 5-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing media

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान साझेदारी और सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: स्कंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: स्कंद जी, भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और दबाव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना साझा दृष्टिकोण रखते हैं और दो ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके पास संसाधन संपन्नता, तकनीकी क्षमताएं और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता है, और दो ऐसे देश हैं ये जिनके पास मैत्री और पारस्परिक सद्भावना की एक लंबी परंपरा रही है। ऐसे में हम जब तमाम बातों का जिक्र करते हैं तब एक ऐसी अभिलाषा जो पेरिस समझौते से शुरू हुई थी, जिस तंत्र की हम बात कर रहे हैं, ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की, जो हमारे सामने आज आई है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी जरूरत महसूस हुई, इसके बारे में बताएं।
2: इसकी पृष्ठभूमि अपने श्रोताओं के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। पेरिस एग्रीमेंट, देखिए, वैश्विक तापन की जिस तरह हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये पिछले 2-3 दशक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के सामने, विश्व के सामने और सब संस्थाओं के सामने है। और 12 दिसंबर 2015 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पेरिस में साइन हुआ। 195 देशों ने उस पे अपने हस्ताक्षर किए। और जो सबसे खास बात है उस एग्रीमेंट की, कि कुछ लीगली बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस या कमिटमेंट्स सब सिग्नेटरीज से लिए गए कि आप कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अपने देश में क्या प्रयत्न करेंगे। इसमें जो बातें हुई उसमें ये है कि दुनिया का विकास हो, टिकाऊ विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पर एक लो कार्बन, जो भी नई तकनीक आ रही है वो लो कार्बन की हो, जिससे कि विश्व में जो ऊष्मा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो तापमान जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब औद्योगीकरण 17वीं शताब्दी कह लीजिए, 18वीं

0: शताब्दी से शुरू हुआ, उस पे 2% से ऊपर ना जाए। इस सब परिप्रेक्ष्य में अब हर देश को एक अपने विकास के किस अवस्था में है उसके हिसाब से सबने कमिटमेंट्स किए, भारत ने भी किए, हर देश ने किए, जापान ने किए। और एक जो नया इसमें एक रास्ता था आर्टिकल 6.2 पेरिस एग्रीमेंट का, उसमें देश या कंपनियां एक दूसरे के साथ कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार कर सकते थे। तो ये इस तरह है कि मान लीजिए जैसे भारत है, भारत का बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और भारत एक नेट सेलर है कार्बन क्रेडिट्स का। जिस तरह से हमने अपना डेवलपमेंट किया है, बहुत सोलर एनर्जी और इस तरह का सब है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो भारत इस स्थिति में है कि कार्बन क्रेडिट्स दूसरे देशों को बेच सके और उसका ये रूप आज भारत जापान के बीच में किस तरह ये ट्रेड होगी उसका समझौता हुआ है।
1: स्कन जी, ये जो एक रणतंत्र हमारे सामने रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य कहा गया है कि उन्नत तरीके से निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए। आपने भी इसी बात का जिक्र किया कि भारत सक्षम है ऐसा करने में। तो जलवायु वित्त जुटाने की जहां तक बात है, तो भारत इन तकनीकों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। आज हमारे पास जो तकनीक है, परियोजनाएं जो लगातार सरकार आगे लेकर के आ रही है, उनसे क्या लगता है कि इस तंत्र को कितना बढ़ावा मिलेगा, कितनी मजबूती आएगी उसमें?
0: बहुत बढ़ावा मिलेगा। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे एल्यूमिनियम है, स्टील है और पेपर बनाने का है, उसमें भारत की जो मशीनें हैं वो पुरानी है भारत के उद्योग में, और उनके नवीनीकरण की, आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। तो जिस तरह जो ये एग्रीमेंट जापान के साथ हुआ है, तो जापान नई तकनीक जो उनके पास है उसको बहुत सस्ता भारत को देगा, जिससे भारत कार्बन एमिशन भारत की इंडस्ट्रीज के कम होंगे और भारत उस दिशा में आगे बढ़ेगा बिना बहुत पैसा खर्च किए। ये एक बहुत बड़ा लाभ इस जो आज एग्रीमेंट हुआ है ऑपरेशनलाइज, उससे भारत को होगा।
1: थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन, 8 जून 2026 को नियमों को अपनाना और अब 30 सितंबर को परिचालन नियमावली जारी हुई, तो ये प्रक्रिया संस्थागत तैयारी के कार्यान्वयन को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाती, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत इस दिशा में सबसे तेजी से प्रयास कर रहा है और जो भी तरीके हैं वो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने और भरोसेमंद बनाने के लिए भी है। तो ऐसे में जेसीएम का कितना महत्व हमारे सभी के लिए हो जाता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्बन क्रेडिट की स्कीम का पूरा एक स्थापना की गई। होता क्या है कार्बन क्रेडिट, उसकी यूनिट्स मानी जाती हैं और एक यूनिट इक्वल टू करीब करीब 1 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है
1: जी।
0: और फिर एक ये प्रक्रिया भी स्थापित की गई कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे या कंपनी स्तर पर कैसे खरीदा बेचा जाएगा। उसके बाद भारत ने बहुत जल्दी इस पर काम किया और 2022 में एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया और एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नीचे कैसे इंडिया की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम काम करेगी, कौन कैसे बेचेगा, क्या करेगा, ये पूरा एक तंत्र उसके लिए बनाया गया। और जापान ने भी इसी तरह बनाया। उसके बाद जैसा आपने कहा, 7 अगस्त 2025 को सबसे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भारत और जापान के बीच में हस्ताक्षर हुए। 8 जून 2026 को रूल्स उसके बने, रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, के कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और अभी जो कुछ दिन पहले भारत और जापान ने साइन किया वो है ऑपरेशनल मैनुअल फॉर ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, की कैसे इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ये मान लीजिए वो भारत की कोई संस्था कुछ कार्बन क्रेडिट जापान को बेचना चाहती है, तो जापान उसको कैसे खरीदेगा, कैसे अकाउंटिंग होगी उसकी, कहाँ उसका रजिस्टर रखा जाएगा और कैसे वो पैसा ट्रांसफर होगा। तो अब बहुत तेजी से इसकी जमीन पर ये स्कीम जो है वो उतर आएगी।
1: स्कन जी, जेसीएम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत में उच्च स्तरीय उत्सर्जन कटौती और उत्सर्जन निष्कासन को बढ़ावा देना, तो इसका भारत के जो पर्यावरणीय लक्ष्य है, कम कार्बन विकास की दिशा में हमें काम करने की बात की जाती है, तो इसका व्यवहारिक असर आपको किस तरह से दिखाई देता, कितना सक्सेसफुल होने के चांसेस आपको लगते हैं कि हाँ, इस दिशा में आगे बढ़ने से हम जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं उनको प्राप्त करने में सक्षम होंगे?
0: अपना हमारा जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने के बहुत सारे स्रोत हैं। एक जगह जहां भारत सोलर या गैस उससे ऊर्जा का उत्पादन अधिक करना चाहते हैं, एक रास्ता ये हो गया। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण में जो कैपिटल इक्विपमेंट आता है उसमें अब नई तकनीक की आवश्यकता है जो कि ज्यादा कार्बन एमिशन उसमें ना हो।

0: जैसे स्टील का मैंने जिक्र किया, उसमें
1: जी बिल्कुल
0: कोक इस्तेमाल होता है, बहुत आता है, हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, इंडोनेशिया से मंगाते हैं, उसमें से कितना धुआं निकलता है, कितना कार्बन निकलता है, कितना जला देते हैं। ये जो नई नई तकनीकें हैं ये बहुत महंगी हैं। और जापान के साथ जो आज हमारा अभी कुछ दिन पहले एग्रीमेंट हुआ, उसमें हमारा ईयू और यूके के साथ तो पहले से ही इस तरह का एक एग्रीमेंट है, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के साथ,
1: जी,
0: कि हम अपना कार्बन क्रेडिट उनको बेचकर ये नई तकनीकें लें जिससे कि भारत के जो उद्योग हैं वो अपना नवीनीकरण कर सकें, अपना आधुनिकीकरण कर सकें और उनके कार्बन एमिशन कम हो जाएं। क्योंकि जो एक बड़ा भारी खतरा यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए स्टील भारत यूरोपियन यूनियन को निर्यात करता है, तो अगर वो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी यूनिट से आ रहा है जिसका कार्बन एमिशन ज्यादा है, तो वो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा देंगे।
1: जी,
0: नॉन टैरिफ बैरियर वो लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत का ईयू के साथ जो समझौता, देखिए बहुत दिन से बात चल रही है एफटीए की, और एक आध चीज उसमें अभी नई डिसाइड हुई, इसमें ये भी है, तो इसका एक बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकता है भारत के निर्यात पर, अगर इस तरह का जो यूरोपियन यूनियन कोशिश कर प्रयत्न कर रहा है वो अगर और देश भी करे तो। इसलिए एक ये बहुत ही पेचीदा मामला है, पर जो जापान के साथ जिस तरह का हमारा एग्रीमेंट हुआ है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, भारत के निर्यात पर उस पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा।
1: स्कंद जी, जिस तरह आप भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अगर एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूँ कि भारत और जापान विशेष रूप से रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे में पारदर्शिता होना, भरोसा होना बहुत ही लाजमी है। तो अपने जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उनके साथ में भी हम किस तरह के लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात कर रहे थे, और भी तमाम क्षेत्र जिन पर असर पड़ता है, क्या क्या लाभ मिलने की संभावना नजर आती है?
0: देखिए, जापान के साथ जैसा आपने कहा और आरंभ में भी कहा था, जिस तरह की हमारी मित्रता है और जिस तरह का एक कोऑपरेशन है, जापान ने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है हमेशा। अगर आप देखें तो मेट्रो दिल्ली में और जो सब शुरू हुई वो जापान के ओडीए से शुरू हुई, अभी बॉम्बे टू अहमदाबाद देखिए बहुत ट्रेन जो बन रही है,
1: बुलेट
0: ट्रेन, वो जापान की तकनीक भी वहां पे आ रही है, वहां से धन कुछ असिस्टेंस भी आ रही है, लोन क्रेडिट आ रहे हैं, ये पूरा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया, तो बहुत तरह से मैं समझता हूँ कि भारत और जापान के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं, और सामरिक तो है ही, वो इकोनॉमी में आर्थिक, केवल ये व्यापार वाला रिश्ता नहीं है, ये एक रिश्ता है जिसमें जापान बहुत भारत की औद्योगिक विकास में, मॉडर्नाइजेशन में, नवीनीकरण में और आधुनिकीकरण में बहुत योगदान कर रहा है। और जिस तरह का एग्रीमेंट अभी ये साइन हुआ उससे एक और रास्ता खुल जाएगा कि कार्बन क्रेडिट्स के मैकेनिज्म के द्वारा ये जो आधुनिकीकरण है उसकी फाइनेंसिंग हो जाएगी। देखिए, दुनिया के बाजार में हर चीज मिलती है पर हर चीज के लिए आपको धन चाहिए, भारत को भी अपना प्रायोरिटाइजेशन करना होता है, तो उसमें कुछ नई तकनीकें अगर एक और रास्ते से आ जाए जो ना आउटराइट परचेज का है ना एक ओडीए का है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का, मैं समझता हूँ भारत के विकास के लिए, आधुनिकीकरण के लिए ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है।
1: जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा, अगर आगे की राह को हम देखें तो परिचालन नियमावली के बाद अब इस तंत्र की सफलता के मानक क्या होंगे हमारे लिए, और आने वाले समय में उत्सर्जन की कमी या तकनीकी हस्तांतरण जिस पर हम बात कर चुके हैं, और जलवायु वित्त के क्षेत्र में भारत जापान के किस तरह के परिणामों की उम्मीद की जा सकती है साझेदारी में?
0: मैं समझता हूँ कि अगले 6-8 महीने में और साल भर में कुछ न कुछ आंकड़े जरूर आएंगे कि जो ऑपरेशनलाइजेशन का जो समझौता कल परसों साइन हुआ है उसके अंतर्गत कितने कार्बन क्रेडिट, जैसा मैंने कहा कि 278 मिलियन कार्बन क्रेडिट भारत आज तक दूसरे देशों को दे चुका है पिछले 10 वर्ष में, तो जापान को अब और कितने देता है, और ये देखिए एक ये खाका सा बन जाता है। तो दूसरे देशों के, मान लिया ऑस्ट्रेलिया है या कोई और देश यूरोप के, आप और भी कोई चाहें कि भारत से कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना चाहें और टेक्नोलॉजी तकनीक हमको देना चाहें
1: जी।
0: तो इस एग्रीमेंट के बेसिस पर और उसी टेम्पलेट पर दूसरे एग्रीमेंट भी बन जाते हैं, तो दूसरे एग्रीमेंट्स को करना बड़ा आसान हो जाता है किसी और देश के, कैनेडा करना चाहे, अमेरिका तो खैर अब इस समय है नहीं, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर ही निकल गए हैं, सबसे ज्यादा एमिशन वैसे उनका होता है,
1: जी जी
0: पर भविष्य बताएगा कि अमेरिका किस दिशा में जाना चाहता है जहां तक जलवायु परिवर्तन का सवाल है या वैश्विक तापन का सवाल है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों की नीतियों में और उनके

0: जो भी वो
1: जी
0: विश्वास करते हैं, तो वो तो भविष्य बताएगा। पर मैं समझता हूं कि विश्व के और जो देश हैं अमेरिका को छोड़कर, वो जलवायु परिवर्तन की गंभीरता से पूरी तरह चौकस हैं और उसको नकारते नहीं हैं, और अपनी तरफ से सब मिलजुल कर बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि
1: जी
0: पेरिस एग्रीमेंट का वो अनुकरण करें, और जहां तक हो सके उसमें जो भी कमिटमेंट्स जिस देश ने भी किए हैं कि वो अपना कार्बन उत्सर्जन कितना कम करेंगे। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री बार बार टारगेट्स वगैरह लगाते हैं
1: जी
0: कि हम 2037 तक इतना कर देंगे, फिर 50 तक इतना कर देंगे, ये सब, क्योंकि ये तो देखिए विश्व के लिए है, विश्व की अच्छाई के लिए है कि प्रकृति का बिल्कुल ही नाश ना हो जाए, एनवायरमेंट का नाश ना हो जाए। और दूसरी चीज जो हम लोग दिल्ली में देखिए, हमेशा एक पोल्यूशन की बात होती है, तो कैसे वो पोल्यूशन कम हो जो लोगों का हेल्थ भी अच्छी रहे। तो
1: जी
0: बहुत सारी इसमें बातें हैं जो इससे कवर होती है, और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि भारत और जापान मिलजुल कर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं,
1: जी
0: और ये एक टेम्पलेट बन सकती है और देशों को भी एक दूसरे का साथ देने के लिए, तकनीकी सबका आधुनिकीकरण हो जिससे पूरे विश्व को लाभ होगा, पूरे मानव समाज को लाभ होगा। मैं तो कहता हूं कि पूरी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम,
1: जी
0: हमारे पूरे प्लैनेट को लाभ होगा।
1: जी स्कंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान साझेदारी और सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेशी निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे

दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। आयोग के अनुसार तय प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी बैठकें निर्वाचन आयोग के परिसर में ही होती हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की तट्टन चावड़ी सीट पर 80.81% तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर में 80.07% और नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Congress Party and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for repeatedly targeting Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to media in New Delhi today, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate.
1: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं
2: एवरीडे द ड्रामा दैट राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी कीप क्रिएटिंग ओवर द इलेक्शन कमीशन एंड द रिपीटेड अटैक्स दे मेक ऑन द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्टॉप नाउ इन अ डेमोक्रेसी इफ यू सर्व द पीपल यू विल रिसीव द मैंडेट इफ यू फेल टू गेट द पीपल्स मैंडेट एंड देन अब्यूज द इलेक्शन कमीशन दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड
1: और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे.
0: Earlier in the day, opposition parties held a protest march from Parliament House to Nirvachan Sadan, the headquarters of Election Commission of India in the national capital, over alleged irregularities in the special intensive revision process and demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. With regard to today's opposition protest, the Election Commission has clarified that no political party had sought an appointment till 4 p.m. to meet the Commission through its representatives. In a press statement, the Commission said that, however, at around 4 p.m, it received information from the Delhi police that a delegation of members of Parliament, led by the Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, want to meet the Commission and submit a memorandum. The Election Commission considered this request unusual, which could not be accepted. The Ministry of Defence has signed a contract worth over 660 crore rupees with BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. The contract, under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category, was inked in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, today conducted a successful flight trial of the indigenously developed high-altitude platform. Voting concluded peacefully for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with the Lok Sabha seat in Assam. Polling took place for Madurantakam and Tharapuram seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. Voting was also held for Nagaon Lok Sabha seat in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले जीएसएमए बोर्ड से मुलाकात की. समावेशी और सतत विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी का आह्वान किया. विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया. फ्लाई दुबई आतंकी हमले को नाकाम करने वाले भारतीय पायलट को सम्मानित करने के लिए अमरीकी सांसदों ने द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया. सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा हूती ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद यमन में लड़ाई तेज. और बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए. प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले आज सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की. भारत मोबाइल कांग्रेस 10 से 7 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी. श्री मोदी ने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को पीछे न छूटने देने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है. उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया. श्री मोदी ने अल्प विकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी बल दिया. बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमासानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर पीटर वोरहोफर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने आतंकवाद विरोधी गतिविधियों सहित सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में भारत ऑस्ट्रिया सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और

0: वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में ये अनुमान 6.6% का था। ये संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी और अनुकूल वित्तीय तथा नीतिगत परिस्थितियों से भी अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में भारतीय पायलट स्मित मच्छार और फ्लाई दुबई की उड़ान संख्या 1073 के चालक दल तथा यात्रियों के साहसिक कदमों की सराहना करते हुए द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया गया है। ये प्रस्ताव डेमोक्रेटिक सांसद जोश गॉटहाइमर और रिपब्लिकन सांसद माइकल मैकॉल तथा डॉन बेकन ने पेश किया। इस प्रस्ताव में कैप्टन स्मित मच्छार के साहस की सराहना की गई है और 30 सितम्बर की घटना को आतंकवादी हमला बताया गया है। दुबई से तेल अवीव जा रही इस उड़ान में 174 लोग सवार थे। इस बीच अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कैप्टन मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। दूतावास ने कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कैप्टन के लिए प्रार्थना कर रहे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हूती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद लड़ाई तेज हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: सऊदी गठबंधन ने कहा कि उसकी नौसेना ने होदेदा में अभियान चलाकर हथियारों के भंडार, विस्फोटकों से लदी नौकाओं और नौसैनिक बारूदी सुरंगों को रखने वाली सुविधाओं को नष्ट कर दिया। गठबंधन के अनुसार दक्षिणी लाल सागर के जलमार्गों पर प्रस्तावित हमलों को भी नाकाम कर लिया गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हूती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने दुबाव में बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डोन ऑफ यमन के बाद भी हुआ। इस अभियान को सऊदी हवाई समर्थन हासिल है और इसका उद्देश्य हूती कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना है। इस बीच बहरीन के विदेश मंत्रालय ने यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को समर्थन देने, सरकारी संस्थानों को बहाल करने और व्यापक राजनीतिक समाधान की दिशा में सऊदी अरब के प्रयासों का समर्थन किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। न्यूट्रिनो बेहद छोटे और लगभग भारहीन होते हैं जो तारों और अंतरिक्ष में होने वाली अन्य घटनाओं से पैदा होते हैं। रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने कल रात कई क्षेत्रों में यूक्रेन के लगभग 900 ड्रोन को नष्ट किया है। इनमें कब्जे वाला क्रीमिया प्रायद्वीप और आजोव सागर का इलाका शामिल है।
2: मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर में 650 ड्रोन ने मॉस्को इलाके को निशाना बनाया। इनमें से 105 ड्रोन को राजधानी के पास रोका गया। उन्होंने बताया कि दिन में 68 और ड्रोन गिराए गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी ओडेसा इलाके में भी ठिकानों पर हमला किया जिसमें गोला बारूद का डिपो और बंदरगाह बुनियादी ढांचा शामिल है। यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों और ईंधन डिपो पर हमला करने के लिए देश में बने लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया है। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं। ज़ापोरिज़्या में रात में हुए एक हमले में एक रिहायशी इमारत में 5 लोग घायल हो गए जबकि एक अन्य हमले में एक पुल को नुकसान पहुंचा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आज हुए आतंकवादी हमले में 4 सीमा शुल्क अधिकारी मारे गए। ये अधिकारी दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिले में ड्यूटी पर थे जब आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हो गए। सुरक्षा एजेंसियां घटनाओं

की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है। इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। वेस्टइंडीज के 172 रन के लक्ष्य को भारत ने 32 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले GSMA बोर्ड से मुलाकात की। समावेशी और सतत विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी का आह्वान किया। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। फ्लाई दुबई आतंकी हमले को नाकाम करने वाले भारतीय पायलट को सम्मानित करने के लिए अमरीकी सांसदों ने द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया। और बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार में अर्पणा आप सभी का स्वागत करती है। वक्त हो गया है 10:31 और 5 सेकंड।

0: दोस्तों, इस नीले नीले अंबर पर जब चांद आता है तब तो लगता है कि कोई तो हो जो हमारी परवाह करे, जिसकी आवाज हमें सुकून दे। और ऐसा तो है कि किसी की आवाज सुनकर ही ना जाने क्यों दिल को सुकून मिल जाता है। ये मोहब्बत है जनाब, तकलीफ तो जरूर देती है मगर सुकून भी उसी की बाहों में आता है।
1: बाहों

लता मंगेशकर का स्वर, फिल्म अनामिका से ये गीत अभी आपने सुना। ऐसा होता है दोस्तों, जब कोई खास हमारे बहुत ही करीब आ जाता है तो हमें लगता है कि पर्दे की क्या जरूरत है, बस उठो और उससे कह डालो कि जब से तुझे देखा है दिल बस तेरा दीवाना है, दो लफ्जों में कहूं तो तू ही तो मेरा जमाना है। अगला गीत फिल्म जमाने को दिखाना है से है, शैलेंद्र आशा जी और ऋषि कपूर की आवाज होगी।

एक खूबसूरत ख्याल हो तुम, एक खूबसूरत ख्याल हो तुम जो दिल से नहीं जाता। वादा है जब भी मुझसे मिलोगे हर बार इश्क होगा, और ये वो इश्क है जो हमें आपसे है और आपको हमसे है, क्योंकि आपने ट्यून इन किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है। ये हर श्रृंगार में आज अर्पणा है आपके साथ। दोस्तों वक्त हो गया है 10:52:35। अगला गीत आप सुनेंगे वो 7 दिन फिल्म से, आवाज है स्वर है शब्बीर कुमार और लता जी का। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर होंगे समाचार। 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण, और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत में एक बार फिर से मैं अर्पणा आपके साथ रहूंगी। फिलहाल ये गीत और गीत के बाद FM गोल्ड पर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि ये अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के

0: संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
2: एक Integrated Transport and Logistics Authority का निर्माण किया जाएगा।
1: Mr. Vaishnaw said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises. Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the Cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Sevatirth today, ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from tomorrow till 10th of this month in New Delhi. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticized Congress Party and leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, for repeatedly targeting Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to the media in New Delhi today, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate.
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं
5: एवरी डे द ड्रामा दैट राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी कीप क्रिएटिंग ओवर द इलेक्शन कमीशन एंड द रिपीटेड अटैक्स दे मेक ऑन द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्टॉप नाउ इन अ डेमोक्रेसी इफ यू सर्व द पीपल यू विल रिसीव द मैंडेट इफ यू फेल टू गेट द पीपल्स मैंडेट एंड देन अब्यूज द इलेक्शन कमीशन दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड
4: और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे।
1: अर्लियर इन द डे ऑपोजिशन पार्टीज हेल्ड अ

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बाजार की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ संपादक एके भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: So benchmark domestic indices gain nearly 1%. Sensex surges over 650 points. Nifty settles above 22,750. Cabinet approves establishment of 10,000 crore rupees fund for long-term equity investments in small and medium enterprises. And World Bank raises India's GDP growth projection to 7.1% for the current fiscal.
1: घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स 650 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 22,750 के ऊपर बंद हुआ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है. और वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है.
0: And before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में किस तरह से शेयर बाजार का व्यवहार रहा. घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की बढ़त हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 1% से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की बढ़त हुई.
0: So benchmark domestic equity indices rose nearly 1% today. The Sensex surged 685 points to close at 73,068. The Nifty climbed 220 points to settle at 22,000.

0: 1.8% and industrials added 1.6%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt as well as hospitals shed around 0.8%. Mid-small private bank fell 0.7% and focused IT dropped 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,816 companies advanced, 1,562 declined and 245 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 12 पैसे कमजोर होकर 96.42 रुपए पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आज जो हमने बाजार में बढ़त देखी है लगभग 1% की, क्या उसमें कोई ऐसा प्रमुख कारण रहा या मिले जुले कारण थे जिससे कि बाजार में ये बढ़त हमें देखने को मिली?
2: देखिए, दो कारण साफ नजर आ रहे हैं. पहली बात तो ये है कि पिछले हफ्ते में हमने जो स्टॉक मार्केट का जो रुख देखा उसमें काफी गिरावट हमने देखी. करीबन 2% या 2.5-3% की गिरावट हमने पिछले हफ्ते में देखी
1: जी.
2: और कल उसका रिकवरी हुआ है और आज भी उसका रिकवरी हो रहा है. तो जिसे स्टॉक मार्केट में जिस जो उतराव और चढ़ाव का ये सिलसिला जारी है. और दूसरा कारण ये है कि कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्विमासिक जो मौद्रिक समीक्षा की जो कदम वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसका ऐलान करेगी कल. उसका एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट शायद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाए. तो उसके कारण जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं उनकी जो वेटेज सेंसेक्स और निफ्टी में काफी अच्छी होती है उसके लिए स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई. क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर को के मार्जिन में बढ़ोतरी होती है, उससे उनका जो इनकम लेवल है वो भी अच्छा होता है. और क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा है, अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उनकी आमदनी में भी काफी इनकम में काफी इंक्रीज होती है. तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि दोनों कारणों के लिए स्टॉक मार्केट में आज एक रिकवरी और एक मौद्रिक नीति की जो एक एक्सपेक्टेशन जो है
1: जी.
2: उसके लिए
0: AKB, we'll come to the MPC later on, but first of all, I'd like to draw your attention to the broader market today. In the mid cap, we saw 1.1% of an uptick, and in the small cap, 1.5%. As we all know, over the past 6 months or so, these two sectors, you know, the mid cap and the small cap, have bled like anything, and investors are really in a soup. So now, can we say that the green shoots are really coming up, and in the coming times, it will be, you know, growing more and more from now on?
2: You are right. That we have seen this duality of the Indian stock market in this way, that while the large cap stocks are not doing that well, but the mid cap and the small cap, which had seen major losses in the last few months, and now they seem to be coming back to life, so to say, and that is also because they are far less expensive than the large cap stocks. So if you are looking at value buying, or if you are an investor, if you want to get into a position in the hope of some quick gains, then large cap is slightly expensive. So therefore, whether it is the domestic institutional investor or whether it is a domestic retail investor, they are zeroing in on the mid-cap companies and small-cap companies with a turnover of maybe 500 crore or so. So that is the sector which is seeing a lot of demand, which is why these mid-cap as well as small-cap indices are doing better. And it is also to be recognized, the point that you made is that we are seeing far more energy and far more innovative capacity being on display in the small cap as well as the mid cap stocks. They

0: The gains are far more evident, and they are probably also riding high on wages being almost stagnant. So therefore, their income levels are staying intact. So I think it's a duality of the Indian economy that is reflecting in the gains for the mid cap and the small cap, plus of course the innovative capacity of the mid cap and the small cap companies, and they are being not very very expensive at this point in time. They are all factors that have contributed to the small cap and the mid cap doing better than the large cap.
1: भट्टाचार्य जी, ओवरऑल अगर बढ़त को देखते हुए हम बात करें, आज की बात करें, तो आप इस बढ़त को कितना स्थायी देखते हैं आगे आने वाले वक्त के लिए?
0: मैं इस वक्त की जो मार्केट है, मैं इसको स्थायी नहीं देखता, क्योंकि इस वक्त जो वैश्विक वातावरण जो है, जो विश्व में जो
1: वैश्विक स्तर पर जो भी चल रहा है, जी
0: हाँ चल रहा है, उसको देखते हुए और भारत में जो उसका एक इम्पैक्ट होगा, हालांकि इंडियन इकोनॉमी ने काफी रेजिलियंस दिखाया अभी तक, और जो रिफॉर्म का जो पहिया जो है अभी भी चल रहा है यहाँ पे, और जो तेल की जो शॉक आई थी उसको हमने अभी तक ठीक तरह से संभाल लिया है, पर आगामी कालों में दिनों में मैं यह नहीं समझता कि कोई सर्टेनिटी से निश्चयता से आप कह सकते हैं कि वो जो इम्पैक्ट जो है उसको आप पूरी तरह से जिस तरह से हमने संभाला है वो संभाल सकेंगे. तो इसीलिए अनिश्चयता का जो वातावरण वो चलता रहेगा, और इसीलिए मैं कहूंगा कि आज और कल जो स्टॉक मार्केट में हुआ है उसको आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड से कैसे नहीं बता सकते आप.
2: राइट, इट कैन बी टॉकिंग ऑफ द रुपी हियर, इट हैज स्लिप्ड टू 96.42 रुपीज पर डॉलर. नाउ विद द एमपीसी ऑलरेडी हैपनिंग टुमारो, यू नो द आउटकम्स आर एक्सपेक्टेड, सो डू यू सी आरबीआई काइंड ऑफ इंटरवीनिंग एट दिस स्टेज टू काइंड ऑफ अड्रेस द स्लाइड?
0: RBI has been in a very modulated manner, has been intervening in the foreign exchange market, which is also one of the reasons the government had the RBI had bolstered its foreign exchange reserve situation by going in for those forex swaps, the FCNRB deposits. So it is in a position to intervene, but my reading is that it is intervening just to maintain the rupee's rise and fall in a manner that it doesn't seem to be very volatile. Rupee has depreciated, and it is a good thing for India's macroeconomy, because our exports have done very well. The August growth of merchandise goods exports have been 19%. In July it was, I think, 14% or 15%. So I think the rupee being depreciated has been a plus for India's trade sector. Similarly, it has imposed a natural check on needless imports, making imports costlier. So I think the rupee being depreciating just by 12 paisa is something that is not a cause for concern, nor should it be a cause for concern for the RBI's Monetary Policy Committee. On the contrary, it should give them confidence in overall the macroeconomic and external sector stability, that we have the reserves to manage a gradual and moderated movement of the rupee versus the US dollar.
1: आइए रुख करते हैं वैश्विक बाजारों की तरफ. आज एशियाई शेयर बाजार में जापान का निकेई लगभग 1% से अधिक बढ़ा, वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक लगभग 1% नीचे आया. भट्टाचार्य जी, हम जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देख रहे हैं, जो कि अभी भी उसी तरीके से कमोबेश बरकरार है, इसमें आप जो एशियाई शेयर बाजार है उस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी कि किस तरह से आप इनका प्रदर्शन का अवलोकन कर पा रहे हैं.
0: देखिए, जो एशियन मार्केट जिसकी आपने जिक्र की, जापान को कहिए या हैंगसेंग हांगकांग कहिए या सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स को कहिए, सब मार्केट में जो उनकी जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा है. सारे जो मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स, ये मार्केट या जापान कहें या सिंगापुर कहें या हांगकांग कहें।

0: या साउथ कोरिया कहें उनको सारे एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उनका काफी, जैसे भारत भी एनर्जी सेक्टर इंडिपेंडेंस है। और इस तरफ इस समय जो एनर्जी मार्केट में जो खलबली मची हुई है उससे उनका स्टॉक मार्केट में वो उसी को वो कैप्चर दिखा रहा है कि जो अनसर्टेनिटी और नर्वसनेस दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का जो हंगामा चल रहा है जो
1: जी।
0: और एक स्टेबल एक रेजोल्यूशन ये क्राइसिस का जब तक ना एक रेजोल्यूशन एक निर्णय इस तरफ उस तरफ ना होगा तब तक मैं समझता हूँ एशियाई मार्केट में ये अनस्टेबिलिटी अनिश्चितता का दौर चलता रहेगा।
1: आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये फंड उन छोटे और मध्यम उद्योगों को लंबी अवधि की इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा जिनमें विकास की अच्छी संभावना है और जो अपने कारोबार को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
2: ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये इस ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्ट। प्रोफेशनली मैनेज होगा, जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में अनुसंधान योजना मूल्यांकन निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: भट्टाचार्य जी, छोटे बड़े एंटरप्राइजेस को सरकार वैसे भी फंड देती है लेकिन ये किस तरीके से अलग है?
0: देखिए, जो ये जो है कि ये उनकी जो इक्विटी को ग्रोथ, मतलब इक्विटी का ये मतलब ये हुआ कि अगर जो छोटे और मझले उद्योग जो हैं उनको इक्विटी की बहुत सख्ती से उनको मिलती है और उनको उनको जिस तरह से उनको इक्विटी के लिए पैसा बटोरना पड़ता है वो काफी कॉस्टली होता है। और ये इससे दो तरह का उनको लाभ होगा। एक तो होगा कि छोटे और मझले उद्योगों को जो इक्विटी के लिए जो पैसा होगा वो कम दामों में कम इंटरेस्ट कॉस्ट में सरकार से मिलेगी। और दूसरी बात यह है क्योंकि इक्विटी होगा इसका मतलब ये है कि और मछले छोटे मछले उद्योग जो इक्विटी इस्तेमाल करके नया उद्योग लगाते हैं उसे उनकी जो नौकरी को बढ़ावा देने की एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में उनको ग्रोथ लाने की उसकी क्षमता जो है वो काफी अच्छी होती है क्योंकि वो उतना ऑटोमेटेड नहीं होते हैं। सो उससे जो नौकरी की संख्या बढ़ती है और उसके साथ साथ क्योंकि जो छोटे और मझले उद्योग की जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स की जो शेयर है वो करीबन 48% है, 48% मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे सारे देश की जो एक्सपोर्ट्स होती है गुड्स की उसके आधा जो एक्सपोर्ट जो होता है वो एमएसएमई सेक्टर करता है। तो अगर उस एमएसएमई सेक्टर को इक्विटी एक्सपेंशन के लिए एक सुविधा मिले उससे एक तरफ नौकरी होती है, दूसरी तरफ उनका एक देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है और तीसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पिछले 5 सालों में जो कोविड के टाइम में उनको एक धक्का पहुंचा था, सबसे बड़ा धक्का एमएसएमई सेक्टर को मिला था, तो धक्के के बाद जो वो जो उनको पुनर्जीवित करने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक उपाय मैं समझता हूँ
1: जी।
3: And moving on to some other stories, the World Bank has raised its forecast for India's GDP growth in the current financial year to 7.1%, up from 6.6%.

0: out on Indian agriculture in the current year, but right now Kharif output is by and large has been kept unharmed, and Rabi output, if indeed the Indian Ocean, the weather movement actually helps douse or contain the impact of the super El Nino, then hopefully we'll be better off.
1: Right.
2: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री 31.8% बढ़कर 25 लाख इकाई से अधिक हो गई है। ये अब तक का सितंबर महीने का सबसे उत्तम रिकॉर्ड है। सितंबर में सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी। इस दौरान दो पहिया वाहनों की बिक्री में 33% और तीन पहिया वाहनों की बिक्री में 22% की वृद्धि हुई है। भट्टाचार्य जी, मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी समय की परिधि को देखते हुए।
0: देखिए, जो ग्रोथ जो है वो बहुत ही काफी स्टेबल ग्रोथ है, हाई ग्रोथ है, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा ये सितंबर का ग्रोथ पिछले साल जो सितंबर की जो ग्रोथ थी उसमें थोड़ी बहुत हानि पहुंची थी, क्योंकि जीएसटी रेट जो बदले गए थे ना उसमें काफी थोड़ी बहुत सेल्स जो है वो कम थी, क्योंकि सितंबर 3 का अनाउंसमेंट सितंबर 22 से लागू किया गया था, तो काफी जो सेल्स जो है वो पोस्टपोन हो गई थी, तो इसीलिए मुझे लगता है
1: इस सितंबर का ग्रोथ काफी अच्छा है। राइट, एकेवी। एंड इन सम अदर स्टोरीज, इंडिया सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ एक्सेलरेटेड टू अ 3-month हाई इन सितंबर, लेड बाय स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड एंड शार्प राइज इन न्यू ऑर्डर्स। द सीजनली एडजस्टेड एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स रोज टू 55.2 लास्ट मंथ फ्रॉम 54.1 इन ऑगस्ट, मार्किंग द स्ट्रांगेस्ट एक्सपेंशन सिंस जून दिस ईयर। इट रिमेन्ड अबाउट द 50 मार्क दैट सेपरेट्स ग्रोथ फ्रॉम contraction. And the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of this month. National Payments Corporation of India has said street vendors receiving up to 1 lakh rupees per month through UPI QR codes under the person-to-person merchant category will continue to enjoy zero MDR on all transactions. And global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.4% down at $97.93 per barrel. West Texas Intermediate was trading over 2.4% lower at $87.25 per barrel at the time of writing this report. AKB, thank you so much for having joined us. And
2: बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आने के लिए।
0: नमस्कार, थैंक यू।
2: जी, जाते जाते एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर।
1: यस, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज गेन नियरली 1%, सेंसेक्स सर्जेस ओवर 650 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,750, कैबिनेट अप्रूव्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज फंड फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.1% फॉर द करंट फिस्कल। एंड That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

11:45 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 MHz पर, और आज आपके संग है अर्पना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर का स्वर था, राजेश रोशन का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। अगला गीत आप सुनेंगे ये भी आनंद बख्शी द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, स्वर होगा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। और इसके बाद जो अगला गीत आने वाला है वो एक बार फिर से लता जी का स्वर होगा, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत होगा, संगीत है रविंद्र जैन का और फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। तो महबूब की मेहंदी और राम तेरी गंगा मैली से बैक टू बैक दो गीतों का आप आनंद लीजिए। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 MHz पर, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

ग्यारह बजकर 55 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। अगला गीत मेरे मनमीत में आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में। साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत है, खयाम का संगीत है, फिल्म कभी कभी से ये गीत होगा। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दें इजाजत, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी वीबीजी रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल है। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी वापस चले गए। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए। स्थिति को बिगड़ने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की।

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा। मैं हूँ राखी आपके साथ।

अविनाश फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाज में। अमित खन्ना ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। कभी कभी प्यार भी एक नए सवेरे की तरह जिंदगी में उतर आता है, रातों की तन्हाई को अपनी रोशनी से भर देता है, जैसे किसी खामोश दिल को अचानक अपना हमसफर मिल जाए।

तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। जब दिल खुशियों से भर जाए तो फिर हर तरफ एक मीठी सी धुन सुनाई देने लगती है। लगता है जैसे जमीन भी गुनगुना रही हो, आसमान भी सुर में सुर मिला रहा हो और पूरा जहान हमारी खुशी में शामिल हो गया हो।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। यादें बड़ी अजीब होती हैं, जितना भुलाना चाहें उतना ही दिल के करीब आती जाती हैं। कोई दूर चला जाए तो उसकी यादें ही साथ रह जाती हैं और वही यादें हर पल दिल को बेचैन करती हैं।

0: सौतन की बेटी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 35 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आंगन की कली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज में। शैली शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनता, घर तो अपनों की हंसी, उनकी आवाज और उनके साथ से पूरा होता है। अपने पास हो तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है और उनके बिना खुशियों में भी एक खालीपन सा महसूस होता है। सच ही है, अपनों का साथ ही जिंदगी को मायने देता है, क्योंकि रिश्ते साथ हों तो जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, खूबसूरती से जी जाती है।

साथ साथ फिल्म का गाना आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। कभी किसी का साथ जिंदगी में ऐसी ठंडी छांव बन जाता है जहां दुनिया की सारी थकान आकर ठहर जाती है। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, अगर कोई अपना साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है।

लहू के दो रंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। कभी कभी किसी अपने की एक मुस्कान ही पूरी महफिल को रोशन कर देती है। उसकी मौजूदगी में जैसे मौसम भी बदल जाता है, दिल में बहार उतर आती है और हर पल थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

कलाकार फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया आनंद बख्शी ने, माफ कीजिएगा कल्याण जी आनंद जी ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी वीबीजी रामजी के तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर करना और सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है। मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजन के तौर पर स्थापित हो चुका है और देश के सकल मूल्य वर्धन में आधे से ज्यादा योगदान देता है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। कल 40 वार्ड के लिए वोट की गिनती हुई। बीजेपी ने इनमें से 3 वार्ड में जीत दर्ज की। इसके अलावा वार्ड नंबर 9 और 20 से बीजेपी के 2 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस तरह 42 सदस्यीय नगर निगम में बीजेपी की कुल सीट की संख्या 32 हो गई है। इसके साथ ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। वहीं 6 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। कांग्रेस और असम गण परिषद ने 2-2 वार्ड में जीत दर्ज की। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। मेघालय सरकार का वाणिज्य और उद्योग विभाग कल से 8 अक्टूबर से शिलांग में रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य मेघालय के छोटे और मझोले कारोबारियों को देश विदेश के खरीदारों से जोड़ना है। मेघालय में करीब 98,000 पंजीकृत एमएसएमई हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय कारोबारियों और खरीदारों के बीच सीधे व्यापारिक संपर्क का मौका मिलेगा। भारत ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब जरा ठहरिए, कुछ पल अपने नाम कीजिए, क्योंकि जब दिल को सुकून चाहिए तो गीतों से बेहतर साथी भला कौन। तो आइए यादों की नर्म रोशनी और सुरीली धुनों के साथ सजाते हैं महफिल गीत सुहाने, जहां हर नगमा दिल को छूता है और हर धुन कोई खूबसूरत कहानी कहती है।

गाइड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जब सपनों को किसी अपने का साथ मिल जाए तो हर राह खूबसूरत लगने लगती है। मंजिल की चिंता नहीं रहती, बस इतना यकीन होता है कि सफर में हम अकेले नहीं हैं।

तेरे घर के सामने। इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। नशीली रात है, दिल बेकरार है और बस एक ही सवाल बार बार दिल में उठ रहा है, आखिर तुम हो कहाँ? नींद से दूर ये दीवाना दिल तुम्हें ढूंढता है और कोई जवाब मानने को तैयार ही नहीं।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत जब हद से गुजर जाए तो दिल की आवाज दुनिया से छुपाए नहीं छुपती, और फिर इश्क का इजहार भी एक जुनून बन जाता है।

झुमरू फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया किशोर कुमार ने ही। कभी कभी जिंदगी की राह में ऐसा मोड़ आता है जब भीड़ के बीच भी इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। न कोई अपना हमदम, न दिल को थामने वाला कोई सहारा, बस यादें साथ रह जाती हैं और खामोशी दिल की बात कहती है।

कुछ भी नहीं। अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

0: हुआ है 1:33 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बस रे

सन्नाटा फिल्म का ये गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत भी दिया हेमंत कुमार ने। नहीं, उदास नहीं, बस एक चुप सी लगी है। शायद दिल आज कुछ कहना नहीं, बस कुछ महसूस करना चाहता है। ऐसे ही खामोश पलों में गीत हमारे सबसे करीब आ जाते हैं, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, बस दिल की बात समझ लेते हैं।

साथी फिल्म का गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। मोहब्बत जब दिल में पूरी तरह उतर जाती है तो फिर हर खुशी उसी से जुड़ी लगती है। नजरों को जो सबसे हसीन लगे वही प्यार वही बहार।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। कभी कभी मोहब्बत में दिल को ना कोई मंजिल याद रहती है ना कोई रास्ता, बस एक नाम जुबां पर रहता है और इंसान उसी पुकार में आगे बढ़ता चला जाता है।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। चांद फिर निकला, रात फिर सजी, मगर जिसका इंतजार था वही नहीं आया। कुछ रातें चांदनी से नहीं, किसी की याद से रोशन होती हैं, और जब वो साथ ना हो तो पूरी रात भी अधूरी सी लगती है।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 38 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री

0: शुडम ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैश्रम ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी वीबीजी रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। विधि विभाग ने बताया कि ये निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद लिया गया। मंत्रिपरिषद ने 22 सितंबर 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

कटी पतंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज है, दिल कहता है इससे दूर रहो, लेकिन महबूब का नाम आते ही सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है।

या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इश्क में जब दिल किसी के नाम की हाँ कर दे तो फिर दुनिया की ना भी कहाँ रोक पाती है। जमाना कुछ भी कहे, दिल तो अपना फैसला कर चुका है। हाथ थाम लिया है तो अब साथ निभाना है, चाहे राह आसान हो या थोड़ी मुश्किल।

हाथी मेरे साथी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जब हवा भी मस्त हो, दिल भी खुश हो और साथ हो किसी अपने का, तो जिंदगी अपने आप एक खूबसूरत गीत बन जाती है। फिर ना बीते कल की चिंता, ना आने वाले कल की फिक्र, बस आज के इस पल को हंसते खेलते जीते जाइए।

मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 56 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

शर्मीली फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिंदगी की राह में कुछ मुलाकातें हमेशा के लिए याद बन जाती हैं। जैसे फूल खिलते हैं और फिर बिखर जाते हैं, वैसे ही कुछ दिल मिलते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। लेकिन शायद इन मुलाकातों की खूबसूरती इसी में है कि उनके बीच जाने के बाद भी उनकी खुशबू यादों में बनी रहे।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। मोहब्बत में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिनका कोई वक्त तय नहीं होता, जब बस दिल की एक ही पुकार होती है, कब पूरी होगी ये आस, कब लौटेगा वो प्यार जिसका मन को बरसों से इंतजार है।

आराधना फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। किसी के आने का इंतजार भी कितना हसीन होता है, हर आहट पर लगता है शायद वही आए हैं। हर मौसम में उनकी कमी और भी महसूस होती है। रुत मस्तानी है, जिंदगी अपनी रफ्तार से बीती जा रही है, मगर दिल की एक ही पुकार है, आखिर वो घड़ी कब आएगी।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही वंदना चौक के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार

0: करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी VBG रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। 5 अक्टूबर तक मंडियों में करीब 7,35,000 मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार खरीद एजेंसियां अब तक 2,57,000 मीट्रिक टन धान खरीद चुकी हैं। केंद्र सरकार ने इस साल हरियाणा से 58,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री के आधार पर 31.8% बढ़कर 25,00,000 से अधिक इकाई हो गई है। सितंबर में सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी। इस दौरान दो पहिया वाहनों की बिक्री में 33% और 3 पहिया वाहनों की बिक्री में 22% की वृद्धि हुई। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के प्रबंध किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi after the Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistics planning in the country. Mr. Vaishnaw said that the Cabinet has also given its nod to the establishment of a 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
3: 10,000 करोड़ रुपीस MSME ग्रोथ फंड विल बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू MSMEs विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड MSMEs विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
2: मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड MSMEs जिनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही है।
1: Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development.

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, अब समय हो चला है 3:11:03 और कार्यक्रम हमराही। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनते हैं युगल गीत। और अब इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: जी रूठना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और फिर रूठने से मिलता भी क्या है, मान जाना चाहिए अगर रूठ भी जाए तो। तेरे घर के सामने फिल्म से ये आपने गीत सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीत SD परमन का। अगला गीत आप सुनेंगे माया फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।
1: जिस दिन

जब तस्वीर दिल में बस जाती है तो कहां निकलती है। और अब अगला गीत आपके लिए प्यार का मौसम फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

ज्वारी फिल्म से ये गीत था, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे जिगरी दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप जरूर गीतों का आनंद उठा रहे होंगे। अगला गीत आप सुनेंगे महबूब की मेहंदी फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफीक की आवाज में है। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

एक बार मुस्कुरा दो। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना आशा भोसले और मुकेश का गाया हुआ। SH बिहारी के बोल थे और धुन तैयार की थी OP नायर ने। अगला गीत आप सुनेंगे गीत फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसरा जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे अपना देश फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत आरडी बर्मन का।

0: दोस्तों, अब कार्यक्रम के आखिर में आन मिलो सजना फिल्म से ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया।
1: फिर कब मिलोगे?
2: जब तुम कहोगे
1: जुम्मे रात को।
2: हाँ हाँ, आधी रात को।
1: कहाँ?

और हम भी चलते हैं इस गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दोस्तों को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी वीबीजी रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन काम को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने

सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर कर सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है। मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजन के तौर पर स्थापित हो चुका है और देश के सकल मूल्य वर्धन में आधे से ज्यादा योगदान देता है। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें IAS और IPS अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जांच की जाएगी। FIR दर्ज करने के बाद CBI ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:11 और 6 सेकंड हुए हैं। समय है अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों को सुनवाने का और सभी दोस्तों को वंदना चुक का प्यार भरा नमस्कार।

मिर्जा गालिब। फिल्म से अभी आपने गीत सुना सुधा मल्होत्रा का गाया हुआ, शकील बदायूं की रचना थी और गुलाम मोहम्मद का संगीत। कुछ मीठी सी ठंडक है आज इन हवाओं में, कुछ मीठी सी ठंडक है आज इन हवाओं में, शायद मौसम भी किसी की याद में सर्द है।

मॉडर्न गर्ल। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गुलशन बावरा ने गीत को लिखा था और संगीत रवि का था। अगला गीत आप सुनेंगे इशारा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, शैलेंद्र की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, मेरे सनम फिल्म से।

परवरिश। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और दत्ताराम वाडेकर का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे अमर फिल्म से, लता मंगेशकर का गाया हुआ है, शकील बदायूनी की रचना है और संगीत नौशाद का।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से, मोहम्मद रफी और गीता दत्त का गाया हुआ।

और अगला गीत आप सुनेंगे पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ, कमल अमरोही की रचना है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

कार्यक्रम में आखिरी गीत आप सुनेंगे दो रास्ते फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चुक को दीजिए इस कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाजत और जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े अयोध्या से कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश सह प्रभारी डॉ मेधा कुलकर्णी लखनऊ के हजरतगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल से जुड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद से कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह प्राधिकरण देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का यह फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी वापस चले गए। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए। स्थिति को बिगड़ने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की।

0: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना भी इसके उद्देश्य में है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर करना और सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है। मंत्रालय ने कहा है कि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजन के तौर पर स्थापित हो चुका है और देश के सकल मूल्यवर्धन में आधे से ज्यादा योगदान देता है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन में संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2026 के अंतर्गत युद्ध अभ्यास किया। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के सैनिकों ने अखमिरोव प्रशिक्षण क्षेत्र में रास्ता तलाशने का अभ्यास किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi made the statement while interacting with members of the Global System for Mobile Communications Association, GSMA board, ahead of the India Mobile Congress, scheduled to be held from today and will continue until the 10th of this month in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi's journey in public life began today and he is completing 25 years in public life this year. To mark the occasion, Prime Minister Narendra Modi and BJP National President Nitin Naban will address the Viksit Bharat Sankalp Sabha today. Along with the addressees of the Prime Minister and the BJP National President, several senior party leaders will join the program virtually from different parts of Uttar Pradesh. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi after the Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistics planning in the country. Mr. Vaishnaw said that the Cabinet has also given its nod to the establishment of a 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for Equity Investments in Small and Medium Enterprises.
2: A 10,000 crore rupees MSME growth fund will be established to provide long-term equity capital to MSMEs with strong growth potential. The fund will place a strong emphasis on manufacturing-focused MSMEs, with nearly half of its corpus expected to be directed towards the manufacturing sector.
3: Manufacturing-related MSMEs, jinke liye bahut badi opportunities abhi aa rahi hai.
1: The government has notified the schedule of permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, VBG Ramji Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. The Ministry of Rural Development said that the new schedule of works have been reorganized around 4 thematic pillars, including water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works for extreme weather events and disaster preparedness. Defence Research and Development Organisation, DRDO, conducted a successful flight trial of the indigenously developed high-altitude platform, HAPS. The Ministry of Defence said that the trial was conducted in coordination with the Indian Air Force Centre for Military Airworthiness and Certification, Directorate General of Civil Aviation, Airports Authority of India and other civil authorities.

भोर सुहानी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी दोस्त वंदना चूक के साथ और इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

जिसे ईश्वर पर अटल विश्वास है और उसे मालूम है कि ईश्वर दर्शन देंगे तो वो जरूर देंगे, क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है। और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने इसी फिल्म से गीत सुना। इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना थी और सोनिक ओमी का संगीत। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आते। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कश्मकश चल रही है और चलती ही रहती है। बस हमें उन पलों से निकलना होता है जहां हम अधीर हो जाते हैं।

पाप को जलाकर राख कर दूंगा। इस फिल्म से आपने ये रचना सुनी किशोर कुमार और अनुराधा पोर्टवाल की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अगला गीत जीने की राह फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब अगला गीत सागर फिल्म से आप सुनेंगे एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है आरडी बर्मन।

सच में दोस्तों, ये प्यार ही तो है जो हमें एक दूसरे से बांध कर रखता है। सागर फिल्म से रचना आपने सुनी एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। जावेद अख्तर ने गीत को लिखा था और आरडी पर मैंने धुन को बनाया था। और अगला गीत सीमा फिल्म से मन्ना डे का गाया हुआ।